कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा, अराग मारू बाणी रविदास जीओ की। एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छदर तरे रखाओ, जाकी शोत जगत को लागे, ता पर तुही ठरे, नीचे ऊच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, नाम देव कबीर तलोचन, सदना सहन तरे, तय रविदास सुनो रे संतो, हर जीव ते सवै सरे, मारू सुख सागर सुर तर चिंता मान, काम ते भजा के रे, चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, नवृद कर तलता के, हर हर ना जब सरसना, अवर सब शाड बचन रचना रहाओ, नाना ख्यान पुराण वेद वेद, चौतीस अक्षर माही, व्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सरनाही, सहज समाध उपात रहत होए, बड़े पाग लिव लागी, कहे रविदास उदास दास मत, जन्म मरण पै भागी, तुखारी संत महला पहला, बारे माहा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद, तू सुन किरत करमा पुरब कमाया, सिर सिर सुख सहमा देसो तू फल, हर जना तेरी कागत मेरी, हर बिन कड़ी ना जीवा, प्रेबाज दुखेली गोए ना बेली, गुरमुख अमृत पीवा, रचना राज रहे निरंकारी, ब्राह्मण कर्म सुकर्मा, नानक पंथ निहाले सातन, तू सुन आत्म रामा, बाबीगा प्रयो बोले, कोकल बाणिया सातन सबरस चोले, अंक समाणिया हर अंक समाणी जा।

मरण पया दुख माए, हर बिन नींद पूख कौ कैसी, कापड़ तन ना सुखावे, नानक सासु हागण कंती।

अमृत नाम रसन रस रसना गुर शब्दी रस पीजे विण नावे को संग न साथी आवे जाए कनेरी नानक लहा लय कर जाइए साची सच मत तेरी साजन देश विदेशी अड़े सानेड़े दिन दी सार संभाले।

नित देवे चढ़े सो आया, अपरंपरे आपे था पुथापे, किस पावे सो होवे, नानक हीरा हीरे विद्या, गुण कै हार परोवे, गुण गुणे समाने, मस्तक नाम निशानो, हसा समाया चूका आमन जानो, सच साच।

तू समझ अचेत ए आणिया राम ए मन मेरिया जड़ अवगुण गुणी समाणिया राम बहु साध लुभाने किरत कमाणे विछड़िया नहीं मेला क्यों दुत्तर तरिये जाम डर मरिए।

अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुरस्तव दी हौ सतगुर कै बलिहारी है। सतगुर आगे सीस पेट देओ जे सतगुर साचे पावे आपे दया करो प्रदाते नानक अंक समावे। तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा जो तुम त्यावे जगदीश ते जान पो बिघम तरा बिघम पाओ तिन तरिया सुहेला जिन हर घर नाम ते आया गुरवाग सतगुर जो पाए चले तिन हर घर आप मिलाया ज्योति ज्योत मिल ज्योत सुमाणी हर कृपा कर धरणी तरा हर घर अगम अगाध अपरंपर अपर परा तुम स्वामी अगम अथाह तू कट कट पूर रहया तू अलख अपेव अगम गुर सतगुर बचन लहया तन तन तेजन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे बवेक बुद्ध विचार गुरमुख।

माई संत संग जागी प्रे रंग देखे जपती नामन धानी रहाओ। दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी आओ गुर पायो हुए सहज सुखदायक।

सदगुर प्रसाद बिसरत नाहे मन ते हरी आबे प्रीत महाप्रबल पही आन विखे जरी रघाओ बूंद कांत्याग चातरक मीन रहत ना करी गुण गोपाल उच्चा रसना टेव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रचरण कमल रसाल नानक गांठ बांध थरी केदारा महला पनवा प्रीतम वस्त्रित मैं खोर।

किन ही लोग सुपारी, संतो बन जा नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी, हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चिड़िया निर्मोल, छूट गई संसारी रगाओ, ताते लाए तो सच लागे, साचे के व्योहारी, साची बस्त के

मल पाया, जैसे खूंद कुमारी काम क्रोध तृष्णा के लीने, गतनी एक जानी फूटी आँखें कछु ना सूझे।

गठिया मटिया संग न कछ ले जाए रघाओ। देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लव संग माए, मा हट लाग सब लोग कुटंब मेल हंस अकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुरपाटन बौर न देखे आए, कहे त कबीर आराम की।

रूप रंग रस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो, प्राणी हर जप जन्म गयो, साच शब्द बिन कहो ना छूड़स, बिरता जन्म पयो रखाओ, तन में काम क्रोध हो ममता, कठिन पीर अद पारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, एन बेद तार तू तारी, बहरे करण अकल पई होची, शब्द सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझया, रहे उदास आस निरासा, सहज ध्यान बैरागी, परमत नानक गुरमुख छूड़स, राम नाम लेव लागी, भैरो महला पहला, ढूंढी चाल चरण कर खिसरे, तुचा दे कुमलानी, नेत्री तुंद करन पै बैरे, मनमुख नाम न जानी,

बिन नावे नेफल मन भ्रमना रखाओ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाण संध्या कर्म तिकाल करे। बिन गुर शब्द मुक्त खां प्राणी राम ना बेन उर्ज मरे। दंड कमंडल शिखा सूद धोती तीर्थ गवन अद प्रमण करे। राम ना बेन सांत न आवे जप हर हर नाम तो पार परे। जटा मुगट तन पसम लगाई बत्र छोड़ तन नगन पया। राम नाम बिन तृप्त न आवे किरत के बंदे भेख पया। जेते जी जंत जल थल मैयल जतर कतर तू सर्व जिया। गुर प्रसाद राख।

मुन केते बिन शब्दे सुरत न पाई, त्रै गुण सबे रोग वे आपे ममता सुरत गवाई। एक आपे काड लए प्रभ आपे, गुर सेवा प्रभ लाए, हर का नाम निधानु पाया, सुख वसिया मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है, तेन निरकर वासा पाया, पूरे सदगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक की सिरकार एक, जिन ब्रह्मा बिशन रुद्र उपाया, नानक नेचल साचा एकु, ना ओ मरे न जाया। पैरो मोहल्ला तीजा, मनमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा, गुरमुख बूझे रोग गवावे, गुर शब्दी विचारा। हर जियो

जमकाल सदा है सिरे ऊपर, दूजे पाए पद खोई, बैले पेख पवे दिन राती, होमे रोग न जाई, पड़ पड़ लूजे बाद वखाने, मिल माया सुरत गवाई, सतगुर सेवे परम गद पावे, नाम मिले वडियाई, नानक नाम जिन्हा मन वसिया, दर साचे पद पाई, भैरों महला तीजा, मानव आसा नहीं उतरे, दूजे पाए खुआए।

जिसे लिखिया तो गुरमत हिरदे हर नाम समार मध सूदन जपके उरतार देही नगर तस्कर पंच धातू

सीत गोविंद जन्मा सी परम भूले नरकरत कचरायण जन्म मरण ते रहत नारायण रघाओ कर पंजीर खवायो चोर ओ जन्म न मरे रे साकत ढोर सगल पराध देह लो रोनी सो मुख जलो जित कह ठाकुर जोनी जन्म न मरे न आवे ना जाए नानक का प्रभ रहो समाए भैरो मोहल्ला पंजवा उठत सुखिया बैठ सुखिया पाओ नहीं लागे जा ऐसे बुझिया।

हलत पलत जाकी सश्याम रखाओ, प्रभ आराधन निर्मल रीत, साध संग बिनसी विपरीत, मीत हीत तन ने पारणा, तन तन मेरे नारायणा, नानक बोले अमृत बाणी, एक बिना दूजा नहीं जानी, भैरों महला पंजवा, आगे दियो पाछे नारायण, मद पाघर प्रेम रसायण, प्रभु हमारे शास्त्र सौन, सुख सहज आनंद गृह पौन रखाओ, रसना नाम करण सुन जीवे, प्रभ सिमर सिमर।

प्रसरणागत्याय भैरों मोहल्ला पंजवा कोड मनोरथ आवे हाथ जम मार के संगी पांथ गंगा जल गुर गोविंद नाम जो सिमरे तसकी गत होवे तीर्थ बौड़ न जोन परमाम रखाओ पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम पय ने काम राजमाल साधन दरबार सिमरत नाम पूर्ण आचार नानक दास यो किया विचार बिन हर नाम मिथ्या सबसार भैरों मोहल्ला पंजवा लेपना लागो तिलका मूल झुट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल हर जन राखे पार ब्रह्म आप पापी मुआ गुर प्रताप रखाओ अपना खसम

गुरमुख भेद विरला को लहे रहाव, निकट ना देखे पार ग्रह जाए, दर्द हे रहे मिथ्या कर खाए, पैठ गौरी हर संग न जानिया, बाज गुरु है परम भोलानिया, निकट न जाने बोले कूड़, माया मोह मूठा है मूड, अंतर वस्त जसंतर जाए, बाज गुरु है परम भोलाए, जिस मस्तक कर्म लिखिया लिलाट, सदगुर सेवे खुले कपाट, अंतर बाहर निटे सोए।

हर घर जपना कहो नानक जो जन प्रापाए ताकी रेन बिरला को पाए भैरो महला पंजवा चितवत पाप न आलक आवे बेसवा भजत किश न शरमावे सारो दिन समजूरी करे हर सिमन की वेला बजर सिर परे माया लग फूलो संसार आप भुलाया भुला मनहारे राच रहया बिरथा व्योहार रगाओ पेखत माया रंग बिहाए गड़बड़ करे कौडी रंग लाए अंध व्योहार बंद मन तावे करने हार ना जी मैं पावे करत करत भी दुख पाया पूर्ण होत न का

राम नाम रिद्ध दियो निवास सदा आनंद नाही किज सोग दुख दर्द न व्यापे रोग सब के तेरा तू करणे हार पार ब्रह्म अगुण अपार निर्मल शोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पानी जल थर महील रविया सोए नानक सब प्रवते होए भैरो महला पंजवा मन तारा ताराम रंग चरणे सर्व मनोरथ पूर्ण करने आठ पैर गावत भगवंत सगुर दीनो पूरा मंत सोवड़ भागी जिस नाम प्यार तिसके संग तरे संसार रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरे एक तो तनवंता जिस बुद्ध विवेक तो कुलवंता जे सिमरे स्वामी सो पतवंता जे आप शानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल निरहिण ते आया टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण हृदमाय निवासा कहो नांग जाके पूर्ण कर्मा सो जन आया प्रभु की सरना आप वित पाम सब कीने राम रसायन रसना।

निमकन छोड सदगी सात हर सा प्रीतम अवर ना कोय सार समाले साचा सोए माल पिता सुत बंद नारायण आद जुगाद भगत गुण गायन इसकी धार प्रभु।

ब्रह्म का निवास, तिद गुर कौ सद करी नमस्कार, तिद गुर कौ सद जाओ बलिहार, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर नानक जप जप स जीवा।

भगत करो जन शरण तुम्हारी, नाव विर माया नाव मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी, नाव मेरे बंत पनाव मेरे पाई, नाव मेरे संग अंत होए सगाई।

आए। ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरो दुख पंजना। अहाओ जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे। जब ही स्यार से

जन कबीर को जोर ना पहुंचे, कहां करो रग राया, काम किवारी दो सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान।

गढ़ पीतर यूं गढ़ लियो न जाई, प्रेम पलीता सुरत होवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अग्न सहजे पर जाली, एक चोट सजाया, सात संतोष।

अर्ध उर्ध मुगला गोकास तुंड मंडल में कर परगास ऊगा सूरज नाही चंद आद निरंजन करे आनंद सो ब्रह्मंड पिंड सुजान मान सरोवर कर स्नान सो हं

परमत नाम दियो नाटे बिना ना सोहे बत्तीस लखना दूध कटोरे गडवे पानी कपल गाय नामे दुई आनी दूध पियो गोबिंद राए दूध पियो मेरो मन पति आए नहीं ता कर को बाप रसाए अरहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी लै नामे घर आगे तरी एक भगत मेरे हिरदे बसै नामे देख नारायण हस्ते दूध पियाए भगत कर गया नामे घर का दर्शन पया मैं बौरी मेरा

भगत जिना को देवरा फिरे, भैरों नाम देव जियो कर दूजा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखा बंद जल सेती काज, जैसी

और एक ठानी दुट सवा मेल मंत्र उपाया करसे औध कनेरी गिर तार जाल ज्वाला पै राख्यो राजा राम माया फेरी काड खड़ग काल पै कोप्यो मोए बताओ जो तुहे राखे पीत पीतांबर।

उपाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा अगर करता रहे साल कड़ी जा बीती सुनी अजो न आयो तिर पवन तनी पाखंतन बाज बजाएला गरड़ चढ़े गोविंद आएला आपने भगत पर की प्रतपाल गरड़ चढ़े आए गोपाल कहे।

राज गुरमत उत्तम संग साथ हर नाम रसायन सहज आथ मत बिसरस रे मन राम बोल अपरंपर अगम अगोचर गुरमुख हर आप तुलाए अतुल तोल रखाओ गुर चरण सरे वे गुर सिख तोर गुर सेव तय तज मेर तोर नर निंदक लोभी मन कठोर गुर सेव न पाई।

आग गुरमेल मिलावे करे दात गुरसुख प्यारे दिन सरात फल नाम प्राप्त गुर तुस दे कौ नानक पावे विरले के बसंत महला तीजा एक तुका साहिब पावे सेवक सेवा करे जीवित मरे

रह न सको दर्शन देखे बेन, सहज मिलो गुरमेल मिलाए अरहाओ, यो मन लोभी लोभ लुभाना, राम सार बौर पछताना, बिछिरत मिलाए गुर सेव रंगे, हर नाम दियो मस्तक उड़ पागे, पौन पानी की

माया मोह शब्द जलाए, मन तन हरिया सतगुर पाए, सफलो बिरख हर के द्वार, सची बाणी नाम प्यार, ए मन हरिया।

गुर सब्दी हर चेत सुभाए, राम नाम रस रहे अघाए, कोड़ कुटंत्र के पाप जल जाहे, जीव तुम्हारे हर नाम समाहे, हर की दात हर जीव जाने, गुर के शब्द एहो मन मोलिया, हर गुण दाता नाम खाने रहाओ, भगवे वेश प्रा मुक्त न होए, बहु संजम सांत न पावे कोए, गुरमत नाम प्राप्त होए, वडभागी हर पावे सोए, काल में राम नाम वडियाई, गुर पूरे ते पाया जाई, नाम रते सदा सुख पाई, बिन नामे होमे जल जाई।

अरहाओ गुर प्रसाद लागे नाम स्वाद काहे जन्म गवाब हो वैरवाद पुर कृपा कीनी चूका अवमान सहज पाए पाया हर नाम ऊतम ऊच

प्रभु देखे साध संगत मैं यो विश्राम सदा हृदय जपी प्रभु तेरो नाम तुझ बिन दूजा कोई नाहे सब तेरो खेल तुझ मैं समाहे।

काट काट रया समाय, जाके भगत आनंदमय, जाके भगत को नाही खै, जाके भगत को नाही पै, जाके भगत को सदा जय। कौन उपमा तेरी कही जाए, सुखदाता प्रवरयो समाय, नानक जाचे एक दान, कर कृपा मुझे देहो नाम। बसंत मोहल्ला पंजवा, मिल पानी ज्यो हरे बूट, साध संगत त्यों होमे छूट, जैसी दासे तीर मीर, तैसे उदाहरण गुरे पीर, तुम दाते प्रव देनहार, नेमख नेमख इस नमस्कार, अरहाओ जिसे प्राप्त साध संग, हे जन लागा पार ब्रह्म रंग, ते बंधन ते पय मुक्त, भगत आराधे जोग जुगत, नेत्र संतोखे दर्श पेख, रसना गाए गुण अनेक, तिसना बूझी

दिया सब जंत खाहे अंतरजामी प्रभु दयाल। अपने दास को नदर निहाल कर कृपा मुझ देहु दान। जब जीवे नानक तेरो नाम बसंत मोहल्ला पंजवां राम रंग सब गए पाप। राम जबत कछ नहीं संताप गोविंद जबत सब मिटे अंधेर। हार सिमरत कछ नाहे फेर बसंत हमारे राम रंग। संत जना सो सदा संग रहाओ संत जने किया उपदेश। जय गोविंद भगत सो तन देश हर भगत हीन उद्यान थान। गुर प्रसाद खड़ खड़।

दान तेरिया संत जिना की बाशो तूर। जप नानक स्वामी सद हजूर, बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा। गुर कृपा ते नित चवा प्रभ रखवाले माई बाप, जाके सिमरन नहीं संताप। खसम त्याई एक मन एक पाए, गुर पूरे की सदा सरनाई। साचे साहेब रखिया कंठ लाए रखाओ, अपने जान प्रभ आप रखे। दुट दूत सा प्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए। दुख दे संतर रहे ताए, किरत ओ ना का मिटसनाहे। कोई अपना बीजिया आप खाहे, जन का रखवाला आप सोए। जन को पहुंच ना सकस कोए, प्रभ दास रखे कर जतन आप। अखंड पूर्ण या को प्रताप, गुण गोविंद ने दर्शन गाए। नानक जीवे हर चरण ते आए, बसंत महला पंजवा। गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी माया। सर्व मनोरथ पूर्ण काम, जब जीवे नानक राम नाम। तारुत सुहावी जिद हर चित आवे, बिन सदगुर दिसे बिल लांती। सागत फिर आवे जावे रगाओ, से तनवंत जिन हर प्रवरास। काम क्रोध गुर शब्द नास, पै बिन से निरपय पद पाया। गुर मिल नानक खसम ते आया, साध संगत प्रभ कियो लिवास। हर जप जप होई पूर्ण आस, जल थल महियल रह रया। गुर मिल नानक हर हर कहया, अष्ट सिद्ध।

प्रकाट मैल निर्मल करे, गुरपूरे की सरणी परे, आप करे आप करने हारे, कर कृपा नानक उधारे। बसंत महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, देख फूल फूल फूले, अहं त्याग त्यागे, चरण कमल पागे, तो मिलो प्रस भागे, हर चेत मन मेरे, अरहाओ सगन बाज कूले, एक रह सूक कठूले, बसंत रुत आई प्रफूलता रहे, अब करू आयो रे, एक नाम बोवहो बोवहो, अनरूत नाही नाही,

लोभ मोह जीतो ऐसी खेल घर प्यारी, उठ स्नान करो प्रभाते, सोए घर आराधे, बिखड़े दाव लंघावे मेरा सदगुर, सुख सहज से ती कर जाते, हर आपे खेले आपे देखे, हर आपे रचन रचाया, जन नान गुरमुख जो नर खेले, सो जिन बाजी कर आया। बसंत महला पंजवां हिंडोल, तेरी कुदरत तू है जान है, और ना दूजा जान है, जिसनू कृपा करे मेरे प्यारे, सोई तुदे।

तेरी सेवा तुझते होवे और ना दूजा करता। भगत तेरा सोई तुद पावे जिसनु तू रंग धरता। तू वरदाता तू वरदाना और नहीं को दूजा। तू समर्थ स्वामी मेरा हाँ क्या जाना तेरी पूजा। तेरा मैल अगोचर मेरे प्यारे विघम तेरा है पाना। कहो नानक तय पया द्वारे रख ले वो मुगद अजाना। बसंत हिंडोल महला पंजवा मूल ना बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहं मनी। पिता पार ब्रह्म प्रवतनी मुए निस्तारो निर्गुणी रहाओ। ओपत परलो प्रवते होवे

ना पण सज दोत सवार प्रयो सेवो प्रप्रेम आधार गुर शब्दी बिगत्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर के शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह है प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा तार बसंत महला पहला मन पुल्लो परमस आए जाए अत लुब्ध लुबानो बिख माए न अस्थिर दिसे एक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए मन पुल्लो समझस साच नाए गुरु शब्द विचारे सहज पाए रहाओ मन पुल्लो परमस पावरतार बिल बिरथे चाहे बहु विकार मैगल जो फासस कामहार कड़बंधन बाध्यो

दुख सखाई गुणे बीन मन चले न जाई ठाक राख बिन हरस राखे पत ना साख तू आपे सुरता आप राख हर तारण देखे जाने आप आप पुराए किस कहो जाए गुर मिले बिरथा कहो माए अब गुण छोड़ो गुण कमाए गुर सबदी राता सच समाए सदगुर मिले मत उत्तम होए मन निर्मल हो मैं कड्डे तोए सदा मुक्त बंद ना सके कोए सदा नाम खाने और ना कोए मन हर के पाने आवे जाए सब में एको केश पहन न जाए सबको वर्ते हुक्म सुमाए दूसू सब तिसर जाए तू अपुल ना पुलो कदे नाहे गुर शब्द सुनाए मत अगाहे तू मोटो ठाकुर शब्द माहे मन नानक मानिया सच सलाहे

नाई उधरे सैन सेव मन डीग ना डोले कहूं जाए मन तू पी तरसै शरण पाए जे अनुग्रह ठाकुर कियो आप से तैलीने भगत राख तिनका गुण अवगुण ना बिचारे कोए एब देख मन लगा सेव तबीर त्यायो एक रंग नाम देव हर जीव बसे संग रविदास ते आए प्रभ अनूप गुरु नानक देव गोविंद रूप बसंत महला पंजवा अनक जन्म प्रमे जून माहे हार सिमन बिन नरक पाहे भगत बिहूना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद पजो।

दू सुग बांधो संसार मन उदरण का साजनाहे पाबंदन नित पौत जागे ईठ मीत को सखा नाहे आ बीज आपे ही खाहे जाके कीने होत बेकार ते छोड़ चलिया खिण मह गवार माया मोह मोह भरमिया किरतरे कर करमिया करने।

प्रीत कुटुंब संबंधी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुविधा कर्म बेकारी अंतर रतन पदार्थ हित कौ दुरे न लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर।

मेल सत्संगत परम पद पाया, आत्म राम रहया भरपूर रखाओ। सतगुर संत मिले संत पाइये, किल भगत दुख काटे सब दूर। आत्म जोत पई प्रफुलत,

तित गृह वाजे पंच शब्द वड़पाग मथोरा तेन जन के सब पाप गए सब दुख गए सब रोग गए काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए तेन जन के हर मार कढे पंच चोरा हर राम बोलो हर साधु हर के जन साधु।

करत रहत निरहारी, तेन जन की सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी। जिनका अंग करे मेरा स्वामी, तिनकी नानक घर पैज सवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निदान। सासृड का प्रभु मेरे मन हर बोल, हर पुरख अविनाशी रघाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी। हर आप दयाल दया कर मिले, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी। जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पौ जासी। जन नानक नाम लए ता जीव है, ज्यो चातक जल पीए तृप्तासी। सारग मल्ला चौथा जप मान श्री राम, राम रमत राम सत सत राम। बोलो भैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रघाओ। राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सप्त जगे। जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय, सो जन राम नाम लिव लागे। राम नाम की उपमा देखो हर संत हो, जो भक्त जिना की पत राखे। वेत कलयुग अगे जन नानक का अंग किया, मेरे राम राय दुश्मन दूख गए सब पगे। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। सदगुर मूर्त कौ बल जाओ, अंतर प्यास चातक ज्यो जल की। सबल दर्शन कल पाओ रघाओ, अनाथा को नाथ सर्वप्रद पालक। भगत वशिल हर नाओ, जा को कोई ना राखे प्राणी। तिस तू दे असराओ, नितरिया तर निगतिया गत। निथाविया तू थाओ, दज जाओ ता तू संगे। तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक स्ते लाख लाख।

दीजे साध संगत कृपानंद, नानक पूर रहो गए सर्व में सगल गुणा विद जानद। तारग मोहल्ला पंजवा, आप मोहे आराम परो सौ पाए, जो जो शरण परो करना निद, ते पवे तराए रखाओ, सुख सोयो अर सहज सुमायो, सहसा गुरे गवाए, जो चाहत तोई हर कियो, मान बाचित फल पाए, हृदय जपो नेत्र ध्यान लाओ, त्रवणी कथा सुनाए, चरणी चलो मार्ग ठाकुर के, रसना हर गुण गाए, देखो दृष्ट सर्व मंगल रूप, उल्टी संत कराए, पायो लाल अमोल नाम घर, तोड़ न कथु जाए, तम उपमा कौन बढ़ाई, क्या गुण कौरी जाए, होद कृपाल दीन दयाल प्रभ, जन नानक दास दिसाए।

सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बाशित फल लहिए रघाव आव संत प्राण सुख दाते सिमरे प्रभ अविनाशी अनाथे नाथ दीन दुख पंजन पूर रहे हो कटवासी गावत सुनत सुमावत सरदा हर्ष पी वडभागे कल कलेश मिटे सब तन ते आराम नाम लिव जागे काम क्रोध चूड़त निंदा हर सिमरन बंधन टूटे मोह मगन अंग अन ममता गुर कृपा ते छूटे तू समरथ पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा जन तेरा पूरे ओ सर्व मैं ठाकुर नानक सो प्रभ नेरा सारग महला पंजवा बलिहारी गुरदेव चरण जाके संग पार ब्रह्म त्याईये उपदेश हमारी गत करन अरहाओ दुख रोग पै सगल बिनासे जो आवे हर संत सरन आप जपे अवरे नाम जपावे वट समरथ तारन तरन जाको मंत्र उतारे सहसा।

सदगुर प्रसाद कैसे कहो मुए जी बेदनाई। दर्शन प्यास प्रेप्रीत मनोहर मान ना रहे बहुविध उमकाई रखाओ। चितवन चितवो प्रेप्रीत बैरागी तद पावो हर दर्शाई। जतन करो तो मन नहीं पीरे को है रे संत मिलाई। जब तब संजम पुन सब होम अर्पो सब सुख जाई। एक निमक प्रे दर्श दिखावे ते संतन कहे बल जाई। करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई। मान अपमान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई। देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सदगुर पुरख मिलाई। प्रवरंग दयाल हुए गृह में पाया जन नानक तप्त बुझाई। सारग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही। नरक कोर में उर्तव करता नेमख नेमख गुण गाही। अरहाओ आनक जन्म प्रमतो ही आयो मानस जन्म दुलभाही। गर्भ जोन छोड़ जो निकसेओ तव लागो अनठाही। करे बुराई ठगाई दिन रायन निफल कर्म कमाही। कण नाही तो गान लागे ताए ताए दुख पाही। मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज परयो कुसुमाही। तर मराए जा पगस बगरे तो काल मुखा उड़ जाही। सो मिलया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही। कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अल्प रहे मन माही। सारग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई। जाके बिशरत होत मृत का गृह में रहन न पाई। रघाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सुहाई। करो कृपा संतो मुए अपनी प्रा मंगल गुण गाई। चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई। जे प्रसाद मिल गए प्रभु नानक बल बल ताके हो जाई। सारग महला पंजवा वह अवसर के हो बल जाई। आड़ पर अपना प्रसिमरन वडभागी हर पाई। रघाओ भलो कबीर दास दासन को ऊतम सैन जन नाई। ऊच ते ऊच नाम दो समदरसी रविदास ठाकुर बने आई। जियो पिंड तान तान साधन का यो मन संतरे नाई। संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई। सारग महला पंजवा मनोरथ पूरे।

अगर चले तिनी सुख पाया, जिन से गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में, ते साधु संग पार परे, जिनके पाग बड़े हैं पाई, तिन साधु संग मुख जुरे।

आद समागम कोड़ बैकुंठे पाए रगाव दुलाब दे जब होत पुनीता जम की त्रास निवारे महापत्ते पादक उतरे हर नामा उतारे जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा कहो नानक पाई गे वडपागी मन तन हुए बेगासा सारग महला पंजवा दो पदे कर चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद मोहन कर आवहो करो जुदरिया मान करो अभिमान बोलो पूर चूक तेरी प्रेत्रिया रघाओ निकट सुनो अर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुर लाए पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिस लख बरिया साध संगत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सारग महला पनवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सास होई कर रहया दे नाओ बलिहारी रखाओ क्यों दिस फूल रही बिखिया बिख गुर मंत्र मूख गरड़ारी आदे राख्यो करे अपना ज्यो जल कमला अलपारी हाँ ना ही किश मैं क्या हुसा तब तुम ही कल तारी नांग पाग प्रयोगर पाछे राग संत सदकारी सारग महला पंजवा अब मोहे सर्प पा बिरकाते करण कारण समरत स्वामी और एक स्ते मेरी गाते रगाओ देखे नाना रूप हो रंगा अनना ही तुम पाते दे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते प्रम तो हार जो परे हो तो गुरमिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेगानी राते सारग महला पंजवा अब मोहे लभ देव है घर टेका गुर दयाल पय सुखदाई अंधले मानक देखा रखाओ काटे अज्ञान तेमर निर्मलिया बुद्ध विगास बबेका ज्यों जल तरंग फेन जल हुई है सेव कु ठाकुर पय एका जय ते उठ्यो तय ही आयो सभी एक एका नानक दृष्ट आयो सब ठाई प्राण पति घर समका सारग महला पंजवा मेरा मन एक ही प्रेम मांगे पेख आयो सब थान देश प्रे रोम ना समसर लागे रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन फेसो दिष्ट ना करे रुचांगे हरस चाहे प्रे प्रेम खुटेरे ज्यो आल कमला लोभांगे गुण निधान मनमोहन लालन सुखदाई सरबांगे गुरु नांग प्रापाए पठायो मिलो सखा गल लागे सारग महला पंजवा आप मोरो ठाकुर स्यो मन माना साध कृपाल दयाल पए गए त्यो छेद्यो दुष्ट बेगाना रखाओ तुम ही सुंदर तुम्हे सियाने तुम ही सुगर सुजाना सगल जोर अर ज्ञान ध्यान एक निमकन कीमत जाना तुम ही नायक तुम्हे शत्रपात तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सद कुरबाना सारग महला पंजवा मेरे मन चीत आए प्रेरंगा बिसरो तंद बंद माया को रजन सवाई जंगा रहाओ हर सेवो हर दे बसावो हर पाया सत्संगा ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रयो अपना गुर बस कर दीना हो गो भोग निसंगा निरपो पय नानक पौ मिटया हर पायो पाठंगा सारग महला पंजवा हर जीव के दर्शन को कुर्बानी बचन नाथ मेरे श्रवनो पूरे देखा प्रे अंक समानी रखाओ छूटते गुर की सुहागन हर पायो सुगड़ सुजानी जे कर में बैसन नहीं पावत तो थान मिलो बासानी उनके बस आयो भगत बच्छल जिन राखी आन संतानी कहो नानक हर संग मन मानिया तब चूकी कान लुकानी सारग महला पंजवा
अब मेरो पंचा ते संग टूटा, दर्शन देख पए मन आनंद, गुर कृपा ते छूटा रगाओ, बेखम थान बहुत बहुत तरिया, अन कराख थू रूटा, बेखम गार कर पहुंचे नाही, संत सांत पै लूठा, बहुत खजाने मेरे पाले परिया, अमोल लाल आखूटा, जन नांग प्रभु कृपा तारी, तौ मन में हारस कूटा, सारग महला पंजवा, आब मेरो ठाकुर स्यो मन लीना, प्राण दान गुर पूरे दिया, उरजायो ज्यो जरमीना रगाओ, काम क्रोध लोभ मद मस्तर, ए अर्प सगल दान कीना, मंत्र दरड़ाए हर औखद गुर दीनो, तो मिलो सगल पर बीना, गे तेरा तू ठाकुर मेरा, गुर हो खोई प्रभु दीना, कहो नानक मैं सहज कर पाया, हर भगत भंडार खजीना, सारग महला पंजवा, मोहन सब जीव तेरे तू तार है, छुट्टे संघार निमक कृपा ते, कोट ब्रह्मंड उधार है रघाओ, करे अरदास बहुत बेनंती, निमक निमक सा महार है, हो कृपाल दीन दुख पंजन, हा दे निस्तारे, क्या ए पूपत बपरे कही है, कहो ए किसनू मारे, राख राख राख सुख दाते, सब नानक जगत तुमारे, सारग महला पंजवा, आप मोहे तन पायो हर नामा, पाए अचिंत तृष्ण सा बुझी है, त्यो लिखियो लेख मथामा रखाओ, खोजत खोजत पयो बैरागी, फिर आयो दे गिरामा, गुर कृपाल सौदा यो जोरियो, हथ चिरियो लाल अगामा, आन बापार बंज जो करिए, तेते दुग सहमा, गोविंद भजन के निरपय वापारी, हरास नानक राम नामा, सारग महला पंजवा, मेरे मान निष्ठ लगे प्रे बोला, गुर पां पगर प्रसे वालाए, सदयाल हर टोला, रघाओ प्रभु तू ठाकुर सरप्रद पालक, मुए कलत्तर सहित सब गोला, मान तान सब तू है, एक नाम तेरा मैं ओला, ये तख्त बैसल है, तो दास तुम्हारे, कास बढ़ावे केतक भोला, जन नानक के प्रापुरख विधाते, मेरे ठाकुर अगे अतोला, सारग महला पंजवा, रसना राम कैत गुण सोहं, एक निमख उपाय समावे, देख चरत मन मोहं, रगाओ जिस सुने मन होए रहस अत, हृदय मान दुख जोहं, सुख पायो दुख दूर परायो, बन आई प्रभु तोहं, केलव गए मन निर्मल होई गए, गुर काढे माया द्रोहं, कहो नानक मैं सो प्रापाया, करण कारण समर्थोहं, सारग महला पंजवा, नयनो देखो चलत तुमासा, सबहू दूर सबहू ते नेरे, आगम आगम कटवासा, रहाओ अपूल ना पूले, लिखियो ना चलावे, मता ना करे पचासा, खिन में सा सुवार बिनाहे, भगत वशल गुण तासा, अंध कूप में दीप कबले हो, गुरदे कियो परगासा, कहो नानक दर्श पेग सुख पाया, ता पूर्ण होई आसा, सारग महला पंजवा, चरणे गोविंद मार्ग सुहावा, आन मार्ग जेता जिताइए, तेतो ही दुखावा, रखाओ नेत्र पुनीत पय दर्श पेखे, हस्त पुनीत तहलावा, हृदय पुनीत हृदय घर बस्यो, मस्त पुनीत संत तूरावा, सर्बन दान नाम हर हर कहे, जिस कर्म लिखिया तिन पावा, जन नानक कौ गुर पूरा पेट्यो, सुख सहजे अनंद बिहावा, सारग महला पंजवा, त्यायो अंत बार नाम सखा, जे माल पिता सु भाई ना पहुंचे, तहां तहां तू रखा रहाओ, अंध कूप गृह में तिन सिमरे हो, जिस मस्तक लेख लिखा, खुले बंधन मुक्त गुर कीनी, सब तू है तू ही दिख, अमृत नाम पिया मन तृप्तया, आगाए रसन चखा, कहो नानक सुख सहज में पाया, गुर लाही सगल तिखा, सारग महला पंजवा, गुर मेल
ऐसे प्रभु ते आया। भयो किरपाल दयाल दुख पंजन लगे न ताती बाया रहाओ। जेते सास सास हम लेते एते ही गुण गाया। निमख न बिसरे करी न बिसरे

प्रभ मेरो एक पुत सदा सहाई, मन मोर मेरे जी को प्यारो, कमर कहां गुन गाई रहाओ। खेल खिलाए लाड लाड आवे, सदा सदा अनदाई, प्रद पाले बारक की न्याई, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमख नहीं रह सकिए, बिसर न कब हो जाई। कहो नानक मेल संत संगत ते, मगन पै लिवलाई, सारग महला पंजवां।

की ओपरा भी अपने काढ़ लिया बिख केर अमृत नाम औखद मुख दीनो जाए पया गुर पैरे कम उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दाते रहे काढ़ सिल्क जो अपना कीनो नानक सुख कन्हेर सारग महला पंजवा प्रा सिमरत दुख बिनासी पयो किरपार जी सुखदाता होए सगल खलासी रघाव आवर न को सूजे प्रभिन कौ को किस पै जासी ज्यो जानो त्यो राखो ठाकुर सब कुछ तुम ही पासी हाथ दे राखे प्रभ अपने

तेरो मान जड का तुझे सुमारे हम बार्क दीन पिता प्रा मेरे ज्यो जाने त्यों पारे रगाओ जब भूखो ता भोजन मांगे हकाए सुख किनारे ताब अरोग जब तुम संग बस्तो छुटक दुखोए रवा।

गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रगाओ गुरबचनात कृपाद कृपा ते बौर नकत हूं तायो रेत उपाद समासु आसन भगत वशल ग्रे पायो नाल विनोद कोड आनंदा सहज सहज सुमायो करना आप करामन आपे कौ नानक आप आयो सारग महला पंजवा अमृत नाम मने आधारो जिन दिया तिसके कुर्बाने गुरपूरे नमस्कारो रगाओ बूझी तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिख जारो आए न जाए बसे जे ठार जे आसन रंकारो एके प्रगट एके गुप्ता एके तुंदुकारो आद मद अंत प्रसोई को नानक साज विचारो सारग महला पंजवा बेन प्रभ रहन न जाए करी सर्व सुख ताहू के पूर्ण जाके सुख हरि रघाओ मंगल रूप प्राण जीवन तन सिमरत अंध कना वड समर्थ सदा ससंगे गुण रसना कमल पना थान पवित्रा मान पवित्रा।

को मद मान त्रो मोह दूर कर बपरे संग गोपाले जान रखाओ मिथ्या राज जोबन अर उमरे मीर मलक अर खान मिथ्या कापर सुगंध तराई मिथ्या भोजन पान दीन बंदरो दास दासरो संते की सारान मांगन मांगो होए अचिंता।

दिवस चार के दिसे संगी, ऊहा नाही जय पारी, तिन स्यो राच माच हित लायो, जो काम नहीं गावारी, हो नाही नाही किश मेरा, ना हमरो बस चारी, करन करावन नान के प्रभ, तंतन संग उधारी, सारग महला पंजवा, मोहनी मोहत रहे न होरी, साधक सिद्ध सगल

अंध कूपमय पतत होत जग संतो करो परम गद मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पोरी।

की करो नित सेवा, गुर अपना नमस्कारिया, सर्व फला दीने गुर पूरे, नानक गुर निस्तारिया। सारग महला पंजवां, सिमरत नाम प्राण गद पावे, मिटे कलेस त्रास सब नस, साध संग हित लावे रहाओ। हर हर हर हर मन आराधे, रसना हर जस गावे, तज अवमान काम क्रोध निंदा, वासुदेव रंग लावे, दामोदर दयाल आराध हो,

रघाव जाके सूद परोए जनता तिस प्रभु का जस गाव हो। सिमर ठाकुर जिन सब कुछ दीना आन कहां पे जाओ सबल सेवा स्वामी मेरे की मन बांझ।

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाया, बां पगर कढ़ लीने अपने, गृह अंध कूबते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिशर

प्राण मुक्त को दाता एक स्यों लिवलाओ कहो नानक ताकी शरणाई देत सगल अपियाओ। सारग महला पंजवा होती नहीं कमन कज करनी ए ओड़ पाई मिल संत गोपाल एक की सरणी रघाओ। पांच दोख शिद्र या तरम है बिखे ब्याध की करनी आस अपार दिनस गण राखे ग्रस्त जात बल जरणी अनाथे नाथ दयाल सुख सागर सर्व दुख पय हरणी मन बांचित चितवत नानक दास।

छोड़ो कपट होए निर्वैरा तो प्रभ संग निहारे सतन वंजो सतन संचो कबू न आवो हारे खात खर्चत किश निखुटत नाही अगंत।

सेव करत अनसेवा बिरथा काटै काल। जा जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन होवाल। राख लेहो दास अपने कौ सदा सदा कृपाल। सुख निदान नान प्रा मेरा साध संग तन माल। सार्ग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार। प्रेम भगत गुण गावत गीदे होत नहे संसार। रघाओ श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी।

मन तन धन तब तुमरा स्वामी आन न दूजी जाए। जो तू रखे तिवखी रहना तुमरा पहने खाए, साध संगत के बल बल जाई।

दर्शन पेख मेरा मन मोयो, दुर्मत जात बही रघाओ, अगे अगाध ऊच अविनाशी, कीमत जात ना कही, जल थल पेख पेख मन बिकस्यो, पूर रहो सर्व मही, दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, मेरे साधे कीनो सही, सेमर सेमर जीवत हर नानक, जम की पीर ना फही, सारग महला पनवा मायरी, मन मेरो मतवारो, पेख दयाल अंध सुख पूरन, हर रस रप्यो खुमारो रघाओ, निर्मल पै उजल जस गावत, बौर न होवत कारो, चरण कमसों डोरी राची, भेट्यो पुरख अपारो, कर गए लीने सर्बस दीने, दीपक पयो उजारो, नानक नाम रसक बैरागी, उले समूहा तारो, कारग महला पंजवा मायरी, आन सिमर मर जाहे, प्या गोबिंद जीन को दाता, माया संग लपटा हे रघाओ, नाम सार चले अनमार्ग, नरक कोर में पाहे, अनक सजाई गणतन आवे, गर्भ गर्भ परमाहे, से तनवंते से पतवंते,

काम क्रोध निंदा पर हरिये काढ़े साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे

गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रखाओ। साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान, जिसे कृपाल होए मेरा स्वामी पूर्णता को काम। जा हृदय वसे पए भंजन, ते जाने सगल जगान। खिन पल बिसर नहीं मेरे करते, तो नानक मांगे दान। सार्ग मोहल्ला पंजवा, बूठा सर्वथा ही में हो। अंध मंगल गाओ हर जस, पूर्ण प्रट्यो ने हो रहाओ। चार कुंट दह दिस जल निध, ऊन थाओ ना के हो। कृपा निध गोविंद पूर्ण, जी दान सब देहो। सत सत हर सत स्वामी, सत साह संगे हो। सत तेजन जिन प्रतीत उपजी, नानक नह परमे हो। सार्ग मोहल्ला पंजवा, गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार। सजन मीत सगा।

तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी पर तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन विद्या कर सर्वस अंतर राखी। वेद पुराण सिमरत साधु जान।

गाय बिनसी सब अवमानी रगाओ तार अनुग्रह अपनी कर लीनी गुरमुख पूर ज्ञानी सर्व सुख आनंद कनेरे ठाकुर दर्श त्यानी निकट वर्तन सस दा सुहागन तेज साई जानी प्रे रंग रंग रति नारायण नांग तिस कुरबानी सार्ग महला पंजवा तो चरण आसरो ईस तुम्हें पछानू साग तुम्हें संग राखन हार तुम्हें जगदीश रखाओ तू हमरो हम तुमरे कहिए एत उत तुम ही राखे तू बेअंत अपरंपर स्वामी पुर कृपा कोई लाखे बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जाने जाको मेल लय प्रभ नानक सेजन दर गए माने सारंग महला पंजवा चौपदे कर पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद हर भज आन कर्म विकार मान मोह न बुझ तृष्णा काल ग्रह संसार गाओ खात पीवत हस्त सोवत औद बिती असार नरक उधर परमंत जल तो जमे की निसार पर द्रोह करत विकार निंदा पाप रत कर चार बिना सदगुर बूझ नाही ता मोह महा अंधार बेट खोई खाए मुठो कितना सिरजनहार गोविंद गुप्त हो रहे न्यारो मातंग मत अंकार कर कृपा पर संत रखे चरण कमल आधार कर जोर नानक शरण आयो गोपाल पुरख अपार सारग महला पंजवा कर सेवा पड़ताल एक ओंकार सदगुर प्रसाद शुभ वचन बोल गुण अमोर किंकरी विकार देखरी विचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग करती महा केल रगाओ सुपनरी संसार मितनी विस्तार सखी काए मोहे मोहे ली प्रे प्रीत हृदय मेल सरबरी प्रीत दयार प्रसदारी दयार काए आन आन रुचिए हर संग संग खचिए जो साध संग पाए कौ नानक हर त्याए अब रहे जमे मेल सारग महला पंजवा कंचना बो दत करा होम दान अर्प तरा मन अनक सोच पवित्र करत ना हीरे नाम तुल मन चरण कमल लागे रगाओ चार वेद जेब पने दस अष्ट खष्ट श्रवण सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे परत संद सोच चार किरिया कुंट निराहार।

मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते आराम राम सार भूत नानक तत् विचारे सारग महला पंजवा ना भगत मांग संत त्याग सगल कामी रगाओ प्रीत लाए हर त्याए गुण गोबिंद सदा गाए हर जन की रेन बांश दयनगार स्वामी सर्व कुशल सुख विश्राम आन दा आनंद नाम जम की कछ नाहे त्रास तिमर अंतर जामी एक शरण गोविंद चरण संसार सगल ताप हरण नाभ रूप साध संग नानक पार ग्रामी सारग महला पंजवा गुण लाल गावो गुर देखे पंचा ते एक छूटा जो साध संग पग राओ रगाओ दृष्टो का संग न जाए मान त्याग मोह एक घर प्रीत लाए मिल साध संग सोहा पायो है रे गुण दान सगल आस पूरी नानक मन आनंद पय गुर बिखम गार तोरी सारग मोहल्ला पंजवा मन बिरागेगी खोजती दरसार रगाओ साधु संतन सेवक प्रो हीरे त्यायो आनंद रूपी पेख कै हो महल पावोगी काम करी सब त्याग कै हो शरण परोगी नानक स्वामी घर मिले हो गुरमनाव होगी सारग मोहल्ला पंजवा ऐसी होए परी जानते दयार रगाओ मातर पितर त्याग कै मन संतन पाए बेचायो जात जन्म कुल खोइए हौ गावो हर हरी लोक कुटुंब ते टूटिए प्रभ किरत किरत करी गुरमुख उपदिसया नानक सेव एक हरी सारग महला पंजवा लाल लाल मोहन गोपाल तू कीड़ हस्त पाखान जंत सर्व में प्रतपाल तू रहाओ ने दूर पूर हजूर संग सुंदर रसाल तू ने बर्ण बर्ण ने कुले कुल नान प्रभ कृपाल तू सारग महला पंजवा करत केल बिखे मेल चंद्र सूर मोहे उपजता विकार दुंदर नौपरी चुनंत कार सुंदर अनेक पाओ करत फिरत बिन गोपाल तोहे रगाओ तीन पौने लपटाए रही काज कर्म ना जात सही उन मत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काड़ दीनी जमकी फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नामा हर बिन तेरो को ना सहाई कां की माल पिता सुध बनता को काहू को पाई रगाओ तन धरणी हर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटे का संग न चाले कहां ताए लपटाई दीन दयाल सदा दुख भंजन तस रुचना बढ़ाई नानक कहत जगत सा मिथया जो सुपना रहे नाई सारंग महला नामा कहां मन बिखिया स्यों लपटाही या जग में कू रहन न पावे एक आवे एक जाही रगाओ का को तन तन संपत का की का स्यो निहो लगाई जो दिसे सो सगल बिनासे जो बादर की शाही तज अवमान शरण संतन गहो मुक्त होए शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सो सुपने पी नाही सारंग महला नामा कहा नर अपनो जन्म गवावे माया माद बिखे अरस रचियो आराम सरन नहीं आवे रगाओ यो संसार सगल के सुपनो देख कहां लोभावे जो उपजे सो सगल बिना से रहन न को उपावे मितया तान साचो कर मान्यो

जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई मुक्त पए साह संगत कर तिनके अवगुण सब परखरिया तिनको देख पए किरपाला तिन पवसागर तरिया हम नाने नीच तुम्हें बड़ साहेब कुदरत कौन बिचारा मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम अधारा सारग महला पंजवा अष्टपदी कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अगाध सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचरज सभा रखाओ सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन पीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश मित नाही जाका विस्तार तो बाता की अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जागे सोग हरख दोहू मैं नागे अनक ब्रह्म जाके वेद तुन करे अनक महेश बैस ध्यान करे अनक पुरख

आपो देओ संदेशा, देओ संदेशा प्रभु जीव कैसा, कै मोहन परवेसा, अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई, थान तनंतर देसा, बंधन ते मुक्ता कड़कड़ जुगता, कै ना सकोहर जैसा, देख चरित नानक मन मोयो,

पौड़ी गुरमुख चल तरचाए हून गुण प्रगटी आया गुरबाणी सद उचर है हर मन मसाया सगत गई प्रम कटिया शिव जोत जगाया।

जत होए ब्राह्मण चुली संतोख की गिरही का सतदान राजे चुली ने आव की पढ़िया सच ध्यान पानी चेतना तो पई मुख पीते तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुने सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुने नौनद मिले मन चिंदिया पावे नाए सुने संतोख होए कवला चरण त्यावे नाए सुने सहज उपजे सहजे सुख पावे गुरमति नाव पाईए नानक गुण गावे श्लोक महला पहला दुख ज जमन दुख मरण दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करे पुकार दुखियां पंडा खुलिया सुख ना निकले हो कोए दुख जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिवती रत्या मन तन हरिया होए दुख की अग्गी मारिए पी दुख दारू होए महला पहला नानक दुनिया पस रंग पसु हू पस खेहे पसो पस कमावनी पी पस परिये देह जा जियो विचों कढ़िए पसु पर आ जाए अगे लेखा मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुने सुज संजम जम नेड़ न आवे नाए सुने कड़ चानना आरेर गुआवे नाए सुने

होवे लिंग चिंग ने होवे ऐसी कही गए सूरत जो उस इच्छे सो फल पाए ता नानक कही गए मूर्त पौड़ी सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया जिद प्राप्त सो लह गुर शब्दी मिलया सतगुर के पाणे जो चले हर से तीर लिया जमकाल जोहे ना सकई घट चानन बलिया नानक बख्श मिलायन फिर गर्भ ना गलिया श्लोक महला पहला सच वर्त संतोख तीर्थ ज्ञान ज्ञान इसनान दया देवता खिमा जप माली ते मानस प्रधान जुगत तोती सुरत चौंका।

फिर हुए ना बिनासा, हर से तीरंग रव रहे सब सास गिरासा, हर का रंग कदे ना उतरे गुरमुख पर गासा, ओए कृपा करके मेलियन नानक हर पासा। श्लोक महला तीजा, जिच ओ मन लहरी विच है होमे बहुत अहंकार, सबदे साधन आवई नाम न लगे प्यार, सेवा थाए न पवी तिसकी खब खब होए खुआर, नानक सेवक सोई आखिए जो सिर तरे उतार, सतगुर का पाणा मन ले शब्द रखे उतार। महला तीजा, सो जापो तब सेवा चाकरी जो खसमें पावे, आपे बगसे मेल लय आपत गवावे, मिलिया कदेरा विछड़े ज्योति ज्योत मिलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिस आप बुझावे। पौड़ी सब को लेखे विच है मनमुख अहंकारी, हर नाम कदे ना चेतई जमकाल सिर मारी, पाप कार मनूर सब लद्दे बहु पारी, मार्ग बिगम डरावना क्यों तरिये तारी, नानक गुर राखे से उबरे हर नाम उधारी। श्लोक महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सुख नहीं मर जम्मे वारो वार, मोठ गोली पाईन बहु दूजे पाए विकार, एक गुर प्रसादी उबरे इस जन को करे सब नमस्कार। नानक अनदिन नाम त्याए तू अंतर जिद पावे मुख द्वार। महला तीजा, माया मोहे विसारिया सच मरना हर नाम, धंधा करत्या जन्म गया अंदर दुख सहाम, नानक सतगुर से सुख पाया जिन पूर्व लिखिया क्राम। पौड़ी लेखा पढ़िए हर नाम फिर लेख ना होई, पूछ ना सके कोए हार दार सट होई, जम काल मिलेंदे पेट सेवक नित होई, पूरे गुरते महल पाया पद प्रगट लोई, नानक अनहद तुनी दरवाजे दे मिलिया घर सोई। श्लोक महला तीजा, गुर का कहया जे करे सुखी हूं सुखसार, गुर की करनी पौ कटिए नानक पावे पार। महला तीजा, सच पुराना नातीए नाम ना मैला होए, गुर के पाने जे चले बौड़ न आवन होए, नानक नाम सारे आमन जाना दोए। पौड़ी मंगत जन जाते दान हर देव सुपाए, हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए, खिन पाल कड़ी न जीवउ बिन देखे मरा माए, सतगुर नाल दिखा लिया रब रहे सब थाए, सुत्या आप उठा।

दूजे पाए नाम सारिया मन मूर्ख मिले सजाए जिन कीते तिसे ना सेवनी देंदा रिजक समाए जम का फाह गलो ना कटिए फिर आवे जाए जिन को पूर्व लिखया सतगुर मिलया तिने आए अन दिन नाम त्याए दे नानक सच समाए महला तीजा सच वण जय सच सेवन दे जे गुरमुख पैरी पाहे नानक गुर के पाणे जे चले सहजे सच समाहे पौड़ी आसा विच अत दुख कणा मनमुख चित लाया गुरमुख पय निरास परम सुख पाया विचे गृह उदास अलिप्त लिव लाया ओ ना सोग विजोग ना व्यापई हर पाणा पाया नानक हर सेती सदा रव रहे तुर लए मिलाया। श्लोक महला तीजा पराई अमान क्यों रखी है दित्ती ही सुख होए गुर का शब्द गुर ते टिके होर से प्रगट ना होए अन्ने वस मानक पया घर घर वेचण जाए ओना परख न आवई अड न पल्ले पाए जे आप परख न आवई ता पारखियां था वो लयो परखाए जे ओस नाल चित लाए ता वथ लहे नौनद पल्ले पाए कर होंदे तान जग भुखा मोआ बिन सतगुर सोझी ना होए शब्द शीतल मन तन वसे तिथे सोग वियोग न कोए वस्त पराई आप गर्व करे मूर्ख आप गणाए नानक बिन बूझे किने न पायो फिर आवे जाए महला तीजा मन अंध पया मिलिया हर प्रीतम सरसे सज्जन संत प्यारे जो तुर मिले न विछड़े कबू जे आप मिले करतारे अंतर शब्द रव्या गुर पाया सगले दुख निवारे हर सुख दाता सदा सलाही अंतर रखा उर तारे मानमुख तिनकी बखीली के करे जे सच्चे शब्द सवारे ओना दी आप पद रखसी मेरा प्यारा शरणागत पय गुरुद्वारे नानक गुरमुख से सुहेले पय मुख उजल दरबारे पौड़ी स्त्री पुरखे बो प्रीत मिल मोह वधाया पुत्र कलत्र नित वेखे विकसे मोय माया देश परदे तन चोराए आन मोय पाया अंत होए वायर विरोध को सके ना छिड़ाया नानक विण नावे त्रिग मोह जित लग दुख पाया। श्लोक महला तीजा गुरमुख अमृत नाम है जित खादे सब भुख जाए तिसना मूल ना होवई नाम से मन आए बिन नावे जे होर खाना ते तरोग लगे तन ताए नानक रस कस शब्द सलाहना आपे लए मिलाए महला तीजा जिया अंदर जियो शब्द है जित सह मेला वाह होए बे शब्दे जग आनेर है शब्दे प्रगट होए।

भगत आनंद है सदा सुख वस्ते मन आए, जिन्ना गुरमुख नाम आराध्या तेना दुख भुख ले जाए।

कहां नार गर्भस थोरी बात, मंद नाज टका चार गांठी, आइडो टेडो जात रखाओ, बहुत प्रताप गांव सो पाए, दो लख टका बरात, दिस चार की करो साहेबी, जैसे बनघर पात, ना को ले आयो यो तन, ना को ले जात, रावण हूं ते अलक शत्र पा, हर के संत सदा सिर पूजो, जो हर नाम जपात, जिन को कृपा करत है गोविंद, ते सत्संग मिलात, मात पिता बंता सुत संपत, अंत न चलत संगात, कहत कबीर आराम पज बौरे जय।

माया कारण श्रम अत करे, सो माया ले गाडे तरे, आत संचे समझे नहीं मूड, तान तरती तन हो गयो तूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरे, साध संगत कबहू नहीं करे, कहत नाम जो ताची आन, निरपय होए पजिए भगवान, बदो की ना हो माधो मोस्यों, ठाकुर ते जान जानते ठाकुर, खेल परयो है तो स्यों रहाओ, आपन देव देवरा आपन, आप लगावे पूजा, जल ते त्रंग त्रंग ते है जाल, कहेन सुनन को दूजा, आपे गावे आपे नाचे, आप बजावे तूरा, कहत नाम देव तू मेरो ठाकुर, जन ऊरा तू पूरा, दास अनिम मेरो निज रूप, दर्शन निमख तात्री मोचन, परसत मुक्त करत ग्रे कूप रहाओ, मेरी बंदी भगत छिड़ावे, बंदे भगत न छूटे मोहे, एक समय मोको गए बंद, तौ फुन मैं पो जवाब न होए, मैं गुण बंद सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास, नाम देव जाके जी ऐसी, तैसो ताके प्रेम परगास, सारंग एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, तय नर क्या पुराण सुन कीना, आन पावनी भगत नहीं उबजी, भूखे दान ना दीना रहाओ, काम ना बिसरयो, क्रोध ना बिसरयो, लोभ ना छूट्यो देवा, पर निंदा मुक्ति नहीं छूटी, निवर पई सब सेवा, बाट पार कर मूस बिरानो, पेड़ परे अपराधी, जे परलोक जाए अब कीरत, सोई अविद्या साधी, हिंसा तो मते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद सा संगत मिल, कथा पुनीत ना चाली, शाड़ मान हर विमुखन को संग, सारंग महला पंजवा सूरदास, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्वस सब अर्प्यो, अंध सहज तुन चोक रगाओ, दर्शन पेख पय निर्भखई, पाए गय सगले थोक, आन बस त्यो काज न कछुए, सुंदर बदन अलोक, श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, जो पुष्टि तन जोक, सूरदास मन प्रभत लीनो, दिनो यो परलोक, सारंग कबीर जियो, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, हर बिन कौन सहाई मन का, माल पिता पाई सुध बनता, हित लागो सब फन का, रहाओ आगे कौ किछ तुलखा बंद हो, क्या प्रवासा तन का, कां विसासा इस पांडे का, इत लग लागे ठनका, सागल धर्म पुन फल पावो।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुर प्रसाद खाना पीना हसना सोना विसर गया गए मरना खसम विसार खुवारी कीनी त्रिक जीवन नहीं रहना।

जियां अंदर जियो तुही गुरमुख त्यावे से अमृत पावे से ही सूते हो ही आहिर इस नाम जपोरे प्राणी मैले हच्छे हो ही जे ही रुत काया सुख तेगा ते हो जे ही देही नानक रुत सुहावी साई बिर नावे रुत के ही। मलार महला पहला।

जिन हर प्रभ आन मिलाया रहाओ। नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों, आन दिन भगत सुहावी। मुक्त पए गुरदर्श दिखाया, जो जोग भगत सुपावी। हम थारे तिर पावन जग तुमरा, तू मेरा हो तेरा। सतगुर मिलया निरंजन पाया, बहोर ना पव जल फेरा। अपने पिर घर देख वेगासी, तौ तन साज सीगारो। अकुल निरंजन स्यों सच साची, गुरमत नाम आधारो। मुक्त पई बंधन गुर खोले, साबद

मेरा हर प्रभ अगम अगोचर है, कीमत कहण ना जाए। गुर प्रसादी बुझिए सबदे कार कमाए, नानक नाम सलाए तू हर हर दर शोभा पाए। मलार महला तीजा गुरमुख कोई विरला बूझे, जिसनू नजर करे गुर बिन दाता कोई नाही। बगसे नजर करे गुर मिले सांत उपजे, अन दिन नाम लाए। मेरे मान हर अमृत नाम ते आए, सतगुर पुरख मिले नाव पाईए, हर नामे सदा समाए। अरहाओ मानमुख सदा विछड़े फिरे,

माया मोह अज्ञान गुबार, मन मुख मोहे मुग्ध गवार, आनदन तंदा करत विहाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लपटाई, जो किश होवे सहज सुपहाए, हर्ष पीवे रसन रसाए,

पाए, यो विछोड़ा सहया ना जाए। सतगुर मिले ता मिले सो पाए, नामहीन बिनसे दुख पाए। तृष्णा जलिया भूख न जाए, बिन भागा नाम न पाया जाए। बहुबद थाका करम कमाए, त्रै गुण बाणी वेद विचार। बिख्या मैर बिख्या वापार, मार जन्मे फिर होए खुवार। गुरमुख तुरिया गुण उरतार, गुर माने माने सब कोए। गुर बचनी मन शीतल होए, चौ जुग शोभा निर्मल जन सोए। नानक गुरमुख विरला कोए,

जन के हम हाट बेहाजे जिस हर घर कृपा करे हर जन को मिलिया सुख पाइये सब दुरमत मैल हरे हर जन को घर भूख लगानी जन तृपे जा हर गुण विचरे हर का जान हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरे जिन ए प्रीत लाई सो जाने कह जाने जिस मन तरे जन नानक हर देख सुख पावे सब तन की भूख टरे मलार महला चौथा जितने जी जंत प्रभ कीने इतने सिर कार लिखावे हर जन को हर दीन वडाई हर जन हर कार लावे सतगुर हर घर नाम दिरड़ावे हर बोलो गुर के सिख मेरे पाई हर फौजल जगत तरावे रघाओ जो गुर को जन पूजे सेवे सो जन मेरे घर प्रापावे हर की सेवा सतगुर पूजो कर कृपा आप तरावे परम फूले अज्ञानी अंधले प्रम प्रम फूल तोरावे निर्जु पूजे मड़ा सरेव है सा बिरती काल गवावे ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कहिए हर घर कथा सुनावे तिस गुर को शादन पूजन पाठ पटंबर बहु विद सदकर मुख संचो तिस पुन की फिर टूट न आवे सतगुर दियो प्रतख हर मूर्त जो अमृत भजन सुनावे नानक पाग पले तिस जन के जो हर चरणी चित लावे मलार महला चौथा जिनके हीरे बस्यो मेरा सतगुर ते संत पले पल पांत तिन देखे मेरा मन विसे औ तिनके सदबल जात ज्ञानी हर बोलो दिन रात तिनकी तृष्णा पूग सब उतरी जो गुरमत राम रस खांत रखाओ हर के दास साध सगा जान जिन मिलिया ले जाए परांत ज्यों जल दुध पिन पिन काढ़े चुन हंसला त्यों देही ते चुन काढ़े साधु हो में तात जिनके प्रीत नाही हर हृदय ते कपटी नार नित कपट कमात तेन को क्या कोई देख वाले कोई आप बीज आपे ही खांत हर का चेन सोई हर जन का हर आपे जन में आप रखांत तन तन गुरु नानक समदर्सी जिन निंदा उस्तत तरी तरांत मलार महला चौथा आगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वड भागी संग साधु पार पया मेरे मान

खाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिसटाए। करी पाक साल सोच पवित्रा, हुण लाभ पूघर राय। दुष्ट बिदारे साजन रहसे, ए मंदर कर अपनाए। जौ ग्रे लाल रंगी यो आया, तौ में सब सुख पाए। संत सभा ओट गुर पूरे, पुरमस्तक ले।

राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवे निद पाई। उदाउद पयो पूर्ण भावी को, पेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे, पार ब्रह्म लिवलाई। तरयो संसार कठिन पै सागर, हर नानक चरण।

आनंद मंगल सुख पाया रखाओ, मिटे कलेस त्रिसन सा बूझी पार ब्रह्मन त्याया। साध संग जन्म मरने वारे बौर न कतहू ताया, मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया। अंगीकार कियो प्रभु अपने नानक दास शरणाया, मलार मुहल्ला पंजवा विशरत क्यों जीवे ओए जीवन, किते उलास आस मिल।

आतन साधु संग उधारे रहाओ। देव कोल दैंत कोल जाख किन्नर नार सागर उतरे पारे। जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बिदारे। काम क्रोध मां बिखिया रस इनते पए निरारे। दीन दयाल जपे करणा मैं नानक सद बलिहारे। मलार महला पंजवा आज मैं बैस्यो हर घाट। नाम रास सांझी कर जम स्यो जाओ ना जम कै घाट। रखाओ तार अनुग्रह पार ब्रह्म राखे प्रम के खुले कपाट। बेसुमार साहु प्रापाया ला चरण निध खाट। शरण गई अचुत अवनासी किरवे काढ़े है शाट। काल कलेश मिटे दास।

पूर्ण भगत चेरानो रहाओ। ए त्योत डोल डोल शरम पायो, तान तन होत बेरानो। लोग दोराए करत ठगियाई, होतो संग न जानो। मृग पंखी मीन दीन नीच, ए संकट फिर आनो। कहो नानक पान प्रवता रहो, साध संगत सुख मानो। मलार महला पंजवा, दुष्ट मोए बिख।

आओ। सतगुर जेवड़ अवर ना कोए, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोए। जन्म मरण दुख ते राख, माया बिख फिर बौड़ ना चाख। गुर की महिमा कसन ना जाए, गुर परमेश्वर सच नाए। सच संजम करनी सब साची, सो मन निर्मल जो गुर संग राची। गुर पूरा पाई गेवड़ भाग, काम क्रोध लोभ मन ते त्याग।

हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललत गुनाग अंक पांत बोविध रूप दिखावनी नीकी गिर तार थाल जाल पावन परपुर काट काट लालन शावनी नीकी साध संगरा मैया रस पायो नानक जाके पावनी नीकी मलार मोहल्ला पंजवां गुरप्रीत प्यारे चरण कमल अंतर तारे रहाओ दर्श सबलो दर्श पेखेओ गए किल विख गए मन निर्मल उजियारे बिस्म बिस्मे बिस्म पई अग कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक सरण द्वारे मलार मोहल्ला पंजवां बरस सरस आग्या होए आनंद सगल भाग रहाओ संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग कान कोर प्रीत मोर चित चात्रक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोहो मिल

मान रे सतगुर सेव समाए वडे पागुर पूरा पाया हर हर नाम त्याए रहाओ हर अपने पाने सृष्ट उपाई हर आपे दे आधार हर अपने पाने मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार हर के पाने सतगुर पेटिया सब जन्म सवारन हार वाहो बाणी सत है गुरमुख बूझे कोए वाह वाह कर प्रसाल आई है तेस जेवड़ अवर न कोए आपे बगसे मेल लय कर्म प्राप्त होए साचा साहेब मारो सतगुर दिया दिखाए अमृत वरसै मन संतोखिए सच रहे लिवलाए हर के नाए सदा हरियावली फिर सुके ना कुमलाए बिन सतगुर किने ना पायो मन वेखो को पतियाए हर कृपा ते सतगुर पाइए भेटे सहज सुपाए मानमुख परम भुलाया बिन पागा हर तन ना पाए त्रै गुण सबा तात है पढ़ पढ़ करे विचार मुक्त कदे ना होवई न पाएन मोह द्वार बिन सतगुर बंधन ना टुट ही नाम न लगे प्यार पढ़ पढ़ पंडित मुनी थके वेदा का अभ्यास हर नाम चित ना आवई न निज कर होवे वास जम काल सिरो ना उतर अंतर कपट विनाश हर नावे नू सब को प्रताप दा विण भागा पाया ना जाए नदर करे गुर पेटिए हर नाम से मन आए नानक नामे ही पत उपज हर सोरहां समाए मरार महला तीजा अष्टपदी कार दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कृपा करे गुर की कारे लाए दुख पल्लर हर नाम साए साची गत साचे चित लाए गुर की बाणी शब्द सुनाए मन मेरे हर हर सेव निधान गुर कृपा ते हर तन पाई है

पूजा लाया। दस अवतारी राम राजा आया, दैता मारे ताए हुक्म सवाया। ईस महेश्वर सेव इनी अंत ना पाया, सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया। दुनिया तंदे लाए आप छपाया, कर्म कराए कर्म तुरों फरमाया। श्लोक महला दूजा, सावन आया हे सखी,

सावन आया हे सखी जल हर बरसनहार। नानक सुख सवन सोहागणी जिन सहनाल प्यार पौड़ी। आपे छिंज पवाए मल्ला खाड़ा रचिया लत्ते पड़तू पाए गुरमुख मचिया।

दूजे किस गणी मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुदमणी आवा गौण रचाए उपाई मेदनी सतगुर सेवे अपना आया तिस गणी जे होमे विचों जाए ताके ही गणत गणी मानमुख मोए गुबार जो पुला मंजवणी कटे पाप असंख नावे एक कणी सलोक महला तीजा बाबिया खसमे का मैल ना जानही मैल देख अरदास पाए अपने पाने बहुता बुल है बुलिया थाए न पाए खसम वड्डा दातार है जो

पौड़ी सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया अंत खलोआ आए जे सतगुर अगे कालिया होए न सके जमकाल सच्चा रखवालिया गुरसाखी जोत जगाए दीवा बालिया मानमुख विण नावे कूड़ियार फिरे बेतालिया पशु मानस चम पलेटे अंदर हों कालिया सबो वरते सच सच्चे शब्द निहालिया नानक नाम निधान है पूरे गुरदे खालिया सलोक महला तीजा बा भी है हुगम पछाणिया गुर कै सहज सुपाए मेघ वरसते दया कर गूड़ी शैबर लाए बाबी के कूक पुकार रह गई सुख वस्या मन आए नानक सो साल आई है जे देंदा सबना जिया रिजक समाए महला तीजा चातरक तू ना जान ही क्या तुद विच तिखा है किल पीते तिख जाए दूजे पाए परमया अमृत जल पल्ले ना पाए नदर करे जे अपनी ना सतगुर मिले सुपाए नानक सतगुर ते अमृत जल पाया सहजे रहा सुमाए पौड़ी एक वाणखण बैसे जाए साधना देव ही एक पाला ककर पन्न शीतल जल हेव ही एक पसम चिड़ावे अंग मैल ना तोव ही एक जटा बिकट बिकराल कोल कर खोवगी एक नगर फिरे दिन रात नींद ना सोवगी एक अगन जलावे अंग आप विगोवगी विण नावे तनशार या कह रोवगी सोहन खसम द्वार जे सतगुर सेवगी

गुरमुख शब्द संभालिए सच्चे के गुण गाओ। नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाओ। पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया, पूरे कर्म त्याए पूरा शब्द मन मसाया।

काल सहे खंड मंडल हैरान तार कोर बाज तरत है साच तख्त सुल्तान सुख मन कह कर राग सुन सुन मंडल लिवलाए अकथ कथा बिचारिये मनसा मने सुमाए उल्ट कमल अमृत भरिया इहो मन कतहु ना जाए अजपा जापना विसरै आद जुगाद समाए सब सखियां पंचे मिले गुरमुख निज करवास शब्द खोज इहो कर।

अकल मन गोर न मानी। मन कमीन कम तरीन तू दरिया ओ खुदाया। एक चीज मुझे देहे अवर जहर चीज ना पाया। पुराब खाम कूजे हिकमत खुदाया। मन तुआना तू कुदरती आया। सगनानक दीबान मस्ताना निध चढ़े सवाया।

प्रतहार तो ऐसा राजा श्री गोपाल जांचे कार गान गंधर्व रिखी बपड़े टाडिया गावंत अच्छे सर्व शास्त्र बहुरूपिया

भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बखियात चमारंग हृदय राम गोविंद गुण सारंग हरहाओ सुरसरी सरल किरत बारनी रे संत जन करत नहीं पानंग तुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनंग तर तार अपवित्र कर मानिए रे।

लयत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जप पए दयाल। कहो नानक तो छूटे जंजाल, कानड़ा मोहल्ला पंजवां ऐसी मांग गोबिंद ते। तैर संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रखाओ। पूजा चरना ठाकुर सरना तोई कुसल जो प्रभु जी उपरना। सबर होते दुर्लभ देही जाको सदगुर मया करेही। अज्ञान परम बिन से दुख डेरा जाके हृदय बसे गुर पैरा।

आओ दुख नाही सब सुख ही है रे एक है एकी नित बुरा नहीं सब पला ही है रे हार नहीं सब जित सोग नाही सदा हर की है रे छोड़ नाही किश लेता है कहो नानक जान हर हर हर।

रेन संतना हर संतना हर संतना की रेन कियो अर्प देन प्रभ पय है किरपेन मान वो त्याग छोड़े।

संगा हठ निग्रह अतरैत बिटंगा हों रोग व्यापे चुके न पंगा काम क्रोध आत त्रिसन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा मोहल्ला पंजवां कार सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिख बूझ गई गई मेरे साध जना पंच भागे चोर सहज सखैनो हरे गुण गावती गावती गावती दस प्यार रगाओ जैसी करी प्रा मोह्यो ऐसी हो कैसे करो यो तुम्हारे बल बले बल बले बल गई पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रवतान तेरो केरो जित जंतन कर विचार अनक दास कीर्त करे तुहारी सोई मिलो जो पावत जन नानक ठाकुर रहो समाए एक तू ही तू ही तू ही कानड़ा मोहल्ला पंजवां कर अठवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्यागिए गुमान मान देखता दयाल लाल हां हां मन चर नरेन रखाओ हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान फिर दे गोविंद गाए चरण कमल प्रीत लाए दीन दयाल मोहना कृपाल दया मया धार नानक मांगे नाम दान तज मोह परम सगल अभिमान

अधिकार सागर पद तमो मान अंध बिकल माया संग तंद कर गए प्रभ आप काढ़ हो राख लियो गोविंद राय अनाथ नाथ सनाथ संत।

नाम सुने ना मोह मन पावे, ना मेही त्रिप्तावे गो। कनक कनक पैरे बो कंगना, का पर भांत बनावे गो। ना विनाशा भीख भिखाने, जन्म मरे फिर आवे गो। माया पटल पटल है भारी, कर घूमन केर खुलावे गो। पाप कार मनूर सा पारे, एक दुत्तर तरयो ना जावे गो। पौ बैराग पया है बोहित, गुर खेवट शब्द तरावे गो। राम नाम घर पेटिए, हर रामे नाम समावे गो। अज्ञान लाए सवालिया।

बहुरंगी सब एकत बचन चलावै गो गुरमुख एको एक पछाता गुरमुख होए लखावै गो गुरमुख जाए मिले निज महली अनहद शब्द बजावै गो जी जंत सब सहट्यो पाई गुरमुख शोभा पावै गो बिन गुर भेटे को मैल न पावै आए जाए दुख पावै गो अनेक जन्म विछड़े मेरे प्रीतम कर कृपा गुरु मिलावै गो सतगुर मिलत महा सुख पाया।

नारायण सगले जंत पजो गोपालय जब तब संजम पूर्ण कालय नित पजो स्वामी अंतर जामी सबल जन्म सबाया गोविंद गायगे नित प्याई है प्रवान सोई आया जब ताप संजम हर घर निरंजन गोविंद तन संग चालय बिनवंत नानक कर दया दीजे हर रतन बंद उपालय मंगल चार चोज आनंदा कर कृपा मेरे परमानंदा प्रमिले स्वामी सुख गामी इस मन की पुनिया बजी बधाई सहजे समाई बौड़ दुख ना रुनिया ले कंठ लाए सुख दिखाए बिकार बिन से मंदा बिनवंत नानक मिले स्वामी।

चार हर मिल हो सतगुरु दया कर मन वसै एकंकार जिन गुरमुख सुन हर मनिया जन नानक तिन जयकार पौड़ी आराम नाम वखर है उत्तम हर नायक पुरख हमारा हर खेल किया हर आपे वरतै सब जगत किया वणजारा सब जोत तेरी ज्योति विच करते सब सच तेरा पासारा सब त्याव है

तेरा जस स्वामी तिन काटे पाप कटोना तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत मुख वड वड भाग वडोना सब त्यावो आद सते जुगाद सते प्रतख सते सदा सदा सते जन नानक दास दसोना सरोक महला चौथा हमरे हर जग जीवना हर जप्यो हर गुरमंत हर अगम अगोचर अगम हर हर मिलया आए अचिंत हर आपे कड़ कड़ वर्तदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे पिखया पाएदा साब सेट पाई जी जंत।

हर प्रसज्जन नाम हर मैं मनतन नाम शरीर सब ऐसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन घर तीर पौड़ी हर उत्तम घरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर घर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार समाले सब जी जंत हर वसे निट सब जौला सो बूझे जिस आप बुझाए सी जिस सदगुरु पुरख प्रसौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समोला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रवचेत मान हर सहज समा समाए जन नानक हर हर चाओ मान गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस सेती पिर हड़ी हर एको मेरे चित जन नानक एक आधार हर प्रभ इक सते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजया आनंद मूल राम सब देखया गुर शब्दी गोविंद गजया आद जुगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ भजया हर देव हो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लजया सब धन कहो गुर सदगुरु गुर सदगुरु जित मिलघर पड़दा कजया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर परे वहन जिन्ना सदगुर मनिया जन नानक वडभाग लहन महला चौथा हर घर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर घर अगम अगाध हर जान केत विद मिले मिलाहे हर घर जस जपत जपंत जान एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लेहो लड़लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिए तिस रूप न रेखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सदगुर चढ़ साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सदगुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर घर नाम अमृत है हर जपिगे सदगुर पाए हर घर नाम पवित है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिनी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पय नाइयन जिन हर मन वस्या आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर घर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया

आवे को सुने को उचर सुनावे जन्म जन्म की मल उतर है मन चिंदिया पावे आमन जाना मिटिए हर के गुण गावे आप तरह संगीत तराहे।

सदगुर प्रसाद ऐसो राम राय अंतरजामी, जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रगाओ, बसे कटा काढ़ लीपना शीपे, बंधन मुक्ता जात ना दिसे, पानी माहे देख मुख जैसा, नामे को स्वामी बीठल ऐसा, निर्भाओ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपंग, गुर प्रसाद रामा राम रामे अंत न पाया, हम बारक प्रदपारे तुमरे, तू बड़ पुरख पिता मेरा माया, अरहाव हर के नाम असंग अगम है, अगम अगम हर राया, गुणी ज्ञानी सुरत भो कीनी, एक तिल ने कीमत पाया, गोविंद गुण गोविंद सद गावे, गुण गोविंद अंत न पाया, तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी, बो जपगे था न पाया, उस्तद करे तुमरी जनमादो, गुण गावे हर राया, तुम जल निद हा मीने तुमरे, तेरा अंत न कतहु पाया, जन कौ कृपा करो मसूदन, हर देवो नाम जपाया, मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरमुख पाया, कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसया, हर घर भगत बनी मत गुरमत, गुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाओ, गुर के पाग सिमरो दिन राती, मन हर घर हर बसया, हर घर हर कीर्त जग सारी, घस चंदन जस कसया, हर जन हर घर हर लिवलाई, सब सागत खोज पया, ज्यो किरत संयोग चल्यो नर निंदक, पग नागन छोए जलया, जन के तुम घर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखया, कहां पया दायत करीब खीली, सब कर कर चर परया, जेते जी जन प्रव किए, सब काले मोह ग्रसया, हर जन हर हर हर प्रव राखे, जन नानक सरन।

जप हर गुण अकथ सुन सही, धर्म अर्थ सब काम ओख है, जन पीछे लग फिर सही रखाओ, सो हर हर नाम त्यावे हर जन, जिस बड़भाग मथई जय दरगे प्रवलेखा मांग, ते छुटे नाम त्याए सही, हमरे दुख बो जन्म जन्म के, दुख होमे मैल लगत।

हम पाथर रख बुढ़ थई कल्याण मोहल्ला चौथा हमरी चितवनी घर प्रव जाने और कोई निंद करे घर जन की प्रवता का कहया एक तिल नहीं माने रखाओ और सब त्याग सेवा कर अचुत जो सबसे ऊज ठाकुर भगवान हर सेवा ते कालज होए ना सक चरणी आए पवे हर जाने जा को राख ले मेरा स्वामी ताको सुमत दे पैकाने ताको कोई अपर न सक जा की भगत मेरा प्रमाण हर के चोज विडान देख जान जो खोटा खरा एक निमक पछाने ताते जन कौ अंध पया है रिद्ध सुध मिले खोटे पछताने तुम हर दाते समरथ स्वामी एक मांगो तुम पासो हर दाने जन नानक कहो हर कृपा कर दीजे सद बसे हृदय मुझे हर चिराने।

रामा राम राम पूज करी जे मन तन अर्प तरो सब आगे रस गुरमत ज्ञान दरड़ी जे रखाव ब्रह्म नाम गुण साग तरोव नित चुन चुन पूज करी जे आत्म दियो दियो है आत्म रस लागे पूज करी जे विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल बिचर बिचर रस पीजे गुर प्रसाद पदार्थ पाया सदगुर कौ इहो मन दीजे निर्मोल अत हीरो नीको हीरे हीर बिधीजे मन मोती साल है गुर सबदी जित हीरा परख लईजे संगत संत संग लग ऊचे ज्यो पीप पलास खाए लीजे सब नरमे प्राणी उत्तम होवे राम नामे बास बसीजे निर्मल निर्मल कर्म भो कीने नित साखा हरी जड़ीजे तरम फुल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया बेकार बाजग दीजे एक जोत एको मन वसया सब ब्रह्म दृढ़ एक कीजे आत्म राम सब एक है पसरे सब चरण तले सिर दीजे ना बिना नगटे नर देखो तेन कस कस नाक वढ़ीजे सागत नर अंकारी कहिए बिन नावे त्रिग जीवीजे जब लग सास सास मन अंतर तद बेगल सरन परीजे नानक कृपा कृपा करता रहो मैं साधु चरण पखीजे कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण तुवीजे केल बेख दैन होए खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा कीजे रखाओ मंगत जन दीन खरे दर ठाडे आतरसन को दान दीजे त्रागे त्राए सरन प्रव्याए मुको गुरमत नाम जरड़ीजे काम क्रोध नगर में सबला नित उठ उड़ जूज करीजे अंगीकार करो रख ले वो गुरपूरा काड कढ़ीजे अंतर अगन सबल अद बिघया हे शीतल शब्द गुर दीजे तन मन सांत होए अदकाई रोग काटे सूख सवीजे ज्यो सूरज करण रव्या सरबठाई सब घट घट राम रवीजे साधु साध मिले रस पावे तत निरकर बैठिया पीजे जन कौ प्रीत लगी गुरसेती क्यों चकवी देख सुरीजे निरखत निरखत रैन सब निरखी मोह काढ़े अमृत पीजे सागत स्वान कई

मिल साधु संग रहीजे, तरमराय की कान चुकावे, बिग डुबदा काड कढ़ीजे, परम सूके बो उब सुग कहिए। मिल साधु संग हरीजे, ताते बेलम पल टिल ना कीजे, जाए साधु चरण लगीजे, राम नाम कीर्तन रतन वत, हर साधु पास रखीजे, जो बचन गुर सत सत करमाने, आगे काड करीजे, संतो सुनो सुनो जन पाई, गुर काढ़ी बां को पीजे, जे आत्म को सुख सुख नित लोड़ो, ता सतगुर शरण पवीजे, जे बड़पा होए अतनीका, ता गुरमत नाम गरड़ीजे, सब माया मोह बिखम जगत तरीये, सहजे हरस पीजे, माया माया के जो अधकाई, विच माया पजे पचीजे, अज्ञान अंधेर महापंथ बिगड़ा, अहंकार पार लद लीजे, नानक राम अराम राम राम।

के कर्म नाही तर्म नाही नाही सुचमाला शिव जोत कन्नो बुद्ध पाई सदगुरु रखवाला जाके बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई गात अवध की चिंत नाही सदगुरु फुरमाई जाके आस नाही निराश नाही चित सुरत समझाई तंत कौ परम तंत मिलिया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला ताका कहिया दर प्रवान बिख अमृत दुष सम कर जान क्या कहिए सर्वे रहया समाए।

अंग हर गुण नानक रब तरह प्रभाती महला पहला आवत करे ना राख्या जावत क्यों राख्या जाए जिते होवा सोई पर जाने जा उस ही माए समाए तू है वाहो तेरी रजाए जो करे सोई पर होए बा अवरण करना जाए रहाओ। जैसे हरड की माला टिंड लगत है एक सखनी होर फेर भरियत है तैसो ही यो खेल खसम का जो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी नजर प्रगा

मत सद पाए भगत गोविंदा, कीर्त कर्म कार निसंदा, अंतर रवतव राज रवंदा, प्रयो प्रयो प्रीत प्रेम उरतारी, दीना नाद पियो बनवारी, आनंद नाम दान व्रतकारी।

प्रीतम मनमोहन आत्रसलार सगूड़ और रघाव ऊपर कूप गगन पनहारी अमृत पीमनहारा जिसकी रचना शोभद जाने गुरमुख ज्ञान विचारा पसरी किरण रसकमल बेगासे सदकर सूर समाया काल विध्वंस मनसा मनमारी गुर प्रसाद प्रापाया आत्रस रंग चलू ले राती दूजा रंग न कोई नानक रसन रसाए राते रव रहया प्रवसोई पसरी किरण रसकमल बेगासे सदकर सूर समाया काल विध्वंस मनसा मनमारी गुर प्रसाद प्रापाया आत्रस रंग चलू ले राती दूजा रंग न कोई नानक रसन रसाए राते रव रहया प्रवसोई प्रभाती महला पहला बारह मह रावल खब जावे।

करे तो नरक पर एको सब एको प्रवर्त सब एक स्ते उत्पत चल नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रले।

लेव उन मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम मिटो कुर्बान, हमरे जग जीवन हर प्राण, हर उत्तम अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रखाओ, आभो संत मेरो मेरे पाई, मिल हर हर नाम वखान, कित विद क्यों पाइये प्रभ अपना, मोको करो उपदेश हर दान, सत संगत में हर हर वसया, मिल संगत हर गुण जान, वडे भाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान।

ताकत कौ दिन रैन अंधारी मोहे फाथे माया जाल खेन पाल हर प्राबर दे ना वस्यो रिन बंदे बोविद बाल सत संगत मेल मत बुध पाई हां छूटे ममता जाल हर नामा हर मीठ लगाना गुर किए शब्द निहाल हम बारक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल बिख भौजल डुबदे काढ लिहो प्रभ गुर नानक बाल गोपाल प्रभाती मोहल्ला चौथा एक खेन हर प्रभ कृपा तारी गुण गाए रसकर सीक गावत सुनत दो पै मुक्ते जिन्ना गुरमुख खेन हर पीक मेरे मन हर हर राम नाम रस टीक गुरमुख नाम सीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस टीक रखाओ जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिना मस्तक उजल टीक हर दिन शोभा सब जग ऊपर ज्यों विच पुड़वा ससकीक जिन हर हृदय नाम न वस्यो तिन सब कार्ज फीक जैसे सीगार करे दे मानुख नाम बिना नगटे नग कीक घड़कड़ रमैया रमत राम राय सब वरते सब में ईक जन नानक कौ हर कृपा तारी गुर भजन त्यायो करी मीक प्रभाती महला चौथा आगम दयाल कृपा प्रवतारी मुख हर हर नाम कहे पातत पावन हर नाम तिहायो तब किल बिख पाप लहे जप मन राम नाम रब रहे दीन दयाल दुख पंजन गायो गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ काया नगर नगर हर बस्यो मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रट्यो कर मंदिर हर प्रभ लहे जो नर परम परम उदयाने ते सागत मूड मोहे ज्यों मृग नाभ बसे बास बसना प्रम प्रम्यो चार गहे तौ वट अगम अगाध बोध प्रभ मत देवो हर प्रभ लहे जन नानक कौ गुरहा सिर तरयो हर राम नाम रब रहे प्रभाती मोहल्ला चौथा मन लागी प्रीत राम नाम हर हर जप्यो हर प्रभ वडफा सदगुर बचन सुखा ने ही अरे हर तारी हर प्रभ कृपफा मेरे मान भाज राम नाम हर निमखफा हर हर दान दियो गुर पूरे हर नामा मन तन बसफा रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर जब सोभा गुरमुख करपफा हलत पलत जन पये सुहेले मुख उजल गुरमुख तरफा आन पौ हर हर हर लिव लागी हर उरतारियो गुर निमुखफा कोड़ कोड़ के दो सब जन के हर दूर किए एक पलफा तुमरे जान तुम ही ते जाने प्रभ जान्यो जन ते मुखफा हर हर आप तरयो हर जन्म है जन नानक हर प्रभ इकफा प्रभाती मोहल्ला चौथा गुर सतगुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जप पहा तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा बिख डुबदे बां दे कड पहा जप मन राम नाम अर्धम्बा उपजाम उपाए न पाइये कतहु गुर पूरे हर प्रभ लाभा रघाओ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रस पहा लो मनूर कंचन मिल संगत हर उरतारियो गुर हर फा होमे बिखियानत लोभ लुभाने उत

परमेश्वर प्रधान खिन खोवे पाप कोटान मेल नानक हर भगवान प्रभाती मोहला पंजवां विपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रच जोत निवाजिया सेजा धरत बर्तन कौ पानी निमख ना विसार हो सेवो सारग पानी मन सतगुर सेव होए परम गते हरक सोग ते रहे निरारा ता तू पावे प्राण पते रखाओ कापड़ भोग रस अनक पुंचाए मात पिता कुटुंब सगल बनाए निजक समागे जल थल मीत सोहर सेवो नीता नीत ता सखाई जे कोए न होवे कोड अपराध एक खिन मैं तोवे दाद करे नी पछोतावे एक का बक्स फिर भौर ना बुलावे।

प्रभ के संग जिन रस आया सो ही जाने, पेख पेख मन में हैरान सो सुखिया सबते उत्तम सोए, जाके हृदय बसया प्रसोए।

गुण गावत मन होए आनंद, आठ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कर मल जाहे, तिस गुर की हम चरणी पाहे, सुमत देव हो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहे निस्तारे रखाओ, जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा, तिस गुर कह सदा बल जाइए, हार सिमरन जि गुर ते पाईए, बूढ़ प्राणी जिन गुरे तराया, जिस प्रसाद मोहे नी माया, हलत पलत जिन गुरे सवारिया।

पार ब्रह्म आराधी अपने सदगुरु कै बल जाई। आगम अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाईए, लहा खाट होइए धनवंता अपना प्रभु ते आईए। आठ पैर पार ब्रह्म ते आई, सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ। पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती मोहल्ला पंजवा, सिमरत नाम किल सब नासे, सत्य नाम गुर दी नीरासे, प्रभ की दरगह शोभा बनते, सेव सेव सदा सोहनते। हर हर नाम जपो मेरे पाई, सगले रोग दोग सा बिनसै, अज्ञान अंधेरा मनते जाई रहाओ। जन्म मरण गुर राखे मीत, हर के नाम से लागी प्रीत, कोट जन्म के गए कलेस, जो तिस भावे सो फल होस। ते गुर कहो सत बल जाई, जिस प्रसाद हर नाम ते आई, ऐसा गुर पाई गे वडभागी, जिस मिलते राम लिव लागी।

एको कर जान एहा मत शब्द है सार वे दुविधा माथे पवे शार करणी कीर्त गुरमत सार संत सभा गुण ज्ञान विचार मन मारे जीवित मर जान नानक नदरी नदर पछाण

जागरण करे होमे मैल उतार सदा जागे कर अपना रख है पंच सकर कढ है मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार घर पाईए मन से ही कर्म कमाए रखाओ गुरमुख सह तुन उपजे दुख होमे विच हो जाए हर नामा हर मन वसे है जे हर गुण गाए गुरमती मुख सोने हर राख्या उरतहार ऐथे उथे सुकना या पहार हर उतरे पार होमे विच जागरण ना हो वई हर भगत ना पवई जाए।

पूर्णपुरुष भगवान है भगत वचल करुणामय है घट घट बसंत वास देव है पार ब्रह्म परमेश्वर है।

दुर्लभं तरंग रूपं नच दुर्लभं दुर्गराजन नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं नच दुर्लभं स्वश अंबर नच दुर्लभं सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभं बनता विलास नच दुर्लभं विद्या प्रवीण नच दुर्लभं चतुर चंचल दुर्लभं एक भगवान नाम है नानक लब्धं साध संग कृपा प्रभं जात कत है तते दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोक है सर्वत्र रमण गोविंद है नानक लेप शेपना लिप्यत विखया पयंत अमृतं दुष्टा सखा सुवजन दुखं पयंत सुखयं।

ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है, ज्ञानं हम दुख सुखं युक्त निर्मल निर्वैरण है, दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है, भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्पमाया

रमंत गुण गोविंद नित प्रतय तारण शरण स्वामी रामण सील परमेश्वर है। करण कारण समर्थ है, दान देत प्रापूर्ण है। निराश आस करण सगल अर्थ आले है। गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है। दुर्गम स्थान सुगमं महादुख सर्व सुखण है।

नाना उपर्जते विख्यंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मरकट है अनक शासन ताड़ंत जम दूत है तब संगे अधवंग नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्ब जी रखया क्रोत ए लोभा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते धावंत जी आ भो प्रकारं अनक पांद बोडोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधव नच मात पिता तव लज्जया अकरणं क्रोत अखात खाद्यं असाज्यं सार समझया त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञाप्त नानक हर नर हर हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत शत्रं दृढ़ंत अनक माया विस्तीर्ण है अवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बो भोगण परम भयान उद्यान रमणं मां बिगट असाध रोगण है पैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे हे प्राण नाथ गोविंद है कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरण है करुणामय सब दुख हरो हे शरण जोग दयाल है दीना नाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय तिमरंत नानक राम दामोदर माधव है चरण कमल शरणं रमणं गोपाल कीर्तन है सार संगेण तरणं नानक महासागर पय दुत्र है सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वर है

अरचनंक सोमवरंगण है, रोग सोग प्रयोगं नानक सुख ना सुपन है। उनसे मोहल्ला पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद आद कलम अगर

दे बपड़ा जे मन नाही ज्ञान। राम कबीरा रब रहे अवर तजे सब काम, कबीर परदेसी कै घाघर है

लोग सुबाया चल गयो, हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो, उड़ उड़ दै दिस जाए। जो जैसी संगत मिले, सो तै सो फल खाए। कबीर जा को खोजते, पायो सोई ठौर। सोई फिर के तू पया, जा को कहता और। कबीर मारी मरो कुसंग की, केले निकट जो बेर। ओ चूले ओ चीरिए, साकत संग ना है।

एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण ते चार, चार मरण ते छह मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर देख देख जग ढूंढया, कहू न पाया ठौर, जिन हर का नाम न चेते हो, कहां भुलाने और। कबीर संगत करिए साध की, अंत करे निर्वाहो, साकत संग ना कीजिए, जाते हुए बिना हो। कबीर जग में चेत्यो जान के जग

आवे दज होत है निर्दावे रहे निसंक। जो जन निर्दावे रहे तो गने इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा पी न सके कोई नीर। भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे त्यों।

पंडित जल मुए मूर्ख उबरे भाग कबीर संसा दूर कर कागद दे बिहाए बामन अखर सोध कै हर चरणी चित लाए कबीर संत न छाडे संतई जो कोट के मिले असंत मलयागर पोयंगम बेडेओ ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल भया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जा रहा तो जन के उदक समान कबीर सारी सिरजनहार की जाने नाही कोए कह जाने आपन तनी कह दास दीवानी होए।

सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। ए त्युत कभे ना डोलई जिस राखे सिरजनहार, कबीर कहानी पीड़ते सदगुर लिगे छड़ाए, परा पूर्बली पावनी परगट होई आए। कबीर टाले टोले दिन गया ब्याज बढ़न तो जाए, ना हर पजयो ना खत फट्यो काल पहुंचो आए। महला पंजवा कबीर कूकर भौंकना तरंग पिछे उठताए, करमी सतगुर पाया जिन हो लिया छड़ाए। महला पंजवा कबीर धरती साध की

सफल फलंत पीर साधु संग प्राप्ति लिखिया होए ललाट मुक्त पदार्थ पाई है थाक ना अब घट काट कबीर एक घड़ी आदि करी आदि हूं ते आद भगतन से ती गोष्ट जो कीने सो लाभ कबीर भांग माशली सुरा पान जो जो प्राणी खाहे तीर्थ वर्त नेम किए ते सबे रसातल जाहे नीचे लोयन कर रखो ले साजन कट माहे स्वर्ग खेलो पीसो इसी लखावो नाहे आठ जाम चौसठ करी

जले मजीठ ज्यों उपर अंगारा फरीदा लोड़े दाख बजौरिया किकर बीजे जट हंडे उनकताए दा पैदा लोड़े पट फरीदा गलिये चिकड़ दूर कर नाल प्यारे ने हो चला ता पिजे कंबली रां ता टुटे ने हो पिजो सिजो कंबली अल्ले वरसो में हो जाए मिला तना सज्जना टुटो नाही ने हो।

साहिब सच्चे वेख बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान फरीदा जे तन भिरो ना उपजे तो तन जान मसान फरीदा एफस गंदला धरिया खंड लिवाड़ एक राय दे रह गए एक राधी गए उजाड़ फरीदा चार गवाया हंड कह चार

मैंडे कपड़े काला मैंडा वेश गुण ही परिया मैं फिरा लोक कहे दरवेश तत्ती तोय ना पल्लवे जे जल टुब्बी दे फरीदा जो डुहागन रब दी चूरेंदी चूरे जा कुआरी ता चाओ विवाही ता मामले फरीदा एहो पछोताओ वत कुआरी ना थी है कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवे उड़न संधि डंज हंस उड़ कोदरे पया।

फरीदा इट सराणे पोए सवन कीड़ा लड़े ओ मास केतड़िया जुग वापरे एकत पया पास फरीदा पन्नी कड़ी सवनवी टुटी ना गर लज अजराइल फरिश्ता कहे करनाठी अज फरीदा पन्नी कड़ी सवन।

निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह पं गुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा आदि पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल घट रहो बेआपे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्व की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अवगत आपे आपे उत्पत एक तू ही एक आन नाही तुम पत हर अंत नाही पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भक्त दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बाल बाल बाल बाल सद बलिहार अमृत प्रवाह सार अतुल भंडार पार परे ही ते परे अपर अपार पार अपनु भावन कर मंत्र ना दूसरो धर उपद परलो एक नेमक तो कर आन नाही समसर उजियारो निर्मार कोट प्राशित जागे नाम लीगे हर हर जन नानक भक्त दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल पवन धारे एक ते की ए बिस्तारे पूरे ओ सर्वमय आप है निरारे हर गुण नागी अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक अलख मुरारे आप ही धारण धारे कुदरत है देखारे वर्ण चेन नाही मुख नाम सारे जन नानक भक्त दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निधान कीमत न ज्ञान ध्यान ऊचे ते ऊचो जा नीजे प्रभ तेरो थान मन तन तेरो प्राण एक सूत है जहान कम उपमा दे बड़े ते बडान जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को थान जन नानक भक्त दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को होए कृपाल सोजन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जान जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परसयो छे जन्म मरण दो ते रहो सत सत हर सत सत सते सत पणिये दूसर आनना आवर पुरख पौरा तन सुनिए अमृत हर को नाम लयत मन सब सुख पाए जे रसन चाख्यो ते जन तृप्त अघाए जे ठाकर सो प्रसन्न पयो सत संगत ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसयो तेन सब कुल कियो उधार सच सभा दी बाण सच सच्चे पै करो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करो सच सिरजो संसार आप अफुल न फुल्लो रत्न नाम अपार की मनो पवे अमुल्लो जे कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख तिन हु पाए हर गुरु नानक जिन परसयो ते बौड़ फिर जोन न आए कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिर कीम न परिये ब्रह्माद कसन काद सिख गुण अंत न पाए आगो गयो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए ये काटी सिल्क दयाल प्रभ हे जन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परसयो ते एत उत सदा मुगते प्रभ दाताओ दातार परयो जाच एक सरना मेरे दान संतरेन जे लग पौजल तरना बिंत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देव दर्श मन चाओ भगत हो मन ठहरावे बरयो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल घर पवन में
जन नानक गुर पार ब्रह्म सवैये श्री मुख बाक महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद काची दे मोहन बांधी सड़ कठोर कुचील कुग्यानी तावत प्रमत रैन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जो बिन रूप माया बद माता विचरत विकल बडो अभमानी पर थान पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माए हेतानी बलवंच शब कर त्यो पाव पेखत सुनत प्रवेंतर जामी सील धर्म दया सुच नास्त आयो शरण जी के दानी कारण करण समर्थ श्री धर रख लिहो नानक के स्वामी कीर्त करन सरन मन मोहन जो हुन पाप विदारन कहो हर तारन तरन समरत सबे बेद कुले समूह उदाहरण सो चित चेत अचेत जान स संगत परम अंधेर मोहयो कद तो मूर्त करी तसा पर सिमरन राम नाम रसना संगलो होशो काज अल्प सुख बंधन

जंपो गुण बेमल सुजन जन केरे आमे नाम जाको फुरिया। इन सदगुरु से शब्द रस पाया नाम निरंजन उर थरिया। हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक त्याग तत् संत सरे। कब काल ठकर हर दास तने गुर रामदास सर अपर परे। छुड़त प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद परया। ते पीवे संत करे मन मज्जन खुब जिनो सेवा करिया। तिन पाओ निवार अन पय पद दीना शब्द मात्र ते उदर तरे। कब काल ठगर हर दास तने गुर रामदास सार अपर परे। सदगुर मत गूढ़ बिमल सत्संगत आत्म रंग चिलूल पया। जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपय निरंजन करे लहा। सदगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया इस प्रसाद फल पंच करे। कब काल ठगर हर दास तने गुर रामदास सार अपर परे। आन पो उन्मान अगले वे लागी पारस फेटिया सहज करे। सदगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे। मिट्या जिन मात मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे। कब काल ठकर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे। अपार परे पायो अपार निध अंतर तारयो। दो पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारयो। सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने। सदगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने। नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरतायो। गुर रामदास कल उच्चर ते अटल अमर पद पायो। संतोख सरोवर बस अमे रस रसन प्रकाश। मिलत सा उपज दुर्त दूर अंतर नास।

सतगुर प्रमाण बिद नै सिरयो जग जस दूर बजायो। गुरु रामदास कल उचरै तै अपाए अमर पद पायो। जग जितौ सतगुर प्रमाण मन एक तिहायो। तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरड़ायो। नामृद नाम निधान रिद सिता की दासी। तय सरोवर मिलयो पुरख भेट्यो अविनासी। आदले भगत जित

सेव सेव सिद्ध साधक तोर असुर गण तरे ते तीस गुर बचन सुन कन रे सुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर करे तरे उपरे लाद गुर मिलत मुन जन रे तरे नार दास संकाद हर गुरमुखे तरह एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेंत कहे नाम गुरमुख लहे गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा सहयुग जन त्रू पर श्री प्रहलाद भगत को धरियंग हस्त कमल माथे पर तरियंग अलख रूप जी लखिया ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रापाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी ते लेना ताप जोत जग तारी।

नाम अखय निद अप्यो अप्यो हर नाम अखय निद त्यो जुग गुर सेवा कर फल लइयं बंधे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परण सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जे अमृत बजन बाणी साधु जन जपे करब चित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सबल संसार संसार सबल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुर बंचे जाकी शरण सतगुर गुर सेव अला कद जाकी श्री रामदास तारण तरण संसार अगम सागर तुलखा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन मरण पगा ए आई ए प्रतीत प्रतीत ही ए आई जिन जन कह तिन को पदवी उच पई तज माया मोह लोभ अर लाल काम क्रोध की वृथा गई अब लोकया ब्रह्म परम सब छुटकया देव दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास पया जस जन कह एक पढ़े सुने गावे प्रभाते करे स्नान स्नान करे प्रभात सुधमान गुर पूजा विद सहित करं कं चिंतन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बोविद वर्णं सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जिनो बात निचल तू जानी तेई जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन एक मह जल हर बिंब जुगत जाग रचा कुंडलनी सुरजी संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन भज क्रम सेविये सच्चा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कमल नयन मधुर बयन कोड सैन संग सोभ कहत मा जसोद जिसै दही पाद खाए जियो देख रूप आतन रूप मोह महा मग पई।

भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रब के सुध को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधा पर पूर्ण शब्द तरंग प्रगट दिन आगर। गैर गंभीर अथा अत बड़ सुबर सदा सौभिद रतनागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जुग दुर्त दूर करबे कौ दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल जुग कब को पावे आत्म प्रगास कहो। वेद बाणी सहित बिरंजस गावे जाको शिव मन गए न तजात कबलास कहो। जाको योगी जति सिद्ध साधक अनेक ताप जटा जूट पेख किए फिरत उदास कहो। सो तिन सब गुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बड़ाई दई। गुर रामदास को नाम निधान ध्यान अंतरगत तेज पुंज ते लोक प्रगस। देखत दर्श पटक परम भजत दुख परहर सुख सहज बेगस। सेवक सिख सदा अत लुभत आल समूह जो कुसुम सुबास। वैद्यमान गुर आप थप्यो थेर ताचो तख्त गुरु रामदास। तार्यो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो सुमरथ। हुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिधर सिद्ध न छोड़े सथ। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कहो यो तथ। ताहे का प्रवाह काहू की जाके बसीस तरयो गुरगत। तीन पवन पर पूर रहो सोई अपन सरस कियो न जगत कोई। अपन आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर गण गंधर्व खो जंत फेरे। अविनाशी अचल अजो नहीं संभव पुरखोत्तम अपार परे। करण कारण सुमरत सदा सोई सर्व जी मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय कर परम पद पायो। सदगुर नानक भगत करी एक मान तन मन तन गोविंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हीयो। गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में।

परम जोत जागाए वाजा वापसी मनो जे अंधे कूप कया बिरत ना जाननी मन अंधे उंधे कबल दिसन खरे करूप एक कह जानन कहया बुझन ते नर सुगड स्वरूप एक ना नाद ना वेद ना गी रस रस कस ना जानंत एक ना सित ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक ते नर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत सो ब्राह्मण जो बिंदे ब्रह्म जब तब संजम कमावे कर्म शील संतोका रखे धर्म बंधन तोड़े होवे मुक्त सोई ब्राह्मण पूजन जुगत खत्री सो जो कर्मा का सूर पुन दान का करे शरीर खेत पछाणे बीजे दान तो खत्री दर गए प्रवान लभ लोभ जे कूड़ कमावे अपना कीता आपे पावे तन ना तपाए तनूर ज्यो बालन हडना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर तिरी संभाल सबनी घटी सोबस सहबन खट न कोए नानक ते सोहागणी जिन्ना गुरमुख प्रगट होए जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ।

का तान फिटक फिटका कोड बदिया सदा सदा अभमान पाए एते जाहे वीसर नानका एक नाम सा बुद्धि जाली है एक रह तत ज्ञान माथे जो तुर लिखया सो मेट न सके कोए नानक जो लिखया सो वर्त।

ना पदार्थ पाया अतुट परे भंडार हर गुरबाणी उच्चर है अंत न पारावार नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश इथे ऊंग ना पुख है हर अमृत नाम सुखवास नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रगास काम क्रोध का चोलड़ा सब गले आए पाए एक उपजे एक बिन सजावे हुक्मे आवे जाए जमन मरण न चुकई रंग लगा दूजे पाए बंधन बंद पवाईयन करना कछु न जाए जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलिया आए सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुपाए नानक भगती रत्या हर हर नाम सुमाए मानमुख चंचल मत है अंतर बहुत चतराई कीता करत्या बिरथा गया एक तिल साए न पाई पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई बिन सदगुरु जमकाल न छोड़ई दूजे पाए खुवाई जो मन जानदा नजर न आवई जर पहुंचे मर जाई पुत कलत मोहित गए अंत बेली को ना सखाई सदगुर सेवे सो सुख पाए नाव से मन आई नांग से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाई मनमुख नाम ना चेतनी बिन नावे दुख रोए आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए होमे अंतर मैल गए शब्द न काढे धोए नानक बिन नावे मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए मनमुख बोले अंधले जिसमें अग्नि का वास बाणी सुरत ना बुझनी शब्द ना करे प्रगास ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुर भजन ना करे विसास ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिवसदा विगास हर ज्ञानिया की रखदा हम सब बलगारी तास गुरमुख जो हर सेम दे जन नानकता का दास माया पुयंगम सर्प है या केरिया बिखमाए देखा मारण हर नाम गए गुर गारड़ शब्द मुख पाए जिनको पूर्व लिखया तिन सदगुर मिलया आए मिले सदगुर निर्मल होया बेखो में गया बिलाए गुरमुखां के मुख उजले हर दरगे शोभा पाए जन नानक सदा कुर्बान तेन जो चाले सदगुर पाए सदगुर पुरख निर्वैर है निध हिरदे घर लिवलाए निर्वैरे नाल वैर रचाएद अपने कर लू की लाए अंतर क्रोध अंकार है अन दिन जले सदा दुख पाए कूड़ बोल बोल निद पौक दे बिख खादे दूजे पाए बिख माया कारण परम दे फिर घर घर पत कवाए बेसवा केरे पूत ज्यो पिता नाम तुझ जाए हर घर नाम ना चेतनी करते आप खुवाए हर गुरम कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए जन नानक तस बलिहारण जो सतगुर लागे पाए नाम लगे से उबरे बिन नावे जम पुर जागे नानक बिन नावे सुख नहीं आए गए पछतागे चिंता ताप तरह गए तामन पया आनंद गुर प्रसादी बुझिए सातन सुती नचिंद जिनको पूर्व लिखया तिना पेटिया गुर गोविंद नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद तद गुर सेवन अपना गुर सबदी विचार सतगुर का पाणा मन लैन हर नाम रखे उरतार एथे उथे मनियन हर नाम लगे वापार गुरमुख शब्द संजाप दे इत साचे दरबार सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार जम काल नेड़ ना आवई आ बख्शे करतार नानक नाम रते चेतनवंत हैन निरतन होर संसार जन की टेक हर नाम हर बिन नावे ठवर न ठाओ गुरमती नाओ मन मसे सहजे सह समाओ वडभागी नाम त्याया ऐस लागा पाओ जन नानक मंगे तूड़ तेन पौ सद कुरबाणे जाओ लग चौरासी मेदनी तिसना जलती करे पुकार यो मोह माया सा पसरिया नाल चले न अंती वार बिन घर सांत न आवई किस आगे करी पुकार।
ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਬੂਝਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਤਿਸ ਨਾ ਅਗਨ ਸਭ ਬੁਝ ਗਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਉਰ ਧਾਰ ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਨ ਦੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹੋ ਪਾਪੀ ਵਡ ਗੁਣੇ ਗਾਰ ਹਰ ਜੀਓ ਲੇਖੇ ਵਾਰ ਨ ਆਵਈ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਗੁਰ ਤੁੱਠੇ ਗਰਪੜਾ ਮੇਲਿਆ ਸਭ ਕਿਲਵਖ ਕੱਟ ਵਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜੈਕਾਰ ਵਿਛੜ ਵਿਛੜ ਜੋ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਏ ਪਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹਿਚਲ ਭਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ ਨਾਨਕ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹਨ ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਤਿਗ ਜੀਵਨ ਤਿਗ ਵਾਸ ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਤੋ ਮਾਨਾ ਵਸਿਓ ਗੁਣ ਤਾਸ ਤਿਉ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦਿਓ ਤਿਉ ਹੋਵੇ ਕਰਵਾਸ ਮਨਮੁਖੀਆ ਦੋਹਾ ਗਣੀ ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਹੀਆਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਮਸਤਕ ਮਣੀ ਲਿਖਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਰ ਤਾਰਿਆ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਉ ਸਤਿਬਲਿਗਾਰੀ ਤਾਸ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋਈ ਜਿਨ ਸਿੱਜੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਏ ਕਰੇ ਬੋ ਕਰਮ ਵਿਗੁੱਤੇ ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਪਰਜ ਵਗੋਈ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਏ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਆਤਵੜ ਉੱਚਾ ਉੱਚੀ ਹੂਈ ਉੱਚਾ ਹੋਈ ਅੱਪੜ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕਈ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ ਮੁਗ ਸੰਜਮ ਖੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵਈ ਤਰ ਪੇਖ ਪਵੇ ਸਭ ਕੋਈ ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਏ ਚੜੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅੰਤਰ ਆਏ ਵਸੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਨੀਏ ਸਾਚੇ ਸਾਚੀ ਸੋਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ ਬਿਗਦ ਉੱਤਰ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਪਚਮੋਏ ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਵਿਹਾਏ ਮਨਮੁਖਾਂ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਹੈ ਅੱਧ ਵਿਚ ਰਹੇ ਲਵਟਾਏ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਮਾਵਣਾ ਕਰਨਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰਮਤੀ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਵਸੈ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਿਥੈ ਵਡਭਾਗੀ ਚੜੇ

मन मुकसे ती संग करे मोह कालख दाग लगाए मोह काले तिन लोभिया जसन जन्म गवाए सत संगत हर मेल प्रभ हर नाम वसै मन आए जन्म मरण की मल उतर है जन

जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न हो वई जे सोची लखवार चुपै चुप न हो वई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस स्याण।

दूर। कथ न कथि न आवै तोट, कथ कथ कथि कोटि कोट कोट, देंदा दे लैंदे थग पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे परवाहो, साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार।

आस मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कह पिछे पछताए। कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध। मन्ने मोहे चोटा ना खाए, मन्ने जम कै साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाग ना पाए, मन्ने पास्यों प्रगट जाए। मन्ने मगन चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने पावे मुख द्वार, मन्ने परवार साधार। मन्ने तरे तारे गुरसिख, मन्ने नानक पवे ना पिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। पंच प्रमाण पंच प्रधान, पंचे पावे दरगे मान। पंचे सोह है दर राजान, पंचा का गुरेक ध्यान। जे को कह करे विचार, करते कह करने नाही सुमार। तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जन सूत। जे को बुझे हुवै सच्यार, तबले उपर किता पार। धरती होर परे होर हो।

तिथै भगत वसै के लो करह आनंद सच्चा मन सोए सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै तंत ना अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा तीरज सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खल्ला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल जिन को नदर कर।

गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो

गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए ना जासी रचना जे नरचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पात साहो सहा पत साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तिर रहे समाए

सो पुरख निरंजनु हर पुरख निरंजनु हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी।

क्या गुण आख बखाना, जो सेवै जो सेवै तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जन जुग मैं सुखवासी। से मुगत पय जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिन का पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तानो जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी,

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापै जपै बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बो सिमरथ शास्त्र जी। कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग वेको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चर करता सोई, तू द्यापे भावै सोई वरतै जी, तू वापे करै सो होई, तू द्यापे सृष्ट सब उपाई जी, तू द्यापे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैं डासाई, जो तो पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया।

जप तप संजम धर्म ना कुमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। सोहेला राग गौड़ी देव की महला पहला, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्त आखिए करते का होए बिचारो, तित कर गावहो सोहेला सिबरो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निरभाव का सोहेला, हम वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालिया न देखेगा देवन हार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिसदा ते कवन सुवार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावहो तेल, देहो सजन आसीसड़ियां जो होवे साहिब स्यो मेल। कर करे हो पहुंचा सदले नित पवन, सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवन। राग आसा

अगै गया जानी है मिणा मैं बेकार, पै तेरा डर अगला खप खप छिजै देह। नाव जिन्ना सुल्तान खान होंदे डिठे खेह, नानक उठी चलिया सब कूड़े टुटे ने। श्री राग महला पहला सब रस मिठे मन्ने है, सुनिया सा लोने खड़ तुरसी मुख बोलना मारन नाद किए। शक्ति अमृत भाओ एक जां को नदर करे, बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए मन में चले विकार। रहाओ रत्ता पहनन मन रत्ता, सुपेदी सतदान, नीली स्याही कदा करनी पहरन पैर ध्यान। कमर बंद संतोख का तन जोबन तेरा नाम, बाबा होर पहनन खुशी खुआर, जित पैदे तन पीड़िए मन में चले विकार। रहाओ घोड़े पाखर सोयने साखत, बूजन तेरी वाट, तर्क स्तीर कमान सांग, तेग बंद गुण धात, वाजा नेजा पत्स्यों प्रगट।

गुर हर ध्यान निहाल, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुल्हा हर नाव, गुर सर सागर बोए थो गुर तीर्थ दरियाओ, जित पावे उजली सत सर नावन जाओ। पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावन पूरे आस निरास, नानक पूरा जे मिले क्यों घट गुणतास। श्री राग महला पहला। आवहो भैने गल मिले है अंक सह लिड़िया, मिलके करे कहानियां समर्थ कंत किया। साचे साहिब सब गुण अवगुण सब असाहा, करता सब को तेरे जोर, एक शब्द बिचारी है जा तू ता क्या होर। रहाओ जाए पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, सहज संतोख सिंगारिया मिठा बोलनी, पिररी सालू ता मिले जा गुर का शब्द सुनी। केतियां तेरियां कुदरती केवड़ तेरी दात, केते तेरे जी जंत सिफत करे दिन रात, केते तेरे रूप रंग केते जात्या जात। सच मिले सच उपजै सच मैं सच समाए, सुरत होवे पत उगवे गुरबचनी पौ खाए। नानक सच्चा पात साहो आपे ले मिलाए। श्री राग महला पहला। भली सरी जे उबरी हमें मुई कराहो, दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वेसाहो। कल्प त्यागी बाद है सच्चा वे प्रवाहो, मन रे सच मिले पौ जाए। पै बिन निरपौ क्यों थी है गुरमुख शब्द समाए। रहाओ केता आखण आखिया आखण तोट ना होए, मंगण वाले केतड़े दाता को सोए। जिसके जी प्राण है मन वसे सुख होए, जग सपना बाजी बनी खिन में खेल खेलाए। संजोगी मिलेक से विजोगी उठ जाए, ज्योतिष पाना सो थिए अवर न करना जाए। गुरमुख वस्त वेसाही है सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणजया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सत सौदा जिस पास। श्री राग महल पहला। तात मिले फुन तात कहो सिफती सिफत समाए, लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ। सच मिले संतोखिया हर जपे कह पाए, पाई रे संत जना की रेण संत सभा गुर पाई है मुक्त पदार्थ तेण। रहाओ ऊंचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाई है दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाई है आत्म राम विचार, तिरबद कर्म कमाई है आसंदेसा होए। क्यों गुरबिन तृप्ति छुटसी सहज मिलया सुख होए, निज कर महल पछाणिया नदर करे मल धोए। बिन गुर महल ना उतरे बिन हर क्यों करवास, एको शब्द विचारी है अवर ते आगयास। नानक देख दिखाई है हों सत बलिहार जास। श्री राग महला पहला। त्रिग जीवन दोहागणी मुठी दूजे पाए, कलर केरी कंध ज्यों अहनस किर टह पाए। बिन शब्द सुख ना थी है पिर बिन दुख न जाए, मुंदे पिर बिन क्या सिंगार। दर कर टोई ना लह दरगे झूठ खुआर। रहाओ आप सुजान ना भुलई सच्चा वड किरसान, पहला तरती साध कै सच नाम दे दान।

चलनहार गुरमुख रवै सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगासिया अमृत भरिया अगाए नानक सतगुर मीत कर सच पावै दरगह जाए। श्री राग महला पहला। हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कस वट्टी लाई है तुलिए पूरे तोल कीमत किने ना पाई है रिद मानक मोल अमोल पाई रे हर हीरा गुरमाहे सतसंगत सतगुर पाई है अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास लै पाई है गुर प्रगास जो अग्न मरै जल पाया त्यो तृष्णा दासन दास जमजन दारन लग गई ओ भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ ना पावई सच रते सच पाए सागत सच ना पावई कूड़ै कूड़ी पाए सच रते गुर मेले सचे सच समाए मन मैं मानक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर धन नाम है घट घट गहर गंभीर नानक गुरमुख पाई है दया करे हर हीर। श्री राग महला पहला। परमे पाहे न विजवै जे पवै दिसंतर देस अंतर महल न उतरै त्रिग जीवन त्रिगवेश होर कितै भगत न होवई बिन सतगुर के उपदेश मन रहे गुरमुख अग्निवार गुर का कहया मन वसै हो मैं तृष्णा।

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिव लाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल सलल समाए, जिन हर हर नाम ना चेतियो सो अवगुणे आवे जाए, जिस सतगुर पुरख ना भेटियो सो पौजल पचै पचाए, एहो मानक जियो निर्मोल है, इउ कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुर मिल पौजल लंगी है, दरगह पत प्रवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो वखर लेहो समाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ नाल, अगे साहो सुजान है लैसी वस्त समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलो सहो देखे पति आए, रहाओ जिन्ना रास ना सच है।

और उस्ताद नित पाख्या बोले क्यों बूझे जाने बुझाई आखण सुनना पौन की बाणी हो मनरता माया खसम की नजर दिले पसंदे जिनी कर एक ते आया तीही कर राखे पंज कर साथी नाओ सैतान मत कट जाई नानक आखे राहे पै चलना माल तन कित कु संजयाही श्री राग महला पहला कर चौथा सोई मौला।

जेबो तेरा पड़िया होवै को रह न परिय पाई सोई काजी जन आप तजिया एक नाम की आया दारो है पी होसी जाय ना जासी सच्चा सृजनहारो पांच वक्त निवाज गुजारै पढ़ै कतेब कुराना नानक आखै गोर सदेई रहयो पीना खाना। श्री राग महला पहला कर चौथा एक सवान दो सवानी नाल पलके पौकै सदा बयाल कूड़ शोरा मुठा मुरदार तानक रूप रहा करतार मैं पत की पांदना करनी की कार हाँ बिगड़ै रूप रहा बिकराल तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहा आस एहो आधार रहाओ मुख निंदा आखा दिन रात पर कर जो ही नी सनात काम क्रोतन वसै चंडाल तानक रूप रहा करतार फाही सुरत मलुकी वेस हाँ ठगवाड़ा ठगी देस खरा स्याणा।

मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जा दुख लागे ता तुझै समाली। रहाओ तू भरपूर जान्या मैं दूर, जो कश करी सो

नानक आणिया वै रास विणवै नाही सावास। श्री राग महला पहला कर पंजवा अशल शलाई नह शल नह कहाओ कुटारा कर सकै ज्यो साहेब राखै त्यों रह इस लोभी का जियो टल पलै बिन तेल दीवा क्यों जलै रहाओ। पोथी प्राण कमाई है पौवटी ए तन पाई है सच बूझण आण जलाई है एहो तेल दीवा इं जलै कर चानण साहेब तो मिलै रहाओ। इत तन लागे बाणिया सुख होवै सेव कमाणिया सब दुनिया आवन जानिया विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगह बैसन पाई है कहो नानक बहा लुड़ाई है। श्री राग महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हाँ सतगुर सेवी अपना एक मन एक चित पाए सतगुर मन कामना तीर्थ है जिसनो दे बुझाए मन चिंदिया वर पावना जो इच्छा सो फल पाए नाओ त्याई है नाओ मंगी है नामे सहज समाए। मन मेरे हर रस चाख तिख जाए जिन्नी गुरमुख चाखिया सहजे रहे समाए रहाओ। जिन्नी सतगुर सेविया तिन्नी पाया नाम निधान अंतर हर रस रव रहया चूका मन अभमान हृदय कमल प्रगासिया लागा सही ध्यान मन निर्मल हर रव रहया पाया दरगह मान सतगुर सेवन अपना तेवरले संसार हाँ मैं ममता मार कै हर राख्या और तार हाँ तिल कै बलिहारण जिन्ना नामे लगा प्यार सही सुखिए चहु जुगी जिन्ना नाम खोटिया पार। गुर मिलिया नाम पाई है चूकै मोह प्यास हर सेती मन रव रया करी माए उदास जिन्ना हर का साध आया हाँ तिन बलहारै जास नानक नदरी पाई है सच नाम गुणतास। श्री राग महला तीजा बहु पेह कर परमाई है मन हृदय कपट कमाए हर का महल ना पावई मर विष्टा माए समाए मन रे गृही माए उदास सच संयम करनी सो करे गुरमुख होए प्रगास रहाओ। गुर कै शब्द मन जीतया गत मुक्त करै मैं पाए हर का नाम त्याई है सतसंगत मेल मिलाए। जे लख स्त्रियां भोग करै नव खंड राज कुमाहे बिन सतगुर सुख ना पावई फिर जोनी पाहे हर हार कंठ जिनी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिन्ना पिछै रिद सिद फिरै ओना तिल ना तुमाए जो प्रभावै सो थीऐ अवर ना करना जाए जन नानक जीवै नाम लै हर देवो सहि सुभाए। श्री राग महला तीजा कर पहला जिस ही की सिरकार है तिस ही का सब कोए गुरमुख कारक मामणी सच घट प्रगट होए अंतर जिसकै सच वसै सचे सची सोए सच मिले से ना विछड़ै तिन कर वासा होए। मेरे राम मैं हर बिन अवर ना कोए सतगुर सच प्रभ निर्मला शब्द मिलावा होए रहाओ। शब्द मिलै सो मिल रहै जिसनो आपे ले मिलाए दूजे पाए को ना मिलै फिर आवै जाए सब मैं एक वर्तदा एक हो रहा समाए जिसनो आप दयाल होए सो गुरमुख नाम समाए। पढ़ पढ़ पंडित ज्योत की वाद करै विचार मत बुद्ध पवि न बुझई अंतर लोभ विकार लख चौरासी भरम दे भ्रम भ्रम होए खुआर पूर्व लिखिया कमावना कोई न मेटन हार। सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर दीजै आप गवाए शब्द मिलै ता हर मिलै सेवा पवै सब थाए पारस परसै पारस होए ज्योति ज्योत समाए जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। मन भुखा भुखा मत करै मत तू करै पुकार
लख चौरासी जिन श्री सबसे बेआधार निरपो सदा दयाल है सबना करदा सार नानक गुरमुख पूजिए पाईए मुख द्वार श्री राग महला तीजा जिनी सुन के मनिया तिना निकरवास गुरमति सलाहे सच हर पाया गुणतास शब्द रते से निर्मले हों सतबल हारे जास हृदय जिनके हर वसै तित घट है प्रगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याए तुर मस्तक जिन को लिखिया से गुरमुख रहे लिवलाए रहाओ हर संत हो देखो नदर कार निकट वसै भरपूर गुरमत जिनी पछाणिया से देखे सदा हदूर जिन गुण तिन सद मन वसै गुणवंतियां दूर मनमुख गुण तै बाहरे बिन नामे मरदे चूर जिन शब्द गुरु सुन मन्या तिन मन त्याया हर सोए अंदर भक्ति रत्या मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कुसुंभ का बिन सजाए दुख रोए जिस अंदर नाम प्रगास है ओ सदा सदा थिर होए एहो जन्म पदार्थ पाए कै हर नाम ना चेतै लिवलाए पग खिसिया रहना नहीं अगे ठोर ना पाए ओ वेला हथ ना आवई अंत गया पछताए जिस नदर करे सो उबरै हर से ती लिवलाए देखा देखी सब करे मनमुख बूझ ना पाए जिन गुरमुख हिरदा सुध है से पई तिन थाए हर गुण गावे हर नित पड़े हर गुण गाए समाए नानक तिन की बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिवलाए श्री राग महला तीजा जिनी एक मन नाम ते आया गुरमति विचार तिनके मुख साधु जले ते सच्चा दरबार ओए अमृत पीवे सदा सदा सच्चे नाम प्यार पाई रे गुरमुख सदा पत होए हर हर सदा ध्याई है मलहमै कड्डै धोए रहाओ मनमुख नाम ना

से विष्टा महे समाए, तिनका जन्म सफल है जो चलै सतगुरु पाए। कोलो धार अपना धन जने दी माए, हर हर नाम ते आई है जिसनों कृपा करे रजाए। जिनी गुरमुख नाम ते आया विचों आप गवाए, ओए अंदरों बारो निर्मले सच्चे सच समाए। नानक आए से प्रवान है जिन गुरमति हर ते आए। श्री राग महला तीजा, हर भगता हर तन रास है गुरपूछ करै व्यापार। हर नाम सलाहन सदा सदा वखर हर नाम आधार। गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया, हर भगता अतुट भंडार। भाई रे इस मन को समझाए, ए मन आलस क्या करै, गुरमुख नाम ते आए रहाओ। हर भगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार। पाखंड भगत ना हो वई दुबदा बोल खुवार। सो जन रलाया ना रलै जिस अंतर बिबेक विचार। सो सेवक हर आखिया जो हर राखै उर तार। मंतन सोपे आगै धरे हमै विचों मार। तन गुरमुख सो प्रवान है जे कदे ना आवै हार। कर्म मिलै ता पाईऐ मिण कर मैं पाया ना जाए। लख चौरासी तरस दे जिस मेले सो मिले हर आए। नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा, सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदर नाम तिहाई है सहजे नाम समाए। अंदर रचै हर सच स्यों रसना हर गुण गाए। भाई रे जग दुखिया दूजै पाए, गुरसरण आई सुखल है अंदर नाम ते आए रहाओ। साचे महल न लग गई मन निर्मल हर ते आए। गुरमुख शब्द पछाणिया हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञाना दे राजाए। मनमुख मैले मल भरे होमै तृष्णा विकार। बिन शब्द मैल न उतरै मर जमै होए खुआर। धातर बाजी पलच रहे ना उर वार ना पार। गुरमुख जप तप संजमी हर कै नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याई एक नाम करतार। नानक नाम त्याई है सबना जिया का आधार। श्री राग महला तीजा, मनमुख मोहे व्यापिया बैराग उदासी न होए। शब्द ना चीने सदा दुख हर दर गै पत खोए। होमै गुरमुख खोई है नाम रते सुख होए। मेरे मानो अहनिस पूर रही नित्यासा, सतगुर से मोह पर जलै करी माए उदासा रहाओ। गुरमुख कर्म कमावे बिकसै हर बैराग आनंद। अहनिस भगत करे दिन राती होमै मारन चंद। वड्डे भाग सतसंगत पाई हर पाया सहजानंद। सो साधु बैरागी सोई हिरदे नाम वसाए। अंतर लागना ताम समूले विचों आप गवाए। नाम निधान सतगुरु दिखा लिया हर रस पिया आगाए। जिन किने पाया साध संगति पूरै भाग बैराग। मनमुख फिरै न जाने सतगुरु होमै अंदर लाग। नानक शब्द रते

अंतरा दुख भ्रम कटियै सुख प्राप्त होए गुर कै पाणे जो चलै दुख ना पावै कोई। गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावै कोए जिन्ना प्रभ तिन पिया हमें विचों खोए। नानक गुरमुख नाम धियाई है सच मिलावा होए। श्री राग महला तीजा जा पिर जाना अपना तन मन अग्गै धरे सुहागणी कर्म कमाम दिया से ही कर्म करे। सहजे सच मिलावड़ा सच वडाई दे भाई रे गुरबिन भगत ना होए बिन गुर भगत ना पाई।

वर बहु रंगे किए रथ अथाक किस ही चित न पावही बिसरिया सब साग सिरजन हार भुलाया विणा मैं न पाक लेंदा बद दुआए तू माया करे अकत जिसनो तू पतियाएंदा सोसन तुझे अनित अहंकार करे अहंकारिया व्यापिया मन की मत तिन प्रव्या भुलाया ना तिस जात ना पत सतगुर पुरख मिलाया इको सजन सोए हर जन का राखा एक है क्या मानस हम मैं रोए जो हर जन पावे सो करे दर फेर न पावे कोए नानक रता रंग हर सब जग में चरण होए श्री राग महला पंजवा मन बिलास बौरंकणा दृढ़ पूर खुशियां छतर धार बादशाहियां विषय से परियां पाई रे सुख साह संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख बिधाते दुख सह समट गया रहाओ जेते थान थनंतरा तेते पावे आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परिया हुक्म चलाए निसंग होए वरता या फरिया सबको वसगत कर लयो न बिना मैं खाक रलिया कोट तेतीस सेवका सिद्ध साधक दर खरिया ग्रंग बारी वड साहबी सब नानक सुपन थिया श्री राग महला पंजवा पाल के उठ पोलिया विण बुझे मुगदया जान सो प्रभ चेतना आयो छुट्टे गी बेबान सतगुर सेती चित

कुदम करे पसपंखिया दिसै नाही काल ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छड गवावना सो लगा मन माहे जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख ना सके दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए नानक सच्चे पात साहे डुबदा लिया कढ़ाए श्री राग महला पंजवा। घड़ी मुहत का पाहुना काय सवार नहार माया काम व्यापिया समझे नाही गावार उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ। हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार लै लै दात पहुतिया लावे कर तैयार जा होवा हुक्म किरसान दा ता लुण मिणिया खेतार पहला पहर तंद गया दूजे पर सोया तीजे चाख चखाया चौथे पोर पया कदी चित ना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिस ते सोजी मन पई।

जातो बिनस निदान, जाकै हृदय हर वसै सो पूरा प्रधान। साधु की हो रेण का अपना आप त्याग, उपाव सियानत सगल छड गुर की चरणी लाग। तिसै प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवै भाग, तिसै प्राप्त भाई हो जिस देवै प्रव आप। सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन से हम मैं ताप, नानक कहो गुर भेटिया बिन से सगल संताप। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का एको रखन हार, एक सका मन आसरा एको प्राण आधार। ते शरण आई सदा सुख पार ब्रह्म करतार, मन मेरे सगले उपाव त्याग। गुर पूरा आराध नित एक सकी लिवलाग रहाओ, एको पाई मित एक एको मात पिता। एक सकी मन टेक है जिन जियो पिंड दिता, सो प्रभ मनो ना विसरै जिन सब किश वस कीता। घर एको बाहर एको थान थन अंतर आप, जी जंतो सब जिन किए आठ पहर तिस जाप। एक सेती रतिया ना होवी सोग संताप, पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोए। जियो पिंड सब तिसका जो तिस पावे सो होए, गुर पूरे पूरा पया जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा। जिन्ना सतगुर स्यो चित लाया से पूरे प्रधान, जिनको आप दयाल होए तनु उपजै मन ज्ञान। जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम ते आए। सर्व सुखा सुखी उपजहै दरगह पैंदा जाए रहाओ। जन मरण का पाओ गया पाओ भगत गोपाल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटिया गुरदर्शन देख निहाल, थान थन अंतर रव।

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक सो लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाए। मेरे मन गुर शब्द सुखोए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोए रहाओ। मन किया इच्छा पूरिया पाया नाम निधान, अंतर जम इसदा संग करना हर पिछान। गुर प्रसादी मुखी उजला जप नाम दान इसनान, काम क्रोध लोभ बिनसया तजिया सब महान। पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पहचान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हालत पलत मुखी उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागर नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवा, पूरा सतगुर जे मिले पाइये शब्द निधान, कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम। जन

वञ पूर राख ले हो प्रभ करनहार, जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखनहार, महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर माया।

कर संगत नित साध की गुर चरणी चित लाए रहाओ। नाम निदान त्याई है मस्तक होवै पाग, कार्य सब सवारी है गुर की चरणी लाग। हउ मैं रोग भ्रम कटी है ना आवै ना जाग, कर संगत तू साध की अड़ सड़ तीर्थ नाओ। जियो प्राण मंत्र हरे साचा एहो सवाओ, ऐथे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ। करे कराए आप प्रभ सब किश सही हाथ, मारा पे जीवाल दा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ सरनागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा, शरण पए प्रभ अपने गुरु होवा कृपाल। सतगुर कै उपदेसे है बिनसे सर्व जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल। मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक

सहजे शिव तीर्थया पवजल उत्तरे पार तीर्थ वर्त लख संजमा पाई ऐ साधु तूर लूक मावे किस्ते जां वेखे सदा हदूर थान थंतर रव रहया प्रभ मेरा भरपूर सच पातशाही अमर सच सचे सच्चा थान सची कुदरत तारियान सच सिर जियोन जहान नानक जपिए सच नाम सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्यम कर हर जापना वडभागी तन खाट संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूके सोग संताप रहाओ जिस कारण तन तारिया सुपर डिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रभे अपनी

सतगुरु की सेवा लाग जो दिसै सो विनसना मन की मत त्याग रहाओ ज्यो कुकर हर काया तावै दै दिस जाए लोभी जंत ना जानई पख अपख सब खाए काम क्रोध मद व्यापिया फिर जोनी पाए माया जाल पसारिया पीतर चोग बनाए तृष्णा पंखी फासिया निकस ना पाए माए जिन किया तिसै ना जानई फिर आवै जाए अनक प्रकारी मोहया बहुविदेहो संसार जिसनो रखे सो रह समर्थ पुरख अपार हर जन हर लिव उदरे नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवां घर दूजा गोयले आया गोयली क्या तिस डंफ पसार मुहलत पुन्नी चलना तू संभल कर बार हर गुण गाओ मना सतगुर से प्यार क्या थोड़ी बात गुमान रहाओ जैसे रैन प्राहुणे उठ चल सह प्रभात क्या तू रता ग्रत स्यों सब फुल्ला की बागात मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रभ लोड सर पर उठी चलना षड जासी लख करोड़ लख चौरासी परम त्या दुलब जन्म पायो नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो श्री राग महला पंजवां तिचर वसै सुहेलड़ी जिचर साथी नाल जां साथी उठी चलिया तां तनखा कूराल मन बैराग पया दर्शन देखणै का चाओ धन सो तेरा थान रहाओ जिचर वसया कंत घर जी

पूरा सतगुर भेटिया बिनस्या सब जंजाल मेरे सतगुरा हाँ तुध विटो कुरबान तेरे दर्शन कहो बलिहार तुस दिता अमृत नाम रहाओ जिन तू सेव्या पाओ कर सही पुरख सुजान तिना पिछे छुट्टी है जिन

श्री राग महला पहला कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आख आख मन वावना ज्यो ज्यो जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख।

तेरा हुक्म ना जापी के तड़ा लिख ना जाने कोए जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावै रोए कीमत कने ना पाईया सब सुन सुन आखै सोए पीर पै कामर सालक साधक सौंदे और शहीद शेख मसाइक काजी मुल्ला दर दर वे सरसीद बरकत तिनको अगली पर्दे रहन दरूद पुछ ना साजे पुछ ना टाहे पुछ ना दे वैले अपनी कुदरत।

अंबड़ कोई न सकई हो किसनो पुछण जाओ। वरना वरन ना पावनी जे किसे वड़ा करे, वड़े हथ वड़े आईया जय पावे तैं दे हुक्म।

गणत गण आवने आईया सुभावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउं प्ररावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रती सच पै वसी पाए रती रंगरास प्रेकी चेरी कांडी ऐ लाली मन ऐ नाओ साची प्रीतना तुटई साचे मेल मिलाओ शब्द रती मन वेदया हो सतबलिहार जाओ सा तन रंड ना बैसई जे सतगुर माहे समाए पिरी सालू नौ तनौ साचो मरै ना जाए नित रवै सोहागणी साची नदर रजाए साच धड़ी धन मांडी ऐ कपड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पिर पुरख ना जानई साचे गुर कै हित प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों पिर बिन रहन विहाए अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए जा तन कंत ना रावीआ ता बिरथा जो बन जाए सेजै कंत महलड़ी सूती बूजना पाए हौ सुती पिर जागना किसको पूछो जाए सतगुर मेली भै वसी नानक प्रेम सिखाए श्री राग महला पहला आपे गुण आपे कथै आपे सुन विचार आपे रतन परख तू आपे मोल अपार साचा मान महत तू आपे देवन हार हर जियो तू करता करतार ज्यो पावे त्यो राख तू हर नाम मिले आचार रहाओ आपे हीरा निर्मला आपे रंग मजीठ आपे मोती उजलो आपे भगत बसीठ गुर कै शब्द सलाहना घट घट डीठिया डीठ आपे सागर बोए था आपे पारिया पार साची वाट सुजान तू शब्द लंगावन हार निडरिया डर जानिया बाजगुरु गोबार आश्र करता देखिए हुर केती आवे जाए आपे निर्मल एक तू हुर बंदी तंदे पाए गुर राखे से उबरे साचे सुन लाए हर जियो शब्द पछाणिए साच रते गुरवाक ते तन मैल न लग गई सच कर जस्यो ताक नदर करे सच पाईए बिना मैं क्या साक जिनी सच पछाणिया से सुखिए जुग चार हों मैं तृष्णा मार कै सच रखिया उर तार जग मैं लाहा एक नाम पाईए गुर विचार साचो वखर लादिए लाभ सदा सच रास साची दरगै बैसई भग सच्ची अरदास पत स्यों लेखा

कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सो सार केते पंडित जोत की बेदा करै विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवण जान बिन गुर कर्म ना छुटसी कह सुने आख बखान सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं भावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधी है तीर्थ की चैवास पुन दान चंगियाईया बिनसा चे क्या तास जिहा राधे तिहा लुणै बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुण दा सिस होए अवगण त्याग समाई है गुरमत पूरा सोए रहाओ विणरा सीवा पारिया तके कुंडा चार मूल ना बूझै अपना वस्त्र ही कर बार विण वखर दुख अगला कूड मुठी कूड़ यार लाहा अहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लह कर अपने चले कारज सार वणजा रिया स्यो वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संता संगत पाई है जे मेले मिलन हार मिलिया होए ना विछड़ जिस अंतर ज्योत अपार सच्चा आसन सच रहै सच्चा प्रेम प्यार जिनी आप पछाणिया घर मैं महल सो थाए सच्चे से तीरतिया सचो पल्ले पाए त्रिपवन सो प्रभ जानिया साचो सच नाए सातन खरी सुहावनी जिन पर जाता संग महली महल बुलाई है सोपर रावे रंग सच सुहागन सा भली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन मैं पूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाओ नामो पूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पदाऊआ चले चाकर होए राजन जाने अपना दाकर ठाक ना होए नानके को रव रहया दूजा अवर ना कोए श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर निर्मल साचो मन।

आर संत सवा सुखी उपजै गुरमुख नाम आधार खिन मैं उपजै खिन खपै खिन आवे खिन जाए शब्द पछाण रव रह ना तिसकाल संताए साहेबा तुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए वापारी वन जा रहा आए वजो लिखाए कारक मावे सच की लाहा मिलै रजाए पूंजी साची गुर मिलै ना तिस तिल ना तमाए गुरमुख तोल तोलाए सी सचत राजी तोल आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल आप तोलाए तोल सी पूरे पूरा तोल कथना कहन ना छुट्टिया ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाईऐ बिनहर भगत प्यार नानक नाम ना विसरै मिले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिलै पाईऐ रतन विचार मन दीजै गुरे अपने पाईऐ सर प्यार मुक्त पदार्थ पाईऐ अवगुण मेटन हार भाई रे गुरबिन ज्ञान ना होए पूछो ब्रह्मे नारद बेद ब्यास कोई रहाओ ज्ञान ध्यान तुन जानिए कथ कहावे सोए सफल्यो बिरख हरियावला शाव कनेरी होए लाल

और राम नाम तन निर्मलो गुरदात करे प्रभ सोए रहाओ। और राम नाम तन निर्मलो जो देवे देवन हार। आगे पुछ न हो वही जिस बेली गुर करतार। आप छड़ाए छुट्टी आपे बख्शन हार। मन मुख जाना अपने तिया पू संजोग। नारी देख विगासी है नाले हरख सो सोग। गुरमुख शब्द रंगावले अहनस हर रस भोग। चित चलै वित जावनो सागत डोल डोलाए। बाहर टूंड विगुची है कर मैं वस्त सो थाए। मनमुख हम मैं कर मुसी गुरमुख पल्ले पाए। साकत निर्गुण आ रहा अपना मूल पछाण। रकत बिंद काय हो तनु अग्नि पास पिराण। पमणै कै वस देहुरी मस्तक सच निशान। बहुता जीवन मंगी है मुआ ना लोड़े कोए। सुख जीवन तिस आखिए जिस गुरमुख वसिया सोए। नाम होने क्या गणी जिस हर गुर दर्श ना होए। ज्यो सुपने निस भुली है जब लग निंद्रा होए। इउ सरपन कैवस जियाड़ा अंतर हम मैं दोए। गुरमत होए विचारी है सुपना एहो जग लोए। अग्न मरे जल पाई है ज्यो बारक दूधे माए। बिन जल कमल सो ना थी बिन जल मीन मराए। नान गुरमुखा रस मिलै जीवा हर गुण गाए। श्री राग महला पहला डूंगर देख डरावणो पेयड़ डरियास। ऊंचो पर्वत गाखड़ो ना पौड़ी तितास। गुरमुख अंतर जानिया गुरमेली तरियास। पाई रे पव जल बिखमन डराऊं। गुप पूरा सतगुर रस मिलै गुर तारे हर नाऊं रहाओ। चला चला जे करी जाना चल नहार। जो आया सो चल सी अमर सो गुर करतार। भी सच्चा सालाहना सच्चे थान प्यार। दर कर महला सोहने पक्के कोट हजार। हस्ती कोड़े पाखरे लश्कर लाखिया पार। किसी नाल ना चलिया खप खप मोया सार। सोयना रूपा संची है माल जाल जंजाल। सब जग में दोही फेरी है बिन नामे सिरकाल। पिंड पड़े जियो खेल सी बद फैली क्या हाल। पुत्ता देख वगसी है नारी सेज पतार। चोवा चंदन लाई है कापड़ रूप सिंगार। खेहू खेर लाई है छोड़ चले घर बार। महर मलूक कहाई है राजा राव के खान। चौधरी राव सदाई है जल बलिय अभमान। मनमुख नाम विसारिया ज्यो डबदा कान। हाउ मैं कर कर जाय सी जो आया जग माहे। सब जग काजल कोठड़ी तन मन दे सुवाहे। गुर राखे से निर्मले शब्द निवारी पाहे। नानक तरिय सच नाम सिरसाहा पातशाहो। मैं हर नाम न विसरे हर नाम रतन वेसा हो। मनमुख पौ जल पच मोए गुरमुख तरे अथा हो। श्री राग महला पहला कर दूजा मुकाम कर कर बैसना ने चलने की तोख। मुकाम ता पर जानी है जा रह ने चल लोक। दुनिया कैस मुकाम में कर सिद्क करनी खर्च बांधो। लाग रहो नामे रहाओ। जोगी ता आसन कर बह मुल्ला बह मुकाम। पंडित वखाने पोथिया सिद्ध बह देव स्थान। सुर सिद्ध गण गंधर मुन जन सेख पीर सलार। दर कूच कूचा कर गए अवरे पे चलनहार। सुल्तान खान मलूक अमरे गए कर कर कूच। कड़ी मुहत के चलना दिल समय तू पे पहुच। सबदाह माहे वखाणी है विरला तांबू जय कोए। नानक वखाण बेनती जलथल मैयल सोए। अलाहो अलाखा गम कादर करण हार करीम। सब दुनी आवण जावणी मुकाम एक रहीम। मुकाम तिसनो आखिया जिस सिसना होवी लेख। असमान

महले पहले सतारे अष्टपदियां, श्री राग महला तीजा घर पहला अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुरमुख कृपा।

होए। पाई रे भगतहीन काहे जगयाया, पूरे गुर की सेवना कीनी वृथा जन्म गवाया रहाओ। आपे हर जग जीवन दाता, आपे बस मिलाए, जी जनते क्या विचारे, क्या को वाक सुनाए। गुरमुख आपे दे वड़ियाई, आपे सेव कराए, देख कुटांब मोहे लोभाना, चल दिया नाल न जाई। सतगुर सेव गुण निधान पाया, तिसदी कीम ना पाई, प्रभ सखा हर जियो मेरा, अंते होए सखाई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाणै, अंधे ठौर ना काई। हर सुख दाता मनी वसिया, अंत गया पछताई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया, अनदिन भगत करै दिन राती, हौं मैं मोह चुकाया। जिस स्यों राता तै सो होवै, सच्चे सच समाया, आपे नदर करे भाव लाए, गुर सबदी विचार। सतगुर सेवे सहज उपजाय, हमें तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसै, सच रखिया उरतार। प्रभ मेरा सदा निर्मला, मन निर्मल पाया जाए। नाम निदान हर मन वसै, हमें दुख सब जाए। सतगुर शब्द सुनाया, हम सद बलिहार जाओ। अपने मन चित कह कहाई, अपने मन चित कह कहाए, बिन गुरे आप ना जाई। हर जियो भगत मच्छर सुखदाता, कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा सुरत दे प्रभु, आपे गुरमुख दे वड़ियाई। श्री राग महला तीजा, हमें कर्म कमावंदे, जम डंड लगै तिन आए। जे सतगुर सेवन से उबरे, हर से ती लिवलाए। मन रे गुरमुख नाम ते आए, तुर पूर्व करत लिखिया, तिन्ना गुरमत नाम समाए रहाओ। विण सतगुर परतीत ना आवई, नाम ना लागा उपाओ। सुपने सुख ना पावई, दुख में सवै समाए। जे हर हर कीचै बहुत लुचिया, कीर्तना मिटिया जाए। हर का पाणा भक्ति मन्या, से भगत पय दर थाए। गुर शब्द दृढ़ावै रंग स्यों, बिन कृपा लया ना जाए। जे सौ अमृत नीरी है, पी बिखपल लागै ताए। से जन सच्चे निर्मले, जिन सतगुर नाल प्यार। सतगुर का पाणा कमाम दे, बिख हमै तज विकार। मन हठ कितै उपाय ना छूटिया, सिमरत शास्त्र सोधो जाए। मिल संगत साधु उबरे, गुर का शब्द कमाए। हर का नाम निधान है, जसंत ना पारावार। गुरमुख से ही सोह दे, जिन कृपा करे करतार। नानक दाता एक है, दूजा और ना कोए। गुर प्रसादी पाई है, कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा, पंखी बिरख सुहावड़ा, सच उगै गुर पाए। हर रस पीवै सहज रहै, उड़ै न आवै जाए।

दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़े, दूजा भाव न जाने, सतगुर भेटे निर्मल होवा, अंदन नाम वखाणे। एको पड़े एको ना बूझे, दूजा अवर न जाने, खड़ दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुर परम पुलाए, सतगुर सेवै ता गत मित पावे, हर जियो मन वसाए। सच्ची बाणी सो चित लागे, आवन जान रहाए, पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणे, बिन गुर परम पुलाए, लख चौरासी फेर पया, बिन शब्द मुक्त ना पाए, जा नाव चेतै ता गत पाए, जा सतगुर मेल मिलाए। सत संगत में नाम हर उपजे, जा सतगुर मिलै सुभाए, मन तन अर्पी आप गवाई, चला सतगुर पाए, सत बलिहारी गुरे अपने विटाओ, जे हर से ती चित लाए। सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे, हर से ती रंग राता, प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर, गुरमुख वर लै जाता। नानक नाम मिलै वडियाई, गुर कै शब्द पछाता, श्री राग महला तीजा, सहजै नो सब लोई दी, बिन गुर पाया ना जाए, पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके, भेखी परम भुलाए, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाए, पाई रे गुर बिन सहज ना होए, शब्द ही ते सहज उपजै, हर पाया सच सोए रहाओ, सहजे गावया थाए पवै, बिन सहजे कथनी बाद, सहजे ही भक्ति उपजै, सहज प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजे जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा, सहज समाद लगाए, सहजे ही गुणी उचरै, भक्त करे लिवलाए, सबदे ही हर मन वसै, रसना हर रस खाए, सहजे काल विडारिया, सशरण आई पाए, सहजे हर नाम वसिया, सच्ची कार कमाए, सेवड भागी जिनी पाया, सहजे रहे समाए, माया विच सहजन उपजै, माया दूजै पाए।

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवे काज, चित आवे ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवे राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए, चित आवै उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलवख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवै उस पर ब्रह्म, तन निमख सिमरत तरिया। शास्त्र सिमरत वेद चार, मुखागर बिचरे, तपित पीसर जोगिया। तीर्थ गमन करे खटकर में, खटकर माते दुगने, पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्थार, बाग सुहावे सोहने, चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाहे लग रहया, चेतना आयो पार ब्रह्म, ता सर्ब की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, शोभा निर्मल दीत, मात पिता सुत भाइया, साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मोनी मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नम है प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, गृहस्थी ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती आपरसा, एक लूकना देव दर्शा, एक मन ही ज्ञाता, काटना किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत ना पाया, सुर्ग मछ पयाल जियो, हौ वारी हौ वारणै, कुर्बान तेरे नाम नो रहाओ, तुद संसार उपाया, सिरे सिर तंदे लाया, वेखै कीता अपना, कर कुदरत पासा ढाल जियो, प्रगट पहार है जापदा, सब नावै नो परतापदा, सतगुर बाज ना पायो, सब मोही माया जाल जियो, सतगुर कौ बल जाइए, जित मिले है परम गत पाइए, सुर नर मुन जन लोच दे, सो सतगुर दिया बुझाए जियो, सत संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणिए, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो, एहो जगत परम भुलाया, आपो तो दुखवाया, प्रताप लगा दोहागणी, भाग जना के नाही जियो, दोहागणी क्या निशानिया, खसमो कुथियां फिरे निमाणिया, मैले वेस्त ना कामनी, दुखी रहन विहाय जियो, सुहागणी क्या कर्म कमाया, पूर्व लिखिया फल पाया, नदर करे कह अपनी, आपे लय मिलाए जियो, हुक्म जिन्हां नो मनाया, ते निरंतर शब्द वसाया, सही आसे सोहागणी, जिन सह नाल प्यार जियो, जिन्हां भाणे कार रसियाया, तिन विचों परम चुकाया, नानक सतगुर ऐसा जानी, जो सब सह ले मिलाए जियो, सतगुर मिलिया फल पाया, जिन विचों अह करण चुकाया, दुरमत का दो कटिया, भाग बैठा मस्तक आए जियो, अमृत तेरी बाणिया, तेरिया भगतां हृदय समाणिया, सुख सेवा अंदर रखे है, अपनी नजर करे निस्तार जियो, सतगुर मिलिया जानिया, जित मिलिया नाम वखाणिया, सतगुर बाज ना पायो, सब थकी कर्म कमाए जियो, हौ सतगुर विटों घुमाया, जिन परम पुला मार्ग पाया, नजर करे जे अपनी, आपे लय रलाए जियो, तू सबना माहे समाया, तन करता आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होया, जाको जोत धरी करतार जियो, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, मेरा प्रभ सब किश पाया, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, अपने सेवकी पैज रखिया, दोए कर मस्तक धार जियो, सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करे जयकार जियो, सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करे जयकार जियो, मेरे गुण अवगुण ना बिचारिया, प्रभ अपना बिरस मारिया, कंठ लाए कै रखियो, न लगे न तत्ती वाओ जियो, मैं मन तन प्रभु ते आया, जिए इच्छियाड़ा फल पाया, साहा पात साहा सिर खसम तू, जप नानक जीवे नाउ जियो, तुदे आपे आप पाया, दूजा खेल कर दिखलाया, सब सचो सच वरतदा, जिस पावे तिसै बुझाए जियो, गुर प्रसादी पाया, तिथे माया मोह चुकाया, कृपा करके अपनी, आपे ले समाए जियो, गोपी ने गोवालिया, तुदे आपे गोए उठा लिया, हुक्मी पांडे साजिया, तू आपे भन सवार जियो, जिन सतगुर सिओ चित लाया, तिन्नी दूजा भाव चुकाया, निर्मल जोत तिन प्राणिया, ओए चले जन्म सवार जियो, तेरियां सदा सदा चंगियाईया, मैं रात है वड़ियाईया, अनमंगया दान देवना, कहो नानक सच संभाल जियो, श्री राग महला पंजवां,
ਪੈ ਪਾਏ ਮਨਾਈ ਸੋਏ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਤਿਹ ਜੇਵੜੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਜੀਓ ਰਹਾਓ। ਗੋਸਾਈ ਮਹਿੰਡਾ ਇੱਠੜਾ, ਆਮੇ ਅੱਬੇ ਥਾਓ ਮਿੱਠੜਾ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਭ ਸੱਜਣਾ, ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ ਜੀਓ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾ ਹਰ ਜੋ ਆਇਆ, ਨਾਉ ਬੀਜਣ ਲੱਗਾ ਆਸ ਕਰ, ਹਰ ਬੋਹਰ ਬਖਸ਼ ਜਮਾਏ ਜੀਓ। ਹਾਂ ਗੁਰਮਿਲ ਇੱਕ ਪਛਾਣਦਾ, ਦੁਆ ਕਾਗਲ ਚਿਤ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੈ ਕਾਰ

मात पिता सुत ने हो कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटे गार चेत दूजे पहरे रहन कै मन जा रहा मित्रा पर जो बन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जा रहा मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रसकस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जन्म मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक भाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रैन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस अलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आव कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जां जम पकड़ चलाया सब किश अपना कर कर राखिया खिन मैं पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप करे अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चे तो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंधना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे परा को ताना गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चलै क्या मान कहो नानक प्राणी चौथा पहरै गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहयावन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाने आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावै चोट ना खावै ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरैवन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीविया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीविया जिसकी वस्तो ते चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिया कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पाली एवन जा रहा मित्रा ले

हर अहनस लगा पाओ, जन नानक ब्रह्म पछाणिया, हर कीर्त कर्म कमाओ, मन हर हर लगा चाओ, गुरपुरै नाम दृढ़ाया, हर मिलिया हर प्रभु नाओ रहाओ। जब लग जोबन सास है तब लग नाम ते आए, चल दिया ना

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत लगाए वडभागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हर आपे आपो पाएंदा हर आपे दे वैले हर आपे परम भुलाएंदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुर शरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाईऐ कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटियै हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामै ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामै ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कहो पूर्व लिखिया से आए मिले गुरपास। सेवक पाए वन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना रह रास रहाओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा श्लोका नाल श्लोक महला तीजा। रागा विच श्री राग है जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार। रतना मूलक पाया गुर का शब्द विचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा श्री रियाकार। नानक सच्चा सतगुर सेवै सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत न होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुन ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजै। अंधा क्या करे नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर इको करता एक इको दी बाण हर हर इक सह दा है अमर इको हर चित तार। हर तिस बिन कोई नाहे डर भ्रम पौ दूर कर।

सरै सरैयत करै विचार, बिन बूझे कैसे पावै पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जेह तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा गुरसभा एव ना पाई है, ना नेड़ै ना दूर। नानक सतगुर तां मिलै, जामन रहै हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा।

नानक नाम रते से रंगले गुर कै सहे सुभाए भक्ति रंग न उतरै सहजे रहै समाए पौड़ी सिष्ट उपाई सब तो दो आपे रिजक संभाया एक वल छल कर कै खाम दे मोह कूड़क सत त्री ढाया तुद आपे पावै सो करै तुद उतै कम ओए लाया एक ना सच बोयान तिना तुट भंडार देवाया हर चेत खाहे तिना सफल है अचेता हथ तड़ाया सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित बेद वखाण माया मोह सवाए दूजे पाए हर नाम विसारिया मन मूर्ख मिलै सजाए जिन चियो पिंड दिता तिस कबहू ना चेतै जो देंदा रिजक सवाहे जम का फाहा गलो न कटिया फिर फिरे आवै जाए मन मुख किशु ना सूजे अंधले पूर्व लिखिया कमाए पूरे पग सतगुर मिलै सुखदाता नाम वसै मन आए सुख माने सुख पैरना सुखे सुख विहाए नानक सो नाओ मनो विसारी है नानक सो नाओ मनो ना विसारी है जित दर सच्चे सो बा पाए महला तीजा सतगुर सेव सुख पाया सच नाम गुणतास गुरमति आप पछाणिया राम नाम प्रगास सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास जियो पिंड सब तिसका सिफत करे अरदास सच्चे शब्द सलाहना सुखे सुख निवास।

अस पौड़ी सो ऐसा हर नाम त्याई मन मेरे जो सबना उपर हुक्म चलाए सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर ले छाए सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए सो गुरमुख नाम जपिया वडभागी तिन निंदक दुष्टो सब पैरी पाए नानक नाम आराध सबना ते वड्डा सब नामै अगै आण निवाए श्लोक महला तीजा वेस करे क्रूप को लखणी मन खोटे कूड़ियार पिर कै पाणे ना चले हुक्म करे गावार गुर कै पाणे जो चले सब दुख निवारण हार लिखिया मेट न सकिए जो तुर लिखिया करतार मन तन सौपे कंत कहो सब दे तरे प्यार बिन नामै कने ना पाया देखो हृदय विचार नानक सा सुआल्यो सुलखणी जे रावी सृजनहार महला तीजा माया मोह गुबार है तिसदा ना दिसै उरवार ना पार मनमुख ज्ञानी महा दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार पाल के उठ बहु कर्म कमावै दूजे पाए प्यार सतगुर सेवै अपना भौजल उतरे पार नानक गुरमुख सच समावै सच नाम उरतार पौड़ी हर जल थल महियल भरपूर दूजा नाहे कोए हर आवै करे न्याओ कूड़ियार सब मार कढोए सचियारां दे वड़ियाई हर धर्म न्याओ की ओए सब हर की करो उसत जिन गरीब अनाथ राख ली ओए जयकार कियो धर्मिया का पापी को दंड दी ओए श्लोक महला तीजा।

मिल मेरे रमैया मैं लहे छड़ाए रहाओ। अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पै अमर भया। माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया। बिखम कोर पंथ चालना प्राणी, रव सस्त है ना परवेसं। माया मोह ता बिसर गया, जा तजी अले संसारं। आज मेरा मन प्रगट भया है, पेखी अले धर्म राओ। तिन कर दल करन महाबली, तिन आगर लै मैं रहन न जाए। जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिण रतड़ा नारायणा। ऐ जी तू आपे सबके जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जियो का, अचरज एक सन औरे पंडिया। अब किस कहन न जाई, सुर नर गण गंधर्व जन मोहे। त्रिभुवन मेख लीलाई, राजा राम अनहद किंगरी बाजै। जाकी दृष्टनाद लिव लागै रहाओ। पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कालक कनक कर सिक पाया। तिसमै तार चोवै त निर्मलो, रसमै रसन चोवाया। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया। तीन पवन मैं एको जोगी, कहो कमन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटिया प्रखोतम, कहो कबीर रंग राता। और दुनी सौ परम पुलानी, मन राम रसायन माता। श्री राग बाणी भगत बेणी जियो की, पहरिया कै घर गावना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रे नर गर्भ कुंडर जब आशत। उर्द ध्यान लिव लागा, मृतक पिंड पद मदना अहनस। एक अज्ञान सो नागा, ते दिन संभल कष्ट महा दुख। अब चित अधिक पसारिया, गर्भ छोड़ मृत मंडल आया। तव नर हर मनो बिसारिया, फिर पछतावेंगा मूड़िया। तू कमर कुमत प्रम लागा, चेत राम नाही जमपुर जाहेगा। जन बिचरै अनरादा रहाओ। बाल बिनोद चिंद रस लागा, खिन खिन मोहे ब्यापै। रस में समेद अमृत बिख चाखी, तो पंच प्रगट संतापै। जप तप संजम छोड़ सुकृत मत, राम नाम ना आराध्या। उछलिया काम काल मतया, लागी तो वान सकत गल बांधया। तरन तेज पर त्रे मुख जो है, सारे अवसर ना पछाणया। उनमत काम महाबिख भूलै, पाप ना पछाणया। सुत संपत देख एहो मन गर्भिया, राम हृदय ते खोया। अवर मरत माया मन तोले, तो भाग मुख जन्म विगोया। पुंडर केस कुसम ते तौले, सबत पाताल की बाणी। लोचन सरमै बुद्ध बल नाठी, ता काम पव समाधानी। ता ते बिखै पई मत पावस, काया कमल कुमलाना। अवगत बाण छोड़ मृत मंडल, तो पाछै पछताना। निकुटी देह देख तुनि उपजै, मान करत नहीं बूजै। लालच करै जीवन पद कारण, लोचन कछु ना सूजै। थाका ते

कनक कटक जल तरंग जैसा जाओ पै हम ना पाप करंता अहे अनंता पतत पावनो नाम कैसे हुंता रहाओ। तुम जो नायक अच्छो अंतर जामी प्रभ ते जन जानी जय जनते स्वामी शरीर अराधे मोको विचार देहू रामदास समदालो समझावे को। राग माज चौपदे कर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। हर हर नाम मैं हर मन पाया वडभागी हर नाम ते आया गुरपुरे हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चले जियो मैं हर हर खर चलया बन पल्ले मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले। गुरपुरै हर नाम दृढ़ाया हर निश्चल हर तन पल्ले जियो हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मिलावै मेरे प्राण जीवाया। हव रह ना सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वह वह चले जियो सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई हव रह ना सका बिन देखे मेरी माई। हर जियो कृपा करो गुर मेला जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा मद सूदन मेरे मंत्र प्राणा हों हर बिन दूजा अवर ना जाना कोई सज्जन संत मिलै वडभागी मैं हर प्रभ प्यारा दसै जियो। हों मन तन खोजी पाल पाल आई क्यों प्यारा प्रीतम मिलै मेरी माई मिल सत संगत खोज दसाई वे संगत हर प्रभ वसै जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला हम बारक दीन करो प्रतपाला मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा गुर जल मिल कमल वसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवै मेरे मन तन वेदन गुर बिरव लगावै। हर हर दया करो गुर मिलो जन नानक गुर मिल रहसै जियो। माज महला चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए हर हर नाम कथा नित सुनिए मिल सत संगत हर गुण गाए जग पौजल दुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर मेल करेहा मेरे प्रीतम का मैं दे सनेहा मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई मैं दसे हर नर हरि है जियो। मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने हौ रह ना सका बिन नाम वखाने मैं औखद मंत्र दी जय गुरपुरे मैं हर हर नाम उधरी है जियो। हम चात्रक दीन सदगुर शरणाई हर हर नाम बूंद मुख पाई हर जल निदो हम जल के मीने जन नानक जल बिन मरी है जियो। माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते मिल हर दर्शन मन पी जय जियो। मिल सतसंग बोली हर बाणी हर हर कथा मेरे मन पाणी हर हर अमृत हर मन भावै मिल सतगुर अमृत पी जय जियो। वडभागी हर संगत पावै भागहीन परम चोटा खावै बिन भागा सतसंग ना लभै बिन संगत मैल भरी जय जियो। मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे हर हर नाम दया मन तारे गुरमत नाम मीठा मन पाया जन नानक नाम मन भीजै जियो। माज महला चौथा हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया मन हर रंग राता हर रस पियाया हर हर नाम मुख हर हर बोली मन हर रस टुल टुल पौंदा जियो। आवो संत मैं गल मेलाई है मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाई है हर के संत मिलो मन देवा जो गुरबाणी मुख चौंदा जियो। वडभागी हर संत मिलाया गुरपुरे हर रस मुख पाया भागहीन सतगुर नहीं पाया मनमुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो। आप दयाल दया प्रभ धारी मलहम मैं बिखिया सब निवारी नानक हट पटन विच लकाया हर लैंदे गुरमुख सौदा जियो। माज महला चौथा हाँ गुण गोविंद हर नाम ते आई मेर संगत मन नाम वसाई हर प्रभ अगमा गोचर स्वामी
मेरे सतगुर हर रस की चै जियो। तन तन हर जन जन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता। पाप मलोवा मल मल तोवा, मिल हर जन हर रस पी चै जियो। सतगुर दाता नाम दिड़ाया, वडभागी गुर दर्शन पाया। अमृत रस सच अमृत बोली, गुर पूरे अमृत लीचै जियो। हर सत संगत सतपुरख मिलाई है, मिल सत संगत हर नाम तिहाई है। नानक हर कथा सुनी मुख बोली, गुरमत हर नाम परिचय जियो। माझ महला चौथा, आवो भैणे तुसी मिलो प्यारिया। जो मेरा प्रीतम दसे तिसके हों वारिया। मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन, हों सतगुर विटों घुमाइया जियो। जै जै देखा तै तै स्वामी, तू घट घट रव्या अंतर जामी। गुरपुरै हर नाल दिखा लिया, हाउ सतगुर विटों सदवारिया जियो। एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया। सब एका जोत वरतै भिन भिन, ना रले किसे देर लाइया। गुर प्रसादी एक नदरी आया, हाउ सतगुर विटों बताया जियो। जन नानक बोलै अमृत बाणी, गुरसिखा कै मन प्यारी पाणी। उपदेश करे गुर सतगुर पूरा, गुर सतगुर पर उपकारिया जियो। सत चौप दे महले चौथे के, माझ महला पंजवा चौप दे कर पहला। मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई, बिरप करे चा तिर की न्याई। त्रिखा न उतरै सांत न आवै, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हाँ कोली जियो कोल कुमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो। रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो, सहि तुन बाणी। चिर होवा देखे सारिंग पाणी, तन सो देस जहां तू वसिया। मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। हाँ कोली हाँ कोल कुमाई, गुर सज्जन मीत मुरारे जियो। रहाओ एक कड़ी ना मिलते।

वन त्रिण त्रिपवन की तोन हरिया करण हार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तसै अरादे मन की आस पुजाए जियो। माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा प्राता तू मेरा राखा सबनी थाई ता पौ केहा काड़ा जियो। तुमरी कृपा ते तुद पछाणा तू मेरी ओट तू है मेरा माणा तुझ बिन दूजा और ना कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। जी जंत सब तो देव पाए जिजत पाणा तित तलाए सब किश कीता तेरा होवै नाही किश असाड़ा जियो। नाम ते आए महा सुख पाया हर गुण गाए मेरा मन सीत लाया गुरपूरे वजी वाधाई नानक जिता बिखाड़ा जियो। माज महला पंजवा जी प्राण ब्रह्म ने अधारा भगत जीवै गुण गाए अपारा गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो। मनसा तार जो करते आवै साध संग जन मरण मिटावै आस मनोरथ पूर्ण होवै भेटत गुरदर साया जियो। आगम्या गोचर किशमित नहीं जानी साधक सिद्ध ते आवै ज्ञानी खुदी मिट्टी चूका पोलावा गुरमन ही मह प्रगटाया जियो। आनंद मंगल कल्याण निधाना सुख सहज हर नाम वखाना हुए कृपाल स्वामी अपना ना ओ नानक कर मैं आया जियो। माज महला पंजवा सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी तू प्रीतम ठाकर अत भारी तुमरे करतब तुम ही जाना हो तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवै कथा सुनत मन सगली खोवै भेटत संग साध संतन कै सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना साथ साथ सुमारो एह मत गुर प्रसाद मन धारो तुमरी कृपा ते होए परगासा सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई सदा सदा सद आपे होई चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे देख नानक पय निहाला जियो। माज महला पंजवा हुक्मी वरसन लागे मेहा साजन संत मिल नाम जपेहा शीतल सांस सह सुख पाया ठांड पाई प्रभ आपे जियो। सब किश बहुतो बहुत उपाया कर कृपा प्रभ सगल रजाया दात करो मेरे दातारा जी जंत सब तरापे जियो। सच्चा साहेब सच्ची नाई गुरप्रसाद तिस दाते आई जन मरण पै काटे मोहा बिनसे सोख संतापे जियो। सास सास नानक साला हे सिमरत नाम काटे सफा हे पूर्ण आस करी खिन पीतर हर हर हर गुण जापे जियो। माज महला पंजवा आओ साजन संत मीत प्यारे मिल गावै गुण अगम्या पारे गावत सुनत सबे ही मुक्ते सो त्याईये जिन हम किए जियो। जन्म जन्म के किल बिख जावै मन चिंदे से ही फल पावै सिमर साहिब सो सच स्वामी रिजक सब सकौ दिए जियो। नाम जपत सर्ब सुख पाईए सब पौ बिनसै हर हर त्याईए जिन सेविया

अमृत वर्ख है अनहद बाणी मंतन अंतर सांत समाणी तृप्ता गाय रहे जन तेरे सदगुर किया दिलासा जियो जिसका साथ तिस्ते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मिलाया आवन जान रहे वडभागी नानक पूर्ण आसा जियो माज महला पंजवा मीहो पया परमेसर पाया जी जंत सब सुखी वसाया गया कलेश पया सुख साचा।

सोई सुख सहना जिथे रखै बैकुंठ तथाई तू सबना के प्रतपाला जियो सिमर सिमर नानक सुख पाया आठ पहर तेरे गुण गाया सगल मनोरथ पूर्ण होए कदे न होए दुखाला जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म प्रग मेघ पठाया जल थल मैयल उदय दिस वरसाया सांत पई बुझी सब तृष्णा अनंद भया सब थाई जियो सुखदाता दुख पंजन हारा आपे बख्श करे जी सारा अपने कीते नो आप प्रतपाले पै पैरी तसै मनाई जियो जाकी सरन भयांगत पाई है सा सा सर नाम त्याई है तिस बिन होर ना दूजा ठाकरो सब तसै किया जाई जियो तेरा

माज महला पंजवां सबे सुख पए प्रभु तुठे गुरपुरे के चरण मन मुठे सह समाध लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहे मेरा कड़कड़े अंतर वर्त नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को बिरलाया पछाने जियो प्रमृण की है निशानी मन को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाणे जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करता दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपै बुद्ध सियाणप किशु ना जापै अपने संतां नो आप सहाई प्रभ भरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावै गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच धियाई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा धरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटों कुर्बानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याए त्याए जीवै जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वड पागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरा तुद भावै सच नाम निशानो जियो सच्चे अंतना जाने कोई थान थनंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सदही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूर्त सिमरत पल वन्या जीवन सफलत थाई जियो सिमरत नाम दोग सब लाथे अंतर बाहर हर प्रभ साथे पै पाओ परम खोया गुरपूरै देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वड़ ऊचा पारा नौनद नाम परे पंडारा आद अंत मध प्रभ सोई दूजा लवै न लाई जियो

माज महला पंजवा अथ तू है आगे आपे जी जंत्र सब तेरे थापे तुद बिन अवरना कोई करते मैं तरे ओट तो मारी जियो रसना जब जब जी वै स्वामी पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी जिन सेव्या तिन्ही सुख पाया सो जन्म ना जुवै हारी जियो नाम अवखद।

दृढ़ तार अपना दास वारिया, घड़ घड़ अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक स्विण होर दूजा नाही, बाबा नानक हे मत सारी जियो।

अरे आठ पहर गोविंद गुण गाई है, बिसरना कोई सासा जियो, सोई साजन मीत प्यारा, राम नाम सा संग बिचारा, साधु संग तरी जैसा गुरु, कटिया जमकी फासा जियो। चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप लाखा पेवा, काम क्रोध किरव गुर काटे, पूर्ण होई आसा जियो। पूर्ण भाग पए जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पाणी, नानक नाम वस्या जिस अंतर, प्रमाण ग्रस्तो दासा जियो। माज महला पंजवा, सिमरत नाम हृदय सुख पाया, कर कृपा भगति प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपया, बिनसे आलस रोगा जियो। जा कै ग्रह नवन दहर भाई, तिस मिलिया जिस पुरब कमाई, ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर, प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो। खिन मैं थापो थाप नहारा, आप कंती आप सारा, लेप नहीं जग जीवन दाते, दर्शन डिठे लहन में जोगा जियो। अंचल लाए सब श्रेष्ठ तराई, अपना नाओ आप जपाई, गुरबोध पाया कृपा ते, नानक तुर संजोगा जियो। माज महला पंजवा, सोई करना जे आप कराए, जिथे रखे सा भली जाए, सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लगे जिस मीठा जियो, सब परोई एक तागे, जिस लाए लय सो चरणी लागे। ऊंद कवल जिस होए परगासा, तन सर्ब निरंजन डीठा जियो, तेरी महिमा तू है जाना, अपना आप तू आप पछाणे, हम बलिहारी संतन तेरे, जिन काम क्रोध लो पीठा जियो, तू निर्वैर संत तेरे निर्मल, जिन देखे सब उतरै कलमल, नानक नाम त्याय त्याय जीवै, बिनस्या परंपो तीठा जियो। माज महला पंजवा, झूठा मंगण जे कोई मांगै, तिसका उम्र ते कड़ी न लागै, पार ब्रह्म जो सदी सेवै, सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसकै मन लागी, गुण गावै अंदर जागी, बहां पकड़ो ते स्वामी मिलै, जिसकै मस्तक लैणा। चरण कमल भगता मन मुठे, विन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछे, नाम सचे का गहना। उठत बैठत हर हर गाईऐ, जे सिमरत वार निचल पाईऐ, नानक ओ प्रभ होए दयाला, तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदियां, महला पहला, घर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, शब्द रंगाए हुक्म सवाए, सच्ची दरगह महल बुलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहेबा, सच्चे मन पति आवणिया, हाँ वारी जियो वारी, शब्द सुहावणिया, अमृत नाम सदा सुखदाता, गुरमती मन वसावणिया, रहाओ। ना को मेरा हों किस केरा, साचा ठाकरो त्रिपवन मेरा, हों मैं कर कर जाए कनेरी, कर अवगण पछो तावणिया। हुक्म पछाणे सो हर गुण वखाणे, गुर कै शब्द नाम निशाणे, सबना कादर लेखा सच्चै, छूट स नाम सुहावणिया, मनमुख पूला ठौर ना पाए, जमदर बद्दा चोटा खाए, बिन नामै को संग ना साथी, मुक्ते नाम ते आवणिया, सागत कूड़े सच ना भावै, दुबदा बांदा आवै जावै। लिखिया लेखना मेटै कोई, गुरमुख मुक्त करावणिया, पेयड़ै पर जातो नाही, झूठ विछुन्नी रोवै ताही, अवगण मुठी महल ना पाए, अवगण गुण बखसावणिया, पेयड़ै जन जाता प्यारा, गुरमुख बूझै तत विचारा, आवण जाना ठाकर हाए, सच्चै नाम समावणिया, गुरमुख बूझै कथ कहावै, सच्चे ठाकर साचो पावै, नानक सच कह बेनंती, सच मिलै गुण गावणिया। माज महला तीजा, कर पहला, कर्म होवै सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए, हाँ मैं मार सदा सुख पाया, माया मोह चुकावणिया, हाँ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारणिया, गुरमती प्रगास हुआ जी, अंदर हर गुण गावणिया, रहाओ। तन मन खोजे ता ना हो पाए, तावत राखे ठाक रहाए, गुर की बाणी अंदर गावै, सहजे पद करावणिया, इस काया अंदर वस असंखा, गुरमुख साच मिलै ता वेखा,
नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनह शब्द बजावणिया सच्चा साहेब सच्ची नाई गुर प्रसादी मन वसाई आन दिन सदा रह रंगराता दर सच्चा सोजी पावणिया पाप पुन की सार न जानी दूजे लागी परम पुलाणी अग्ञानी अंदा मग न जाने फिर आवण जावणिया गुर सेवा ते सदा सुख पाया हाँ मैं मेरा ठाकर हाया गुरसाखी मिटिया अंधियारा बजर कपाट खुलावणिया हाँ मैं मार मन वसाया गुर चरणी सदा चित लाया गुर कृपा ते मन तन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया जीवन मरना सब तो दैताई जिस बख्शे तिस दे वड़ियाई नानक नाम ते आए सदा तू जम्मण मरण सवारणिया। माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगम्या पारा बिन तकड़ी तोले संसारा गुरमुख।

माया मोहे जोहया जमकाले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावणिया। गुरमुख भगत जा आप कराए, तन मन राता सही सुभाए। बाणी वजाए शब्द वजाए।

दूजै पाए दुख पावणिया, जिस अंतर प्रीत लगै सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जोता, गुर कै शब्द सदा हर त्याए, एहा भगत हर पावणिया। गुरमुख भगत जुगचारे होई, होरत भगत ना पाए कोई, नानक नाम गुर भगती पाईऐ, गुर चरणी चित लावणिया। माज महला तीजा, सच्चा सेवी ससा लाही, सच्चे नाए दुख कभी नाही, सुखदाता सेवन सुख पाए न, गुरमत मन वसावणिया। हाउ वारी जियो वारी, सुख सह समाध लगावणिया, जो हर सेवै से सदा सोहै, शोभा सुरत सुहावणिया। राओ सब को तेरा भगत कहाए, सही भगत तेरा मन पाए, सच बाणी तुदै सालाहनो, रंग राते भगत करावणिया। सब को सच्चे हर जियो तेरा, गुरमुख मिलै तां चूकै फेरा, जां तुद पावै तां नाए रचावै, तू आपे नाउ जपावणिया। गुरमती हर मन वसाया, हरक सोख सा मोह गवाया, एक सस्यों लिव लागी सदही, हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाए, नवनिद नाम वस्या मन आए, पूरे भाग सतगुर पाया, सब दे मेल मिलावणिया। तू दयाल सदा सुखदाता, तू आपे मेलै गुरमुख जाता, तू आपे देवै नाम वडाई, नाम रते सुख पावणिया। सदा सदा साचे तुद सा लाही, गुरमुख जाता दूजा को नाही, एक सस्यों मन रहा सुमाए, मन मनै मनै मिलावणिया। गुरमुख होवै सो सा लाहे, साचे ठाकर वे प्रवाहे, नानक नाम वसै मन अंतर, गुर सबदी हर मेला बणिया। माज महला तीजा, तेरे भगत सो है साचे दरबारे, गुर कै शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहै दिन राती, गुण कै गुणी समावणिया। हाउ वारी जियो वारी, नाम सुन मन वसावणिया, हर जियो सच्चा ऊचो ऊचा, हाउ मैं मार मिलावणिया। रहाओ हर जियो साचा साची नाई, गुर प्रसादी किसै मिलाई, गुर शब्द मिलै से विछड़ै नाही, सहजे सच समावणिया। तुझ ते बाहर कछु ना होए, तू कर कर वेख्या जाणै सोए, आपे करे कराए करता, गुरमत आ मिलावणिया। कामण गुणवंती हर पाए, पै पाए सिंगार बनाए, सतगुर सेव सदा सोहागण, सच उपदेश समावणिया। शब्द विसारण

अंदर महल रतनी परे भंडारा गुरमुख पाए नाम अपारा गुरमुख वणजे सदा वापारी लहा नाम सद पावणिया आपे वथ राखै आपे दे गुरमुख वणजै केई के नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावणिया माज महला तीजा हरे आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द भाव दूजा जाए हर निर्मल सदा गुणदाता हर गुण मैं आप समावणिया हाँ वारी जियो वारी सच सच्चा हिरदय वसावणिया सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन वसावणिया रहाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता सेवक सेवै गुरमुख हर जाता अमृत नाम सदा जन सोहै गुरमत हर रस पावणिया इस गुफा मैं कथान सोहाया पूरे गुरह मैं भरम चुकाया अंदन नाम सलाहन रंग राते गुर कृपा ते पावणिया गुर कै शब्द एहो गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर वसै मुरारे हर गुण गावै शब्द सुहाए मिल प्रीतम सुख पावणिया जम जा गाती दूजै भाए कर लाए।

हाँ हाँ करे तय आप जनाए, बहु कर्म करे एक स्थाए न पाए। तो इते बाहर किशु ना होवे, बक्से शब्द सुहावणिया। उपजे पचे हर बुझे नाही, अंदन दूजे पाए फिराही। मनमुख जन्म गया है बिरथा, अंत गया पछतावणिया। पिर पर दे सिंगार बनाए, मनमुख अंध ऐसे कर्म कमाए। हलत ना सोभा पलत ना ढोई, बिरथा जन्म गवावणिया। हर का नाम किने विरलै जाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता।

तुद जेवड़ दाता है वरना स्वामी लवै ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए, आप तरै सगले कुल तारे, तिस दरगह ठाग ना पावण्या। तू वड्डा तू उचो उचा, तू बेअंत वत मूचो मूचा, हाँ कुर्बानी तेरे वन्या, नानक दास दसावण्या। माज महला पंजवां, कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो भगता, कौन सो गिरही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो, किन बिद बाधा किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन तूटा, कौन कर्म कौन निह कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिली है किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जे तावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख समसहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता, धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, हम मैं बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवण जावण तूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख निह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख बिछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो, गुरमुख अखर जे तावत रहता, गुरमुख उपदेश दुख सुख समसहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए, गुरमुख कीर्तन गाए जियो, सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, एक स्ते होयो अनंता, नानक एक समाए समाए जियो। माज महला पंजवां, प्रभु बनासी ता क्या काड़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुखदाता, तू करै सोई सुख पावण्या, हां वारी जियो वारी गुरमुख मंतन पावण्या, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावण्या, रहाओ तेरा कीता जिस लागै मीठा, घट घट घट घट पार ब्रह्म तिन जन डीठा, थान थनंतर तू है एको एक वरतावण्या, सगल मनोरथ

किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम। चार कुंटो दह दिस भ्रमे थके आए प्रभु की साम। तेहन दुदै ते बाहरी कितै ना आवे काम। जल बिन साख कुमलावती उपजै नाही दाम। हर नहा ना मिलिए साजने कत पाइय विश्राम। जित घर हर कंत ना प्रगटई पठ नगर से ग्राम। सर्ब सिंगार तंबूल रस सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम। नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निचल ताम। चेत गोविंद आराधिया होवै आनंद कणा। संत जना मिल पाईऐ रसना नाम भणा। जिन पाया प्रभ अपना आए तिसै गणा। एक खेनु तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। जलथल महियल पूरिया रव्या विच वणा। सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा। जिनी रावया सो प्रभु तिन्ना पाग मना। हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा। वैसाख तीरन क्यों वाडिया जिन्ना प्रेम बिशो हो। हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो हो। पुत्र कलतर ना संग तना हर अवनासी ओहो। पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोहो। एक सहर के नाम बिनो अगे लइए खोहे। दैव सार विगुचना प्रभ ने अवर ना कोए। प्रीतम चरणी

हर जेठ जोड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निवान हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसकै पाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास दुया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास जिहा बीजै सो लुणै मथे जो लिखे आस रैन विहानी पछताणी उठ चली गई निरास जिन कौ साधु भेटिया सो दरगह होए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तेन प्रभ संग मौलिया समर्थ पुरखिया पार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार जिनी सखिए प्रभ पाया हों तिनकै सबर हार नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागनी।

नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे। माज महला पंजवां दिन रहन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रहन आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैण हर पिर बिन चैन न पाईए खोज डिठे सब गैण आप कमाणे विछड़ी दोस न काहू देण कर कृपा प्रभ राख लेहो होर नाही करन करेण हर तुद बिन खाकू रूलना कहिए किथे वैण नानक की बेनंतिया हर सुरजन देखा नैण जी की बिरथा सो सुने हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना काया धार ससरै पईए तिसकंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगमे आप गाद बोध किशंत ना पारावार सेवा सा तिस भाव सी संता की होए शार दीना ना दयाल देव पत ते उदाहरण हार आज जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई न जाने को नाही तोलन हार मंत्र अंतर वस रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभ को सेव दे तिन कह सत बलिहार संत आराधन सद सदा सबना का बख्शेंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिती निजिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहन ना जाइए परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिलै स्वामी कंत नानक जीवै जप हरी दोख सबे ही हंत दिन रहन जिस ना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्ण मन माणी थाओ हरे ओट गही मन अंदरे जब जब जीवा नाओ कर कृपा प्रभ अपनी जंतूड़ी संग समाओ जो तू राख्या त्यो रहा तेरा दिता पैना खाओ उद्यम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए न सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊंचे अगमया माओ मन विछड़िया हर मेली है नानके हो सवाओ सर्व कल्याणा तित देनो हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सुहिया की तुनी गावनी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद श्लोक महला पहला गुरदाता गुर है वैकार गुर दीपक तेह लोए अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए महला पहला।

गए से कीत पुकारिता, उड़िया हंस दसायरा। आया गया मोया ना, पिछे पतल सद्यो का। नानक मन मुख अंध प्यार, वाजगुरु डुबा संसार। महला पहला। दस बाल तन भी श्रवण, तीसा का सुंदर कहावै। चालीसी पर होए पचासी पग खिसै, सठी के बोढ़े पाया वै। सत्र का मतहीन।

क्या मन नाही सच्चा सोए, क्या मेवा क्या क्यों गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या कपड़ क्या से सुखाली की जय भोग बिलास, क्या लश्कर क्या नेवखवासी आवे महली वास, नानक सच्चे नाम विण सबे टोल विनाश पवड़ी, जाति रह क्या हाथ सच परखी है, मवरा होवे हाथ मरिय चखी है, सच्चे की सरकार जुग जुग जानी है, हुक्म ने सरदार दर दीवाणी है, फरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज विचार शब्द सुनाया, एक होए असवार एक ना साखती, एक नी बदे पार एक ना ताकती, श्लोक महला पहला, जा पक्का ता कटिया रही सो पलरवाड़, सन की सारा चिथिया कर लया तन झाड़, दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसने आए बैठ, जो दर रहे सो बरे, नानक अजब डेठ महला पहला, वेख जे मिठा कटिया कट कुट बदा पाए, खुंडा अंदर रख के दिन सो मल सजाए, रस कस टटर पाइए तपै तैवल लाए, पीसो फूक समालिए दिचै विजा लाए, नानक मिठै पतरिए वेखो लोका आए, पवड़ी एक ना मरना चेत आस कनेरिया, मर मर जमै नित किसै ना केरिया, आपन रै मन चेत कहन चंगेरिया, जबरा जै नित नित मन मुख हेरिया, मन मुख लून हराम क्या ना जानिया, बदे करन सलाम खसम ना पाणिया, सच मिलै मुख नाम साहिब पावसी, करसन तख्त सलाम लिखिया पावसी, महला पहला श्लोक, मच्छी तारू क्या करे पंखी क्या आकाश, पत्थर पाला क्या करे खुसरे क्या करवास, कुत्ते चंदन लाई है पीसो कुत्ती तात, बोला जे समझाई है पढ़िए स्मृत पाठ, अंधा चानन रखिए दीवे बलै पचास, चौने सोई ना पाइए चुन चुन खावे कास, लोहा मारन पाइए टह ना होए कपास, नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनाश, महला पहला, तैहा कंचन टुटे सार, अग्नि गंढ पाए लोहार, गोरी सेती टुटे पतार, पुत्ती गंढ पवे संसार, राजा मंगे दिते गंड पाए, भुखिया गंढ पवे जा खाए, काला गंढ नदियां मीह झोल, गंढ प्रीति मिठे बोल, बेदा गंड बोले सच कोए, मोया गंड नेकी सत होए, एत गंड वरते संसार, मूर्ख गंड पवे मोहे मार, नानक आखे हो बीचार, सिफती गंड पवे दरबार, पौड़ी आपे कुदरत साज कै आपे करे बीचार, एक खोटे एक खरे आपे परखणहार, खरे खजाने पाईए खोटे सटिए बार वार, खोटे सच्ची दरगह सुटिए किसे आगे करे पुकार, सतगुर पिछे भज पवै एहा करनी सार, सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द सवारन हार, सच्ची दरगह मनियन गुर कै प्रेम प्यार, गणत तिना दी को क्या करे जो आप बख्शे करतार, श्लोक महला पहला, हम जेर जिमी दुनिया पीरा मसाए कराया, मेर वद बाद साह अफजू खुदाए, एक तू ही महला पहला, ना देव दानवा नरा ना सिद्ध साध का तरा, अस्त एक दिगर कोई एक तुई महला पहला, ना दादे देहां दे आदमी ना सबत जेर जिमी, अस्त एक दिगर कोई एक तुई महला पहला, ना सूर सस मंडलो ना सपत दीप नह जलो, अन्न पावन थिर ना कोई, एक तुई महला पहला, नारिजक दस्त आकसे हमारा एक आस वसे, अस्त एक दिगर कोई एक तुई महला पहला, परंदे ना ग्रह जर दरख्त आव्यास कर, देहंद सुई एक तुई महला पहला, नानक ललार लिखिया सोए मेटना सकै कोए, कला तरै हरै सुई एक तुई पौड़ी,
सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया गुरमति आप गवाए सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निसाणिया सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मनमुख सदा कूड़ियार परम भुलाणिया विष्टा अंदर वास साधना जाणिया विण नावें दुख पाए आवन जाणिया नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया सलोक महला पहला सिंह बाजा चरगा कुहियां इन आखवा

दुए भौकिया खादा हुए सुहा पी खाने स्यों दोस्ती चौथे आई ऊंग अखी मीट पवार गया पी उठ रचियोन वाद सैवरिया की पिड़ बदी सबे वेला वक्त सब जे अठी पौ होए नानक साहिब मन वसै सच्चा नावन होए महला दूजा से पूरे साहा जिनी पूरा पाया अठी वे परवाह रहन एक तैरंग दर्शन रूपया था विरले पाई है कर्म पूरा पूरा गुरु पूरा जाका बोल नानक पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इना चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाए सो भन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है कोई ना आखे घट हों मैं जाई है लियन खरे परख दर भी नाई है सौदा एक तहट पूरे गुर पाई है श्लोक महला दूजा अठी पहरी अठ खंड नावा खंड शरीर तिस विच नौ निध नाम एक पाले गुणी गहीर कर्मवंती साला हया नानक कर गुरपीर चौथे पैर सबाह कै सुरत्या उपजै चाओ तिन्ना दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा नाओ ओथे अमृत वंडी है करमी होए पसाओ कंचन काया कसी है वन्नी चढ़ै चढ़ाओ जे होवै नजर सराफ की बहुना पाई ताओ सत्ती पहरी सत भलिया सत्ती पहरी सत भला बहिया पढ़िया पास ओथे पापुन बिचारी है कूड़े कट्टे रास ओथे खोटे सकती है खरे कीचे सा बास बोलन फादल नानका दुख सुख खसमै पास महला दूजा पौन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिन सरात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे तरम हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले होर केती छुट्टी नाल पौड़ी सच्चा पोजन पाओ सतगुर दस्या सच्चे ही पति आए सच विगस्या सच्चे कोट गिराए निज कर वसया सतगुर तुठे नाओ प्रेम रहस्या सच्चे दै दी बाण कूण ना जाइए झूठो झूठ वखाण सो महल खुवाई है सच्चे सबरी सान ठाक ना पाइए ससुण बुझ वखाण महल बुलाइए श्लोक महला पहला पहरा अग्न हवे कर बादा भोजन सार कराई सगले दुख पानी कर पीवा धरती हाग चलाई तारता राजी अंबर तोली पिछे टंग चढ़ाई एवड वदा मावा नाही सबसे नथ चलाई एता तान होवे मन अंदर करी पे आख कराई जेवड़ साहेब तेवड़ दाती दे दे करे रजाई नानक नदर करे जिस उपर

विण सचे सब भुख जे पैजै खाई है, विण सचे दरबार कूड़ ना पाई है। कूड़ै लालच लग मैल खुवाई है, सब जग ठग्यो ठग आई है जाई है। तन मैं तृष्णा अग शब्द बुझाई है, श्लोक महला पहला। नानक गुर संतोख रुख, धर्म फुल फल ज्ञान, रस रसिया हरिया सदा पक्कै कर्म ध्यान। पत के साध खांदा लहै, दाना कै सिरदान। महला पहला। सोने का बिरख पत परवाला, फुल जवेहर लाल, तित फल रतन लगै मुख पाखत, हृदय हृदय निहाल। नानक कर्म होवै मुख मस्तक, लिखिया होवै लेख, अठ सठ तीर्थ गुर की चरणी, पूजै सदा वसेख। हंस हेत लोभ कोप, चारे नदियां अग, पवै दजै नानका, तरियै कर्मी लग पौड़ी। जीव दया मर मार न पछोताई है, झूठा ओ संसार किन समझाई है, सच ना तरे प्यार तंदे ताई है। काल बुरा खै काल, सिर दुनियाई है, हुक्मी सरजनदार मारे दाई है, आपे दे प्यार मन वसाई है। मोहत ना चसा विलम, परिय पाई है, गुरप्रसादी बुझ सच समाई है। श्लोक महला पहला। तुम्मी तुम्मा विस अकत तूरा, निम फल मन मुख वसै तिस, जिस तू चेतना आवही। नानक कहियै किसो, हंडन करमा बाहरे। महला पहला। मत पंखेरू किरत साथ, कब उत्तम कब नीच, कब चंदन कब अकडाल, कब उच्ची परीत, नानक हुक्म चलाई है साहिब लगी रीत पौड़ी। केते कह वखाण कह कह जावना, वेद कह वखियाण अंत ना पावना, पढ़िया नाही भेद बुझे पावना। खड़ दर्शन कै भेख, किसै सच समावना, सच्चा पुरख्या लख शब्द सुहावना। मन्ने नाम बिसंख दरगै पावना, खालक कौ आदेश ढाडी गावना। नानक जुग जुग एक मन वसावना, श्लोक महला दूजा। मंत्री होए अठूहे आ, नांगी लगै जाए, अपन हथी अपना दे कूचा आपे लाए। हुक्म पया तुर खसम का, अति हूं तका खाए, गुरमुख स्यो मनमुख अड़ै, डुबै हक न्याय। दुहां सिरिया आपे खसम, वेखै कर व्यो पाए, नानक ए वै जानिए सब कित सैर जाए। महला दूजा। नानक परखे आप कहो ता पारख जान, रोग दारू दोवै बुझै ता वैद सुजान, वाट ना करी मामला जाणै मेहमान। मूल जान गल्ला करे हाण लाए हाण, लब ना चली सच रहै सो विष्ट परवान। सर संदे आगास कहो क्यों पहुंचै बाण, अगै एहो आगम है वाहे दड़ जान पौड़ी। नारी पुरख प्यार प्रेम सिंगारिया, करन भगत दिन रात ना रहनी वारिया। महिला मंज निवास शब्द सवारिया, सच कहन अरदास सेवे चारिया। सोहन खसमै पास हुक्म सिधारिया, सखी कहन अरदास मनो प्यारिया। बिन नावै त्रिगवास फिट सो जीविया, शब्द सवारी आस अमृत पीविया। श्लोक महला पहला। मारू मिहि ना त्रिपत्या, अग्गी लहै ना भुख, राजा राज ना त्रिपत्या, सायर परे किसको, नानक सचे नाम की। केती पुछा पुछ, महला दूजा। नेह फलंग तस जनमस, जावद ब्रह्म ना बिंदते, सागरंग संसारस गुरप्रसादी तरह के। कारण कारण समर्थ है, कहो नानक विचार, कारण करते वस है। जिन कल रखी तार पौड़ी, खसमै कै दरबार ढाडी वसया, सचा खसम कलाण कमल विगसया। खसमो

जय कारण तट तीर्थ जाही रतन पदार्थ कट ही माही पड़ पट पंडित बाद वखाणै भीतर होंदी वस्त न जाणै हो ना मुआ मेरी मुई बलाए ओह ना मुआ जो रया सुमाए कहो नानक गुर।

गुरमत दे भरोसा तेरा, तन मह मैल नाही मन राता, गुरबचनी सा शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वड़ियाई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला। जिन अकथ कहाया अप्यो पी आया, अनपै विसरे नाम समाया, क्या डरिया डर डरे समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ। जिस नर राम हृदय हर रास, सह सुभाए मिले साबास, जाहे सवार सांझ बयाल, इत उत मनमुख बांधे काल, अहनिस

तीन अवस्था कह वखियान, तुरिया अवस्था सतगुर ते हर जान। राम भगत गुर सेवा तरना, बहुत जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई। बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जा कह हृदय वसिया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद। जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा महे निराश बुझाया। दीना नाथ सर्व सुखदाता।

लब लोभ मुझ कूड़ कमावे, बहुत उठावे पारो। तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों तारी उपर इशारो। सुन सुन सिख हमारी, सुकिरत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहु नया व्यवारी रहाओ। हाँ तुझे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी। निंदा चिंदा करे पराई, झूठी लाए तबारी। वेल पराई जो है जियड़े, करे चोरी बुरियारी। हंस चलिया तू पिछे रही है, छुट्टड़ हुई है नारी। तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया। कर चोरी मैं जाक छलिया, ता मन भला पाया। हल

नानक से देह आवन। राग गौड़ी गुआरे री महला तीजा, चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद। गुर मिले हर मेला होई, आपे मेल मिला वै सोई। मेरा प्रभु सब विद्या पे जाने, हुक्मे मेले शब्द पछाणे। सतगुर कै भय प्रम पौ जाए, पै राच सच रंग समाए रहाओ। गुर मिले हर मन वसै सुभाए, मेरा प्रभु पारा कीमत नहीं पाए। शब्द सलाह अंत ना पारा वार, मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार। गुर मिले सब मत बुद्ध होए, मन निर्मल वसै सच सोए। साच वसै साची सबकार, उत्तम करनी शब्द विचार। गुरते

जय सतगुर तै सतसंगत बनाई, जय सतगुर सहजे हर गुण गाई। जय सतगुर तहां हो मैं शब्द जलाई, गुरमुख सेवा महली थाओ पाए। गुरमुख अंतर हर नाम वसाए, गुरमुख भगत हर नाम समाए। आपे दात करे दातार, पूरे सतगुर स्यों लगे प्यार। नानक ना व्रते तन कौ जयकार, गौड़ी गुआरेरी महला तीजा। एक स्ते सब रूप है रंगा, पौन पानी बैसंतर सब सैलंगा। पिन पिन वेख्या हर प्रभ रंगा, एक अचरजे को है सोई। गुरमुख विचारे वरला कोई रहाओ। सहज पवै प्रभ सबनी थाई, कहां गुप्त प्रगट प्रभ बणत बनाई। आपे सुत्यां दे जगाई, तिसकी कीमत किनै ना होई। कह कह कथन कह सब कोई, गुर शब्द समावै बूझे हर सोई। सुन सुन वेखै शब्द मिलाए, वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए। नानक नाम रते हर नाम समाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा। मन मुखसूता माया मोहे प्यार, गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार। सहजन जागे जिन नाम प्यार, सहजे जागे सवै ना कोए। पूरे गुरते बूझे जन कोए रहाओ। असंता नाड़ी कदे न बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै। अंध ज्ञानी कदे ना सीजै, इस युग में राम नाम निस्तारा। विरला को पाए गुर शब्द विचारा, आप तरह सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म धर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई। नानक नाम बिना को मुक्त ना होई, गौड़ी महला तीजा गुआरे री। सच्चा अमर सच्चा पातशाह हो, मन साचे राते हर वे प्रवाह हो। सच्चे महल सच नाम समा हो। सुन मन मेरे।

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जियो वडाणी चाकरी लाया, महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नाव निद पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावै सोए, हर गुण गावै मत उत्तम होए, सहजे सही समावै सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमें माया महा बिख खाए, पुत कुटुंब गृह मोया माए, मन खयंदा आवै जाए, हर हर नाम देवै जन सोए, अंदर भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझै कोए, नानक नाम समावै सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावै कोई, अखुट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे भरम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै ऐसे महापुरख संसारे, आप उदरे कुर सगल निस्तारे, हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भौजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मन दासा, हम मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निकर वासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भक्ति आख वखाणी, आन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सतगुर मिले वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने विरलै चख डीठा, कर्म कांड बहु करे आचार, बिना मैं त्रिग त्रिग हंकार, बंधन बांधे हो माया फास, जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही, जैसे धरती मध्य पानी परगासिया, बिन पग्गा वरसत फिराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाय समाही रहाओ, स्त्री पुरख होए कै क्या वे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझी मैं समाही, इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही, नानक तत् तत् सो मिलिया, पुनरप जन्म ना आही, गौड़ी बैरागण महला तीजा,

नेहो मूड मुग्ध निस्तारे सहज आनंद सदा गुरमति हर हर मन ध्याया सज्जन हर प्रभ पाया कर सोहिला गाया हर दया धार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगै तूड़ तिन जिन सतगुर पाया। गौड़ी गुआरेरी महला चौथा चौथा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूर्ख हर हर जब पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भजमन मेरे तर भौजल तू तारी रहाओ सन्यासी विपूत लाए देह सवारी पर तरे त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूर्ख रियास तुम्हारी खत्री कर्म करे सूरतन पावै सूद वैस पर किरत कमावै मैं मूर्ख हर नाम छड़ावै सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई गुरमुख नानक देवड़ियाई मैं अंदले हर टिक टिकाई गौड़ी गुआरे री महला चौथा निर्गुण कथा कथा है हर की भज मिल साधु संगत जन की तार पौजल अकथ कथा सुन हर की गोविंद सतसंगत में लाए हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ जो जन त्यावै हर हर नामा तिन दासन दास करो हमरा मां जन की सेवा उत्तम कामा जो हर की हर कथा सुनावै सो जन हमरा मन चित पावै जन पग रेण वडभागी पावै संत जना सो प्रीत बने आई जिनको लिखत लिखिया तुर पाई ते जन नानक नाम समाई गौड़ी गुआरे री महला चौथा माता प्रीत करे पुत खाए मीने प्रीत भई जल नाए सतगुर प्रीत गुरसिख मुख पाए ते हर जन हर मिलो हम प्यारे जिन मिलिया दुख जाए हमारे रहाओ जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावै कामन प्रीत जा पिर कर आवै हर जन प्रीत जा हर जस गावै सारंग प्रीत बसै जल तारा नारपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपै निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया तन खाटे गुरसिख प्रीत गुर मिलै गलाटे जन नानक प्रीत साध पग चाटे गौड़ी गुआरे री महला चौथा पीखक प्रीत पीख प्रपाए पूखे प्रीत होवै अन्न खाए गुरसिख प्रीत गुर मिलिया गाए हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी कर कृपा लोज पूर हमारी रहाओ चकवी प्रीत सूरज मुख लागै मिलै प्यारे सब दुख त्यागै गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागै बछरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिकसै देखै माए गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए होर सब प्रीत माया मोह काचा बिन सजाए पूरा कछ पाचा जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा गौड़ी गुआरे री महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम त्याया हर तनी जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कणी गुरसिख हर बोलो मेरे भाई हर बोलत सब पाप लै जाई रहाओ जब गुर मिलिया तब मन वस आया तावत पंच रहे हर त्याया अंदर नगरी हर गुण गाया सतगुर पग तूर जिन्ना मुख लाई तन कूड़ ते आगे हर लिव लाई ते हर दरगह मुखी उज्जल पाई गुर सेवा आप हर पावै कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावै नानक गुरमुख हर आप तरावै गौड़ी गुआरे री महला चौथा
हर आपे जोगी डंडा तारी, हर आपे रव रहया बनवारी, हर आपे तप तापै लाए तारी। ऐसा मेरा राम रहया भरपूर, निकट वसै नाही हर दूर रहाओ। हर आपे शब्द सुरत धुन आपे, हर आपे वेखै विकसै आपे, हर आप जपाए आपे हर जापे। हर आपे सारंग अमृत धारा, हर अमृत आप ही आवनहारा, हर आप करे आपे निस्तारा। हर आपे बेड़ी तुलहा तारा, हर आपे गुरमति निस्तारा, हर आपे नानक पावे पारा, गौड़ी बैरागण महला चौथा। साओ हमारा तू तनी, जैसी तू रास दे तैसी हमले, हर नाम जय रंग स्यों जे आप दयाल होए दे। हम वन जारे राम के, हर वणज करावे दे रासरे रहाओ। लहा हर भगतन खटिया, हर सच्चे सा मन पाया, हर जप हर वखर लद्या, जम जा गाती नेड़ ना आया। होर वणज करै वापारिये, अनंत तरंगी दुख माया, ओए जिहै वणज हर लाया,

नित दिन सरात लालच करे भरमै भरमाया वे गार फिरै वे गारिया सिर पहाड़ उठाया जो गुर की जन सेवा करे सो कर कै कम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै कम लाए नित हर गुण गावै हर नाम समाए रहाओ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे हर सब माया कह बंदे कह डान ले कह नरपत मर जाया तन तन सेवा सबल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद कीचे बहु भांत कर माया कह ताई जा लाहा दे ता सुख मने तोटे मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हरे आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे जन नानक हर रस तृप्त आ फिर भूख ना लागे गौड़ी बैरागण महला चौथा हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा जन प्रीत लाई सो जानता।

हम पापी शरण परे हर द्वार, मत निर्गुण हम मेले कबहू, अपनी कृपा तार रहाओ। हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत न आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर भावे। हम अपराधी राखे गुरसंगति, उपदेश दियो हर नाम छड़ावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले तब विस्म होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधु मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबित तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सत गुर संग की रे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चुके सब सोग संतापे।

खुशी मन अनरस लाया, हर प्रभ चेतना आवई क्यों छूटा मेरे हर राया। मेरे राम एह नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयालो, कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ। किस रूप नहीं